नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

शुभ प्रभात की पावन बेला, भारत माँ को शीश नवाएं, वीरों के बलिदानों को हम श्रद्धा से हर पल अपनाएं, भारत माँ की जय का नारा हर दिल में उत्साह जगाएं।

प्रभु तुम दीनों के नाथ करुणा का सागर भटके जन को राह दिखाओ, भर दो मन में सच्चा प्यार, अंधकार सब दूर करो, ज्ञान का दीप जलाओ, सत्य और सेवा की राह पर हम सबको आगे बढ़ाओ।

नाम तेरा सबसे न्यारा, जग में तेरा ही उजियारा, रूप न कोई रंग न कोई, फिर भी तू सबसे प्यारा। मन मंदिर में ज्योति जला दे, तेरे नाम का सुमिरन करके जीवन अपना सफल बना दे।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। इसका आलेख एवं संकलन भारती भारद्वाज का था। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन। आलेख अक्षर शर्मा का, वाचक माजिदा खान।
1: कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोगों के जाने के बाद भी घर वैसा का वैसा नहीं रहता? दीवारें वही रहती हैं, दरवाजे वही रहते हैं, आंगन भी वही होता है, लेकिन फिर भी लगता है जैसे घर का कोई स्वर कहीं खो गया हो। मानो उस घर की रूह ही किसी खामोश सफर पर निकल गई हो। वो चौखट जहां कभी किसी की प्रतीक्षा मुस्कुराया करती थी, आज वही एक अजीब सी उदासी चुपचाप बैठी रहती है। कभी रसोई से आती माँ की पुकार, खाना खा लो बेटा, कभी पिताजी की वो धीमी सी आवाज, इतनी देर तक जागना ठीक नहीं, कभी दादाजी का बरामदे में बैठकर पुराने दिनों की बातें सुनाना, और कभी दादी माँ का माथे पर हाथ फेरते हुए कहना, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये सब बातें सुनते समय शायद कभी विशेष नहीं लगती, पर समय बीत जाने के बाद यही साधारण सी आवाजें मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती हैं। रहीम ने कितनी गहरी पीड़ा को एक छोटे से दोहे में समेट दिया है। रहीमन देखी बड़े इनको, लघु नतीजी ये डारी, जहां काम आवी सुई कहा करे तलवारी। मनुष्य अक्सर जीवन की बड़ी उपलब्धियों, बड़े सपनों और बड़े संसार के पीछे भागता रहता है, परंतु घर के वे छोटे छोटे क्षण, माँ का इंतजार, पिता का मौन त्याग, दीदी की दुआएं और दादाजी का स्नेह, यही जीवन को भीतर से थामे रखते हैं। जब ये छोटी छोटी चीजें छूटने लगती हैं, तब धीरे धीरे मनुष्य बाहर से नहीं भीतर से अकेला होने लगता है। कभी आपने अनुभव किया है कि किसी अपने के जाने के बाद घर का सन्नाटा भी बदल जाता है? वही घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज सुनाई देने लगती है। रातें कुछ अधिक लंबी प्रतीत होती हैं और त्योहारों में भी कहीं न कहीं एक अधूरापन रह जाता है। समय बहुत निर्मम होता है, वो धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है, बच्चों को बड़ा कर देता है, माता पिता को वृद्ध कर देता है, और एक दिन घर की सबसे परिचित आवाजों को स्मृतियों में बदल देता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाये, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कितनी अद्वैत बात है। शायद इसी कारण अपने लोगों के साथ बिताया गया हर क्षण इतना अमूल्य होता है। दादी माँ की वह तस्वीर सी चलती हुई प्रातः

0: नहीं, और दादाजी का वो कांपता हुआ हाथ जो हर विदा के समय सिर पर आशीर्वाद रखता था। ये सब बातें समय के साथ समझ में आती हैं। कभी कभी इंसान पूरी दुनिया में सम्मान पा लेता है, पर भीतर कहीं एक बच्चा अपनी माँ की आवाज खोजता रह जाता है। कभी भीड़ में चलते चलते अचानक कोई परिचित खुशबू, कोई पुराना गीत या कोई भूला हुआ शब्द मन को वर्षों पीछे ले जाता है, और तब आंखें बिना आवाज किए भीग जाती हैं। घर के किसी कोने में रखा हुआ पुराना चश्मा, दीवार पर टंगी हुई तस्वीर, पुरानी अलमारी में तह करके रखी हुई साड़ी या दादाजी की लकड़ी की छड़ी, ये वस्तुएं वस्तुएं नहीं रहती, ये धीरे धीरे भावनाओं का दरिया बन जाती हैं। पिता से उनके पुराने दिनों के बारे में पूछिए। दादी दादा की कहानियों को केवल सुनिए नहीं, उन्हें अपने भीतर उतार लीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है और तब समझ में आता है कि कुछ लोग सचमुच कभी नहीं जाते। वे शाम की हवा में रहते हैं, रसोई की खुशबू में रहते हैं, प्रार्थनाओं की गूंज में रहते हैं, और घर की खामोश दीवारों में आज भी धीरे धीरे सांस लेते रहते हैं। अंत में मुनव्वर राणा का एक बेहद भावपूर्ण शेर याद आता है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। शायद इसी कारण जब घर से माँ की आवाज दूर हो जाती है, तब केवल एक व्यक्ति नहीं पूरा घर भीतर से सूना हो जाता है। और शायद जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, कुछ लोग चले जाते हैं पर उनकी बातें, उनकी दुआएं, उनकी हंसी और उनका प्रेम उम्र भर घर में रह जाता है।
1: घर अब भी उन्हें पुकारता है। इस विषय पर केंद्रित था आज का चिंतन, आलेख अक्षर शर्मा का, वाचक माजिदा खान। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए खेती की बातें। आज के कार्यक्रम में कृषि वानिकी का महत्व विषय पर सुनीता पंडित द्वारा दी गई जानकारी आप सुनेंगे।
2: खेती की बात नख सुनने वाला सभी किसान भाई बहन कवा उनकी सुनीता बन की घनी घनी राम राम। किसान बहनों ने आज बात करें कृषि वानिकी पर। अब कृषि वानिकी या है कि देखो, जब जलवायु परिवर्तन हुई रहे छे, पानी की कमी पूरी दुनिया में हुई रहे छे, चुनौती का रूप में सामना खड़ी हुई, तो कृषि वानिकी एक वरदान साबित हो सकत। सीधा सीधा शब्द न कहवा, कृषि वानिकी एक ऐसी वैज्ञानिक पारंपरिक तकनीक छे जिका म एक जमीन का टुकड़ा पर अपन पारंपरिक खेती का साथ साथ आर्थिक न पर्यावरण महत्व का पौधा पशुपालन का एक साथ जोड़ी देवांगा, तो खेती म अपन लाभ तो ले सका पर कृषि एक टिकाऊ भी हुई सका अपनी। आन कृषि वानिकी की आवश्यकता कारण भी पड़ी कि फसल में एक फसल अपन खेती कराएं, ओका बजाय अगर कीड़ा गुड़कुट लगी जाए, बाढ़ आई जाए, सूखो आई जाए, तो अपन का भारी नुकसान उठानु पड़े। पर अगर अपन एक ही साथ में कृषि वानिकी का जोड़ देवांगा, तो अपन का आर्थिक नुकसान जो हुई रोज वो नहीं होएगा और अपन का लाभ मिलेगा। कृषि वानिकी में एका साथ साथ यो फायदो भी छे कि किसान भाई अपनी जो आय छे वह दुगनी हुई सकत। फसल का देखो हर 6 महीना में आमदनी हो, जबकि पेड़ नमन कुछ साल का बाद लकड़ी हुई, फल हुआ, गोंद हुआ, एक बेची ना अपन अपनी रकम भी ले सकन, और यह एक फिक्स डिपॉजिट का रूप में काम करे। एक साथ में मिट्टी की उर्वरकता में भी सुधार हो, जैसा पेड़ न की जड़ न जो छे वो माटी का बांधी न धरज, जिका से जो भू को कटाव हुई रोज वो नहीं होएगा, रुकी जाएगा। आना जो पेड़ पौधा न की सूखी पत्ती न छे वो जमीन पर गिरेगा, आना वो माटी में मिली न प्रकृति खाद जिको ह्यूमस कह वो भी बनावेगा, जिका से अपनी माटी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होएगा। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला मगर अपन कवा तो पेड़ हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का सोखज और ऑक्सीजन को छोड़ज, जिका से अपनी जो ग्लोबल वार्मिंग को असर छे वो भी कम होएगा। एक साथ में जैव विविधता का भी अपन खिलाना पड़ेगा, ताकि एक पूरो पारिस्थितिक तंत्र अच्छो मजे को तैयार हो सका। खेत नमन पेड़ होना से पक्षी रहेगा, मित्र कीट रहेगा, वो अपनो घर बनावेगा, और फसल न खा नुकसान पहुंचाने वाला जो कीड़ा कुड़कुड़ छे उनका खाई लेगा, जेका से प्राकृतिक रूप से अपने खेती में कीड़ा न को नियंत्रण भी हो जाएगा। एक कारण जरूरी छे कि हम इन्हीं खेती का

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूं। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

आइए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 पर आप श्रोताओं के पत्रों के और ईमेल्स के उत्तर दिए जाएंगे कार्यक्रम आपका पत्र में। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित होंगे कार्यक्रम अधिकारी असीम कैथवास। 8:30 पर आप कंपेयर्ड फिल्म संगीत सुनेंगे। लक्ष्मण गोपाल और मंडली के गाए मालवी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोक संगीत में सुबह 9 और शाम 6:45 पर। जगजीत सिंह के गाए भजन हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत में आज सुबह 9:15 और शाम 6:30। शास्त्रीय संगीत में पंडित सतीश व्यास का संतूर वादन आप सुबह 9:30 और रात्रि 10:30 सुन सकते हैं। सुबह 9:30 आनंद लीजिएगा राग वसंत मुखारी का और रात 10:30 आप सुनेंगे संतूर पर बजाय राग यमन। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का समय रहेगा 10:05। सुबह 10:05 से 11:00 के मध्य आप हमें फ़ोन कर अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, इस श्रृंखला में दिन में 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुने। दोपहर की सभा में फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है 12:00, 2:00 और 2:30 पर। 12:30 का समय होगा संग्रहालय से कार्यक्रम का। 1:00 आप महिला कार्यक्रम सुनेंगे। 1:30 का समय होगा लोक संगीत का और 1:45 पर सुगम संगीत सुना जा सकता है। और आइए श्रोताओं, अब आपको आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी बता दें। आज सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 युवाणी कार्यक्रम होगा। आज के कार्यक्रम में आप एक ही फिल्म से क्रम सुनेंगे। 5:45 का समय होगा फिल्म संगीत का। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 6:00 से सुनवाया जाएगा। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम शाम 7:20 पर सुना जा सकता है। आज के कार्यक्रम में सुकन्या समृद्धि योजना पर बात होगी, साथ ही टीकाकरण का महत्व इस विषय पर डॉक्टर रंजीत सिंह बोध जानकारी देंगे। कार्यक्रम में घरेलू व्यंजन, घरेलू नुस्खे क्रम भी होगा। लोक संगीत का आनंद भी लिया जा सकता है और मंडी के भाव भी होंगे। संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा रात्रि 8:00 हम आकाशवाणी के दिल्ली

केंद्र से रिले करेंगे। 8:15 पर होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 8:30 पर विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा आप सुन सकते हैं। रात्रि सभा 9 का समय होगा सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रगीत का। रात्रि 9:30 चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10 आप सुनेंगे रूपक शीश कटे रुख बचे तो भी सस्ता जान। इसका आलेख होगा बसंत निर्गुणे का और प्रस्तुत करता है राकेश ढोंडियाल। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार और 7 हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्ष नेतारं राहुल गांधीनं आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अन्ये दल सदस्या नीट विषयक चर्चामाधृत्य प्रदर्शनम अकुर्वन्। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह तथा केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभि सह मेलनम कृतवन्तौ। तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्य पुनः पुनः कृत व्यवधान लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरण समेत्य विविध विषयेष् ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्यः एव जाते नीट परीक्षायाः प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान् विरुध्य दृढ निग्रहं कर्तुम् अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षणं च पुनः उद्घाटितवान्। असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति। प्रधानमंत्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नामना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्। वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमंत्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां संबंधित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकतां विशेषतया प्रतिपादितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू इत्येषा भारत उत्तर मैसेडोनिया देशयोः आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती। उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम् आग्रहम् अकरोत्। स्कोप्जे इत्यत्र भारत उत्तर मैसेडोनिया व्यापार मंचं संबोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अवदत् यत् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मैसेडोनिया देशस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति या उभय देशयोः संबंध सुदृढीकरणे भारतस्य दृढ प्रतिबद्धताम् द्योतयति। सा अवोचत् यत् वर्तमान व्यापारस्य परिमाणं तस्याः संभावनायाः अंशमात्रमेव प्रतिनिधित्वं करोति। अस्य दशकस्य अन्तपर्यन्तं द्वे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औषधि और स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अमरीका हर उस स्थल पर जोरदार हमले करता रहेगा जहां ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करने का प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ फाउन की उपस्थिति में श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान तनाव जारी रखने के बावजूद बातचीत की कोशिश में है। ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा होने पर अमरीका 10 गुना अधिक हमले करेगा। युवा कार्यक्रम

0: और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रण किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं और 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यों वाली पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
3: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
4: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
5: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
4: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
5: अरे काहे का मजा।
4: क्यों, क्या हुआ?
5: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
4: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
5: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
4: ये हुई ना बात।
6: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
7: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
8: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
9: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
8: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
9: वही दोपहर 1 बजे।
8: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
10: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
10: तो सुनते रहिए मालवा की शान
11: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
12: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
13: क्या?
12: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
13: वो कैसे?
12: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
13: और सुनेंगे कैसे?
12: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आ रहे बेहतर परिणाम, खोले गए करोड़ों बैंक खाते। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया। और लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय, कई जिलों में हो रही बारिश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के कारोबारियों से केवल व्यापार तक सीमित न रहकर निवेश, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में लंबे समय की साझेदारी बनाने का आह्वान किया। स्कोपे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जो दोनों देशों के मजबूत संबंधों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने कहा,
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: हर परिवार तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 से प्रारंभ की गई जनधन योजना के बेहतर परिणाम आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 3,08,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा है। कल राज्यसभा में लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इनमें 32,68,00,000 खाते महिलाओं के हैं, जबकि 45,62,00,000 अधिक खाते ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। श्री चौधरी ने यह भी बताया कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 27,84,00,000 से अधिक लोगों का नामांकन हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58,78,00,000 से अधिक और अटल पेंशन योजना में पिछले महीने तक 9,29,00,000 से अधिक लोगों का नामांकन किया जा चुका है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट

0: मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री ने कहा,
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने कहा है कि प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री यादव लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य अभियंताओं के साथ दलों द्वारा भोपाल, जबलपुर, गुना, इंदौर, सीधी, उज्जैन और छतरपुर जिलों के 35 निर्माण कार्यों के औचक निरीक्षण की कल समीक्षा कर रहे थे। भरत यादव ने सड़क निर्माण में असंतोषजनक गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और निर्माण एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के तहत मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने कल अधिकारियों को आईपीएस की रैंक लगाई। रैंक पाने वाले अधिकारियों में निमिषा पांडे, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा पाठक सोनी, सुमन गुर्जर, सभ्यसाची सराफ और समर वर्मा शामिल हैं। डीजीपी मकवाणा ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उपलब्धि उनके समर्पित सेवा भाव का प्रतिफल है। समाचारों में वक्त
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वतंत्रता पूर्व के चुनौतीपूर्ण दौर में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्र सर्वोपरि और प्रखर राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया और लाखों लोगों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर संस्कार भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन दर्शन पर विचार साझा करते हुए कहा,
3: इस बात को आज वास्तव में ये अलग प्रकार से महसूस हो रहा है। डॉक्टर हेडगेवार जी का मंचन और डॉक्टर हेडगेवार जी का मूल दर्शन जो था समानता का दर्शन, और उस समानता के दर्शन के लिए एक समान कानून का पास होने का आज सौभाग्य मध्यप्रदेश की धरती पर, ये कितना अद्भुत संयोग।
0: केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मॉनसून से पहले और मॉनसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजे। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्धार तथा रिचार्ज पिट और चेक डैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी विषय पर आज सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी भोपाल के खास कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में को सुनना ना भूलें। इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और जल संरक्षणवादी उमा शंकर पांडे रहेंगे। 2-3 सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कल भोपाल, ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर सहित 30 से अधिक जिलों में झमाझम बारिश हुई। माओगंज, उदयपुरा, बीरसिंहपुर सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज गुना, श्योपुरकुला, सतना, सिवनी, बालाघाट, पन्ना, मैहर, राजगढ़, बैतूल और कटनी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। आगामी 2-3 दिनों तक प्रदेश भर में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे फसलों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी प्रदेश में सामान्य से करीब 17% तक बारिश कम होने की खबर है। खंडवा संवाददाता के अनुसार जिले में कल तक 295.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं सतना से मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 317.2 मिलीमीटर और मैहर में 240.2 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। गुना जिले में 309.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। आपको समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं और कई महत्वपूर्ण शासकीय विधेयकों पर चर्चा होगी। खंडवा जिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर डॉ. पूर्वा मित्तल आज जिले के

पर रहेंगी। आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने पोषण समिति की बैठक में पात्र हितग्राहियों के आधार नामांकन और अपडेशन के लिए स्कूल और सेक्टर स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। सतना पुलिस विभाग के नशा मुक्ति अभियान के तहत पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में चित्रकला, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया। मंदसौर जिले में डायरिया रोको अभियान के तहत पीएचई विभाग ने पेयजल स्रोतों का क्लोरिनेशन किया और ग्रामीणों को जल जनित बीमारियों से बचाव के उपाय बताए। मैहर में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने 17 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा और 40 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इंदौर में महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। गुना कलेक्ट्रेट में कल आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने 295 आवेदनों पर सुनवाई की। इस दौरान कई मामलों का त्वरित निराकरण भी किया गया। शिवपुरी जिले में करगिल विजय दिवस और सेवा सुशासन के 12 वर्ष पर पीएम कॉलेज में 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आज से शुरू हो रही है। भोपाल नगर निगम के अमले ने सड़कों पर घूमने वाले 7 मवेशियों को कांजे हाउस और 4 घायल पशुओं को आसरा चिकित्सालय भेजा है। नीमच में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गठित विशेष सेल की बैठक कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: ये मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम आपका पत्र।

0: पतझड़ में बहार बन आई है चिट्ठी, सूखे को हरियाली बनाती आई है चिट्ठी। नमस्कार श्रोताओं, आपका पत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, पूरे सप्ताह हम आपके समीक्षा भरे खतों और ईमेल का इंतजार करते हैं और देखिए आज आपके खत और ईमेल शामिल करने का दिन भी आ गया। आप श्रोताओं के पत्रों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं कार्यक्रम अधिकारी असीम कैथवास जी। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को नमस्कार मेरा।
0: जी असीम जी, बहुत सारे मेल भी हमारे पास आ गए हैं, आप कुछ कह रहे थे।
1: हमारे पास हमारे जो सप्ताह भर हम कार्यक्रम प्रसारित करते हैं
0: जी
1: आकाशवाणी इंदौर के दोनों चैनल्स के माध्यम से, और सप्ताह भर की जो समीक्षा है वो श्रोता ईमेल के माध्यम से हमें भेजते हैं
0: जी।
1: पत्र भी आते हैं श्रोताओं के, तो ये विशेष कार्यक्रम उन सभी श्रोताओं के पत्रों के जवाब के लिए ही है,
0: उन्हीं के लिए समर्पित
1: है ना। और जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय बारिश का मौसम है, और आपने शुरुआत बहुत अच्छी पंक्तियों से की, एक बार मैं चाहूंगा वो पंक्तियां फिर से दोहराएं
0: कि पतझड़ में बहार बन आई है चिट्ठी, सूखे को हरियाली बनाती आई है चिट्ठी।
1: बस यही मैं भी कहना चाहता हूं कि पतझड़ में ये जो बारिश जो आई है तो बहार आ गई, बिल्कुल बहार बनकर आई है। और प्रकृति इस समय इतनी खूबसूरत होती है कि जब आप चारों तरफ हरियाली देखते हैं तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है
0: जी।
1: और ये हरियाली तभी आती है जब वर्षा जो है वो नियमित रूप से हमारे क्षेत्र में बरसे। हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो वातावरण में परिवर्तन आया है उससे वर्षा का जो होना चाहिए स्तर कम हुआ है। तो इसका एक विशेष जो कारण है वो हम सभी जानते हैं कि पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई है
0: जी
1: वो है। तो अभी वर्तमान में हरियाली महोत्सव चल रहा है, तो हम सभी मिलकर अपने घर के आसपास या जहाँ भी आपको खाली जगह दिखती है वहाँ पेड़ पौधे जरूर लगाएं
0: जी,
1: क्योंकि ये पेड़ पौधे ही इस धरती की खूबसूरती है।
0: बिल्कुल, इस धरती की खूबसूरती है। और आपको ज़्यादा प्रयास भी ना करना होंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर आपने पेड़ लगा दिया तो उसको पानी मिलता रहता है और पनपना आसान होता है,
1: और आप
0: छोटे प्रयास से हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं।
1: और आप देख भी रहे हैं कि इस समय जो जुलाई का महीना है वो पूरा बारिश का महीना एक समय हुआ करता था, लेकिन लगभग दो हफ्ते का जो अभी गैप है तो ये गैप भी हमारी धरती के लिए बहुत परेशानी खड़ी करने वाला है, क्योंकि हमने अभी सीजन में देखा है कि इंदौर में पानी की बहुत किल्लत हुई इस वर्ष। तो ऐसी पानी की किल्लत ना हो आने वाले समय में, तो माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी कहा है कैच द रेन, यानी पानी के बूंद बूंद को हमें संरक्षित करके रखना है। और इसके लिए जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं, जैसे आप वाटर शेड लगा सकते हैं, आप छोटे छोटे जल जो स्रोत हैं वो उसके बना सकते हैं आप, और
0: छत का पानी
1: या वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप संग्रहित कर सकते हैं जहाँ भी आपको, यदि आपके प्लॉट के आसपास या खेत में जगह हो, खाली जगह हो, तो वहाँ छोटे छोटे आप तालाब बनाकर आप वहाँ पर उस पानी को संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि यही पानी आने वाले समय में आपके जो पानी के स्रोत हैं, ट्यूबवेल है, कुएं हैं, इनको जीवित रखेगा। और यदि वो जीवित रहेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से परेशानियां आती है पानी की वो नहीं आएगी।
0: और इंदौर में काफ़ी प्रयास किए भी गए हैं, कई जगह पर पिट बनाए गए हैं जिसमें पानी संग्रहित किया जा सके।
1: बिल्कुल, प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा है इसमें, और इंदौर की जो जनता है वो बहुत जागरूक है इस मामले में। तो हमें थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा और हम बहुत अच्छी प्रकृति अपनी जो आने वाली पीढ़ी उनको दे पाएंगे और जो इस तरीके की जो समस्या है उससे भी निजात पाएंगे
0: जी। बिल्कुल,
1: तो ये हुई प्रकृति की बात
0: और अब ईमेल की बात कर ले। सबसे पहले मैं प्रवीण श्रीमाली जी का ईमेल पढ़ना चाहूंगी, विस्तृत ईमेल वे लिखते हैं, और उन्होंने लिखा है कि 15 जुलाई को प्रसारित नाटक तबादला सुना, मनोरंजक लगा, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता संजीव मालवी जी को दिल से साधुवाद और शुभकामनाएं। और 16 जुलाई को साहित्य की पत्रिका के अंतर्गत विद्यापति के कृतित्व पर हरिराम वाजपेयी की जो समीक्षा सुनी वो रोचक लगी। 19 जुलाई को योग निरोग में योगाचार्य नितिन राठौड़ से मधुमेह और योग की जानकारी स्वास्थ्यप्रद लगी। 20 जुलाई को गुड मॉर्निंग इंदौर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस विषय को लेकर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, सभी महानुभावों के विचार दिल को छू गए। अनूठे कार्यक्रम के लिए ये सुषमा जी को धन्यवाद देते हैं
1: जी।
0: 21 जुलाई को सुनहरे पल कार्यक्रम के अंतर्गत महान गीतकार आनंद बख्शी पर केंद्रित कार्यक्रम माजदा खान द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये बड़े ही अनूठे अंदाज में पेश किया था और आनंद जी के शब्दों ने अनगिनत दिलों को छुआ है। इश्क, विरह, जज्बात और जिंदगी के एहसास उनकी कलम से जो निकले हैं, उन महान शायर और गीतकार को हमारा शत-शत नमन, और माजदा जी को सुंदर पेशकश के लिए दिल से ये हार्दिक बधाई दे रहे हैं
1: जी।
0: और साथ में आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित MH हॉटलाइन, मन भावन, चॉइस टाइम, दिल ने फिर याद किया, इंदौर परिक्रमा, चित्रपट संगीत आदि कार्यक्रमों के लिए प्रस्तुतकर्ता सभी बड़ी लगन और मेहनत से काम करते हैं, सभी को हार्दिक साधुवाद।
1: हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण श्रीमाले जी, आपने सप्ताह भर के कार्यक्रमों का जिक्र अपने पत्र में किया है और विशेष रूप से जो हमने रूपक प्रसारित किया था
0: जी,
1: नाटक तबादला, माफ कीजिए, तो तबादला के बारे में, तबादला में आपने सुना होगा कि एक जो पीड़ा होती है तबादला होने के बाद में, ट्रांसफर होने के बाद में, वो पीड़ा किस तरीके से हम सभी को भावुक करती है, ये उसमें आपने सुना होगा। और जितने भी हमने कार्यक्रम प्रसारित किए उनका आपने जिक्र किया है, हमारे प्रस्तोता साथी हैं उनका सभी का आपने उत्साह बढ़ाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी, अनिल बामनिया जी का खत हमारे पास आया है, ये ईमेल। ये लिखते हैं कि आपका पत्र में प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी इंदौर से दिनांक 16 जुलाई और 17 जुलाई को जो मनभावन कार्यक्रम सुना, ये कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा और इसमें सुनाए गीतों को अच्छे से प्रस्तुत किया गया था, बेहद पसंद आए। 20 जुलाई का FM आपकी पसंद कार्यक्रम जो मुकाम सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये कार्यक्रम भी इन्हें बहुत पसंद आया।
1: जी, कार्यक्रम सुनने के लिए और हमारे कार्यक्रमों की प्रशंसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारे आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम सुनते रहिए और उनकी समीक्षाएं ईमेल के माध्यम से हमें भेजते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी ने हमें मेल भेजा है।
1: क्या लिखा
0: और ये लिखते हैं कि नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 20 जुलाई का आकाशवाणी का मराठी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में चर्चा के अंतर्गत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयंती और देवशयनी एकादशी पर जो चर्चा की गई थी वो बहुत अच्छी लगी। सादरकर्ता पूर्णिमा बोडस जी को ये हार्दिक बधाई दे रहे हैं।
1: जी, जैसा आपने लिखा है, आप खंडवा के पास जो गांव ग्राम है जसवाड़ी, वहाँ से आपने पत्र लिखा है और खंडवा, खरगोन, ये पूरा निमाड़ बेल्ट है
0: जी।
1: और बड़ी अच्छी बात है कि आकाशवाणी के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जो भाषा, बोली और संस्कृति को हम प्रसारित करते हैं
0: जी।
1: जैसे कि आपने लिखा है कि आपको मराठी कार्यक्रम बहुत पसंद आया, ये बहुत अच्छी बात है। हम भाषा के उन्नयन के लिए, भाषा के विकास के लिए आकाशवाणी अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाता है। एक निमाड़ी भाषी व्यक्ति या हिंदी भाषी व्यक्ति मराठी भाषा के कार्यक्रम को पसंद कर रहा है
0: जी।
1: तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है,
0: बहुत बड़ा उदाहरण।
1: आप में भाषा को सीखने की, समझने की जो ललक है वो रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती है और हमारे श्रोता उसको सीखते हैं। और जैसे आपने कार्यक्रम के बारे में लिखा है तो यही हम चाहते हैं, आकाशवाणी का ध्येय वाक्य भी है, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन
0: जी।
1: आपको सूचना हम दें और आप उससे शिक्षित हों और गीत वगैरह तो हम सुनवाते ही आपको,
0: सुनवाते ही, मनोरंजन तो है ही।
1: तो दुर्गेश नागरपुरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी प्रकार से आप ईमेल करते रहिए और कार्यक्रम सुनते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। हुकुमचंद कटारिया जी का ईमेल हमारे पास आया है। ये लिखते हैं कि आदरणीय दोनों प्रस्तुतकर्ताओं जी को सादर प्रणाम
1: जी।
0: 15 जुलाई को आपका पत्र कार्यक्रम सुना, आदरणीय राजेश पाठक जी और तृप्ति लटपटे जी ने बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति दी। 25-26 श्रोताओं के पत्रों और ईमेल से सजा ये कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा
1: जी।
0: चॉइस टाइम कार्यक्रम में 15 जुलाई को महिमा जी की प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। चॉइस टाइम कार्यक्रम में आसिफ अली जी की प्रस्तुति भी बहुत लाजवाब रही, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। 16 जुलाई को साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम सुना, इस कार्यक्रम में हरिराम वाजपेयी जी को जाना। 17 जुलाई को सुनहरे पल कार्यक्रम में राहुल तिवारी जी की प्रस्तुति लाजवाब रही, फिल्म काजल और हिना जैसी फिल्मों के गीत को सुनकर बहुत ही रोचक लगा। 17 जुलाई को इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम सुना, उड़ीसा पुरी में आयोजित जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा के बारे में जो जानकारी दी गई थी और लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में आयोजित भगवान बलराम उत्सव के बारे में जानकारी सुनने को मिली। धार रोड पर आयोजित चिकित्सा भवन 300 बेड वाले की भी शुरुआत हो रही है, इस विषय में भी जानकारी सुनने को मिली। इतने सारे कार्यक्रमों के लिए मुकाम सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
1: कटारिया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सप्ताह भर के कार्यक्रम और दोनों चैनल्स के जो कार्यक्रम वो आपने सुने हैं
0: जी।
1: विशेष रूप से
0: काफी लंबा हमें मेल भेजा है, काफी सारी चीजें और भी है
1: जी,
0: उसमें।
1: जी
0: जी। 16 जुलाई को साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम सुना, इस कार्यक्रम में हरिराम वाजपेयी जी को जाना। और चॉइस टाइम कार्यक्रम में 17 जुलाई को रूपाली चौहान जी की प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 17 जुलाई को ये योग निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत मधुमेह और योग नितिन राठौर साहब से कुछ आसान आसनों के बारे में जानकारी मिली, वज्रासन, मंडुकासन, वक्रासन, उत्तानपात आसन आदि आसनों के माध्यम से हम अपने मधुमेह को ठीक कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी दिलाने के लिए मुकाम सिंह चौहान जी के साथ साथ नितिन राठौर जी का भी ये बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।

0: और 18 जुलाई को गुड मॉर्निंग इंदौर में बहन सुषमा व्यास जी की प्रस्तुति, 20 जुलाई को शतरंज दिवस के विषय में धर्मेंद्र सिंह मौर्य, डॉक्टर सोमानी, अक्षत जी और शेर डागरिया जी से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली और हमारे जीवन में शतरंज का कितना महत्व है ये भी जानने को मिला, इसके लिए ये धन्यवाद दे रहे हैं
1: जी।
0: और 20 जुलाई को MH हॉटलाइन में वंदना तिवारी जी की प्रस्तुति इन्हें महत्वपूर्ण लगी और रोचक बातें, श्रोताओं की पसंद के गीत सुनाकर उन्हें धन्यवाद सुनाए, उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं।
1: मैं इस पत्र पर यह कहना चाहूँगा कि आपने जो तिथियाँ लिखी हैं उसमें थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। जो गुड मॉर्निंग इंदौर जो कार्यक्रम है वो 20 तारीख को प्रसारित हुआ था।
0: 18 जुलाई लिखा है,
1: 18 जुलाई लिखा आपने, तो हो सकता है टाइपिंग में कुछ भूल गए हों आप, लेकिन कार्यक्रमों के बारे में आपने लिखा है और इंदौर परिक्रमा का आपने जिक्र किया, यहाँ पर मुकाम जी की प्रस्तुति है,
0: से उन्होंने इसके बारे में
1: बहुत अच्छी प्रस्तुति आपने दी थी। विशेष रूप से आपने जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी की जो यात्रा है उसका आपने यहाँ पर पूरा, जो इंदौर में भी मनाया गया है
0: जी,
1: उसका आपने समावेश किया था और साथ साथ उसमें विभिन्न जो विषय हैं इंदौर के आसपास के उनको आपने शामिल किया। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के सूचनात्मक कार्यक्रम जब श्रोताओं तक पहुंचते हैं तो हमारे शहर में क्या हो रहा है, शहर की क्या गतिविधि चल रही है और उससे लोगों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा, ये इस किसकी जानकारी रेडियो के माध्यम से पहुंचती है। तो ऐसे कार्यक्रम बनाने के लिए मुकाम जी को धन्यवाद और आपने पत्र लिखा, हम इसी प्रकार से आपसे ये चाहेंगे कि नियमित रूप से आप कार्यक्रम से जुड़े रहिए और पत्र लिखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। कुछ और चीज़ें रह गई हैं। 20 जुलाई को चॉइस टाइम कार्यक्रम के अंतर्गत पद्मश्री जी की प्रस्तुति भी लाजवाब रही, उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत सुनाए, इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं और इन्होंने नाम लिखे हैं, हुकुमचंद कटारिया जी, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव काव्यांशी, कृतिका और श्रीमती प्रभा कटारिया, इनके नाम इन्होंने अपने ईमेल में दिए हैं।
1: आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। और एक और मेल हमारे पास आया है, बेगम खान जी का ये ईमेल है, राजाराम नगर देवास से
1: जी।
0: ये लिखते हैं कि आपके यहाँ से जो भी फोन इन प्रोग्राम पेश होते हैं उनमें बहुत से श्रोता रोज रोज फोन लगाते हैं, उनसे यही कहना है कि रोज फोन ना लगाएं, थोड़ा अंतराल रखें और बहुत ज्यादा लंबी बातचीत ना करें। साथ ही एक सुझाव भी है कि युवाणी में भी ईमेल व पत्र शामिल किए जाएं जैसे पहले हुआ करते थे। राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल जी भी इस खत में शामिल हैं
1: जी। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है और हमारे जो प्रस्तुता साथी है वो चाहे MH हॉटलाइन का कार्यक्रम करते हैं या चॉइस टाइम का कार्यक्रम करते हैं
0: जी,
1: तो वो हमेशा ये आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में निवेदन करते हैं कि यदि किसी श्रोता ने फ़ोन कर दिया है तो लगभग उसमें 2 महीने का वो गैप तो रखें ताकि जो अन्य श्रोता हैं
0: नए श्रोताओं को जुड़ने का मौका मिल सके, कार्यक्रम की खूबसूरती बनी रहे,
1: क्योंकि अब आकाशवाणी की जो सीमाएं हैं वो केवल इंदौर जो रीजन है जिसमें 8 जिले आते हैं केवल यहाँ तक नहीं बची है। अब न्यूज़ ऑन AIRF पर आने के बाद में ये पूरे विश्व में के जो श्रोता हैं, जहाँ जहाँ हमारे भारतीय लोग रहते हैं और इंदौर के लोग रहते हैं खास करके, तो वो लोग इंदौर की के जो कार्यक्रम है वो रेडियो के माध्यम से सुन पाते हैं, न्यूज़ ऑन AIRF के माध्यम से सुन पाते हैं। तो बाहर के श्रोता भी प्रयास करते हैं कि इस जो जो फ़ोन इन कार्यक्रम है उनमें उनके जो फ़ोन कॉल्स वो शामिल किए जाएँ। तो ये ज़रूरी है कि अगर हमारा फ़ोन कॉल्स एक बार शामिल हो गया है तो हम कम से कम उसमें
0: समय का अंतराल,
1: हाँ, 2 महीने का गैप तो उसमें रखें ताकि अन्य श्रोताओं को भी मौका मिल सके,
0: मौका मिल सके।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुझाव देने के लिए।
0: धर्मपुरी ज़िला धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैज़ान सुमेरा, कशिश, साइमा हसनैन और खुशी ने भी हमें मेल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि जो 21 जुलाई को आपके केंद्र से प्रातःकालीन बेला में प्रसारित प्रोग्राम सुनहरे पल सुना, बहुत पसंद आया। भारतीय सिनेमा के आकाश में आनंद बख्शी एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र थे जिन्होंने अपनी लेखनी से भावनाओं को अमर कर दिया। जन भाषा के सरल शब्दों में दर्शन और प्रेम पिरोने की उनकी कला अद्वितीय थी। उनके लिखे गीत आज भी जनमानस के होठों पर सहजता से तैर जाते हैं। ऐसे महान गीतकार आनंद बख्शी के जीवन

0: संघर्ष और सदाबहार गीतों पर आधारित सुनहरे पल कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता माजिदा खान जी ने यह प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली और हृदय स्पर्शी रही। माजिदा जी ने अपने सहज आत्मीय और रोचक अंदाज से कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। उनके द्वारा दी गई जानकारी, गीतों के चयन और प्रभावशाली पेशकश ने श्रोताओं को शुरुआत से अंत तक बांधे रखा। ऐसी उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए माजिदा जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद।
1: जैसा मैंने कहा ना कि हमारे जो प्रस्तुतकर्ता इतनी मेहनत करते हैं अपने कार्यक्रमों को बनाने में
0: जी।
1: और ऐसे विशेष अवसर जब भी आते हैं, जैसे आनंद बख्शी जी का जो उन्होंने कार्यक्रम प्रसारित किया, तो ये वो समय था जिस समय समाज में बहुत सारे जो जागरूकता है, बहुत सारे विषयों पर जागरूकता की आवश्यकता थी, और उन्होंने जो गीत लिखे उन गीतों में उन्हीं जो सामाजिक विषय हैं उनको शामिल किया गया। गीतों के माध्यम से वो सब चीज़ें आम जन तक पहुंची, फिल्मों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, और फिल्मों की जो कहानियाँ उनके माध्यम से। तो एक गीतकार और एक लेखक जब अपनी लेखनी चलाता है तो वो बहुत मैं ये कहना चाहूँगा कि वो दिल हृदय तक वो उसका असर होता है,
0: असर होता है।
1: तो इसी प्रकार से आनंद बख्शी जी के गीत हम आज भी सुनते हैं
0: जी।
1: तो बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किया और कार्यक्रम के माध्यम से माजिदा जी को साधुवाद पहुंच रहा है
0: जी।
1: और आपने पत्र लिखा और इतनी सराहना की आपने हमारे प्रस्तुता साथी की, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला पत्र हमारे पास है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े का
1: जी।
0: आपने लिखा है, आपका पत्र कार्यक्रम जो राजेश पाठक जी, महिमा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बहुत अच्छा लगा। चॉइस टाइम में आसिफ अली जी, पद्मश्री तपस्वी जी, मुकाम सिंह चौहान, मयंक शर्मा, अखिलेश बाथम जी, इन सब की प्रस्तुति बहुत ही पसंद आई
1: जी। निश्चित रूप से आप हिंगोली महाराष्ट्र से जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, न्यूज़ ऑन AIRF मोबाइल के माध्यम से ही आप सुन रहे हैं
0: जी,
1: और यही हमारी पहुंच है रेडियो के माध्यम से, न्यूज़ ऑन AIRF के माध्यम से हम दूर दूर के श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं, और हमारे श्रोता कार्यक्रमों को सुनकर उनकी समीक्षा भी भेज रहे हैं, ये बड़ी बात है
0: जी।
1: तो आपने कार्यक्रम सुने और ईमेल किया, समीक्षा की, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। एक और ईमेल हमारे पास आया है, गुरुवार 16 जुलाई को साहित्य के कार्यक्रम में मैथिली कोकिल कवि रचनाकार विद्यापति पर हरिराम वाजपेयी, अखिलेश राव और भरत कुमार उपाध्याय द्वारा विद्यापति की प्रमुख काव्य रचनाएं कीर्ति पताका, कीर्ति लता पदावली आदि पर समीक्षात्मक टिप्पणी बहुत अच्छी लगी। हिंदी साहित्य में विद्यापति का प्रमुख स्थान रहा है, हमने भी हिंदी साहित्य में विद्यापति जी को पढ़ा है। रविवार 19 जुलाई को सुबह योग निरोग में योगाचार्य नितिन राठौर से मुकाम सिंह चौहान की बातचीत अच्छी लगी, विभिन्न योगासनों की जानकारी प्रदान की गई। 20 जुलाई को गुड मॉर्निंग इंदौर में विभिन्न शतरंज खिलाड़ियों द्वारा सुषमा व्यास जी की बातचीत और उनके पसंद के गीत सुनाए, शतरंज खेल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। मंगलवार 21 जुलाई को साधारण शब्दों में असाधारण बात करने वाले महान गीतकार आनंद बख्शी साहब पर केंद्रित सुनहरे पल कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, माजिदा खान जी की प्रस्तुति सराहनीय लगी। और अंत में एक विशेष बात यह है कि इस वर्ष श्रोता दिवस के अवसर पर होने वाला अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन भिलाई छत्तीसगढ़ में 19 और 20 अगस्त को होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी रेडियो प्रेमी श्रोताओं के मन में अपार उत्साह है। मालवा निमाड़ क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के श्रोता इस सम्मेलन में भाग लेने हेतु जानकारी मिल रही है। इस श्रोता सम्मेलन को सफल बनाने की तैयारियां स्थानीय समिति द्वारा कई दिनों से चल रही है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले श्रोताओं का उत्साह बना रहे, जो भी इस श्रोता सम्मेलन में आना चाहते हैं सबका स्वागत है, ये भी इन्होंने लिखा है। और ये मेल बेरूलाल वाक्तरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से आया
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे सप्ताह भर के कार्यक्रमों के बारे में लिखा है, और जैसा आपने योग निरोग की चर्चा की अपने इस ईमेल में, साहित्यिकी की चर्चा की आपने, तो निश्चित रूप से साहित्यिकी, संस्कृति, भाषा, ये सब एक ही बिंदु पर के आसपास घूमने वाले विषय हैं, और ये वो कारक होते हैं जो समाज में सुधार का काम करते हैं, जागरूकता लाने का काम करते हैं।

0: जैसा कि विद्यापति जी का आपने यहाँ जिक्र किया है कि उनकी जो साहित्यिक रचनाओं पर वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात कही, और साहित्यिकी के अंतर्गत जो भी उन्होंने अपना योगदान दिया, साहित्य में योगदान दिया, उसका आप सभी श्रोताओं ने रेडियो के माध्यम से जो हमने कार्यक्रम प्रसारित किया उसका लाभ लिया। तो हम
1: जी
0: उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम आप नियमित रूप से सुनते रहें और जो समीक्षा है वो पत्र के माध्यम से हमें इस प्रकार से भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी पालदाना का इंदौर से हसीना भी और अमीना भी मंसूरी ने हमें मेल भेजा है। इन्होंने लिखा है, खुदा ने खुश होकर पूछा कि क्या चाहिए। हमने कहा खुशी, कामयाबी और लंबी उम्र। अंदर से फिर आवाज आई, किसके लिए? हमने कहा इस वक्त जो हमारा ईमेल पढ़ रहे हैं उनके लिए।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: दिनांक 15 जुलाई को आपका पत्र बहुत ही दिलकश लगा। तृप्ति जी की शानदार पेशकश से सजा हुआ यह प्रोग्राम था और उतने ही बेहतरीन तरीके से राजेश पाठक जी ने प्रतिक्रियाओं का जवाब दिया। साथ ही दिनांक 11 जुलाई का दिल ने फिर याद किया प्रोग्राम एक नंबर था। मनीष कुमार सोनी जी इस कार्यक्रम को पेश कर रहे थे, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। क्या शानदार तरीके से उन्होंने प्रोग्राम पेश किया। हमें पूरे आधे घंटे तक ऐसे रेडियो से चिपकाए रखा जैसे छोटा बच्चा दादी नानी की कहानी बड़े ध्यान से सुनते हैं। ठीक वैसे ही हमने भी रेडियो की ओर ध्यान लगाए रखा। और क्यों ना ध्यान लगाया जाए, याद जो भी वो बारिश के दिनों की थी, किस तरह से स्कूल के दिनों में मुलाकात हुई और दोस्ती आगे बढ़ी, यानी पूरा प्रोग्राम दिलचस्प था। शानदार प्रस्तुति हेतु मनीष सोनी जी को दिल से शुक्रिया।
0: ये जो कार्यक्रम है दिल ने फिर याद किया
1: जी,
0: ये कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम अपना बचपन जीते हैं, बचपन के बाद में हमारी युवावस्था आती है, फिर गृहस्थ जीवन में जाते हैं और गृहस्थ के बाद में फिर हमारी वृद्धावस्था का जो समय होता है
1: जी।
0: तो गृहस्थ जीवन और वृद्धावस्था का जो बीच का जो समय होता है, ये वक्त वो होता है जिस समय हमें अपने बचपन की बहुत याद आती है
1: जी।
0: या हमारी जो स्कूल की जो जीवन शैली थी उसकी बहुत याद आती है। और ये वो समय होता है जिसमें हमारे समय हमारा सामने पूरा परिवार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसमें ढूंढते रहते हैं
1: जी।
0: और बस यही इन्हीं विषयों को दिल ने फिर याद किया उस कार्यक्रम में शामिल किया जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके दिल तक पहुंचता है
1: जी।
0: और जैसा आप सोनी जी जो हमारे प्रस्तुता साथी हैं, अनाउंसर हैं, उन्होंने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया और आपने सुना, आपके दिल तक पहुंच गया, इसका अर्थ ये है कि हमारा जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो पूरा हो गया।
1: पूरा हुआ।
0: आपने पत्र लिख दिया, ऐसे बहुत सारे श्रोता होंगे जिन्होंने वो कार्यक्रम सुने होंगे, लेकिन आपने ईमेल के माध्यम से अपनी जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ हम तक पहुँचा दी है। लेकिन ऐसे कई श्रोता हैं जो भले ही अपनी प्रतिक्रिया नहीं पहुँचा पाए, लेकिन असर उनके दिल तक हो गया है
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। बहुत सारे हमारे पास मेल ऐसे भी आए हैं असीम जी,
0: जी
1: जिन्होंने हमें फिल्म के गीत सुनवाने की फरमाइश के लिए मैसेज किया है, तो हम उनको क्या कहना चाहते हैं?
0: मैं आप सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि फरमाइशी कार्यक्रम में जो हमारे हैं, जैसे MH हॉटलाइन है, मन भावन है, तो उन कार्यक्रमों में आप अपनी जो फरमाइश के गाने सुन सकते हैं, तो उन्हीं कार्यक्रमों में अपनी जो पत्र हैं वो भेजिए या फ़ोन लगाइए, तो उन में हम आपके जो पसंद के गाने वो सुनवाएंगे। ये आपका पत्र कार्यक्रम है, इसमें सप्ताह भर के जो कार्यक्रम हम लोग रेडियो पर प्रसारित करते हैं, हमारा आकाशवाणी इंदौर का जो प्राइमरी चैनल है उस पर और विविध भारती चैनल पर, उनकी जो समीक्षा है उन समीक्षाओं को शामिल करने का ये कार्यक्रम है
1: जी। शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान सुमेरा, कशिश, साइमा हसनैन और खुशी का एक और ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्होंने 15 जुलाई को आकाशवाणी इंदौर से रात्रि 8:30 बजे प्रसारित प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया सुना, बहुत पसंद आया
0: जी।
1: ये महज गीतों का कार्यक्रम न होकर संवेदनाओं, स्मृतियों और शब्दों का एक सजीव संगम है। प्रस्तुतकर्ता पद्मश्री तपस्वी जी ने अपने साहित्यिक और शायराना अभिव्यक्ति, प्रभावशाली वाणी और भावपूर्ण शायरी से हर गीत को एक नई ताजगी प्रदान की। पद्मश्री जी की प्रस्तुति श्रोताओं की स्मृति की मधुर गलियों में उन्हें ले जाकर संगीत और साहित्य के अनुपम सौंदर्य के दर्शन कराती है। निसंदेह पद्मश्री जी की यह प्रस्तुति हमेशा अविस्मरणीय रहेगी, किंतु प्रोग्राम महज 15 मिनट का

0: जी
1: तो बस यही जो संवेदनाएं हैं वो आप तक पहुंच रही हैं रेडियो के माध्यम से, और इसी प्रकार से कार्यक्रम सुनते रहिए आप नियमित रूप से और ईमेल करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और प्रवीण श्रीमाली जी ने एक शिकायती मेल भी हमें भेजा है,
1: इसमें तो पत्र भी शामिल किया हमने अभी
0: जी। इसमें लिख रहे हैं कि प्रतिदिन प्रसारित होने वाला लोकप्रिय कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में कतिपय श्रोता रोजाना कॉल करते हैं, उनके कॉल भी शामिल हो रहे हैं, जबकि आपके केंद्र से निर्देशित किया जाता है कि उनके कॉल आज लग गए हैं वो 2 महीने बाद कॉल करें, ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम में जुड़ने का मौका मिले। लेकिन श्रोता इसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं बस यही कहना चाहूँगा, हमारे श्रोताओं से ही निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान आपके पास में ही है, और नियमित रूप से आप फ़ोन तो लगाइए, लेकिन अगर किसी श्रोता का फ़ोन कॉल्स एक बार शामिल हो जाता है तो लगभग 2 महीने का गैप तो उसमें रखिए
0: जी,
1: ताकि जो अन्य श्रोता हैं उनको मौका मिल सके। बस यही मैं कहना चाहूँगा
0: जी सर। और भी खत हमारे पास मेल आए हैं, लेकिन अधिकांश जो मेल हमें मिले हैं उनमें गीतों की फरमाइश भेजी है, जैसे बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने हमें मेल भेजा
1: जी।
0: इसके अलावा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर और पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन
1: जी,
0: इनका मेल भी हमें मिला है। खरगोन मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, साथ ही आदलपुरा गोगामा से संजय बामनिया, माया, कृष्णा और कान्हा का भी हमें ईमेल मिला, और सभी ने गीतों की फरमाइश भेजी है
1: जी। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि गीतों की फरमाइश के लिए जो हमारा कार्यक्रम है एमएच हॉटलाइन, उस पर आप फ़ोन लगाइए और मन भावन है उसमें आप चिट्ठी लिखिए, तो आपकी फरमाइश हम इन कार्यक्रमों में पूरी करेंगे। और भी कुछ पत्र मिले हैं?
0: और हमें मिले हैं, ये सैलाना जिला रतलाम से आकाशवाणी टीम ने एक कार्यक्रम 1990 के दशक में प्रस्तुत किया था
1: जी,
0: मैं उसका गवाह हूँ, ऐसा कार्यक्रम उसके बाद मेरे देखने में नहीं आया। मुझे याद है मेरे पिताजी ने 1975 में एक ट्रांजिस्टर लाकर दिया था, सिलसिला वहीं से प्रारंभ हुआ जो अनवरत जारी है। आज का सुनहरे पल कार्यक्रम बहुत सुंदर लगा, प्रस्तुतकर्ता को शुभकामनाएं
1: जी।
0: ये खत हमारे पास आया है डीसी सारस्वत, जी सैलाना जिला रतलाम से आकाशवाणी टीम के कार्यक्रम में जो 1990 के दशक में प्रस्तुत किया गया था, उनका कहना है कि मैं उसका गवाह हूं और ऐसा कार्यक्रम उसके बाद देखने में नहीं आया। मुझे याद है मेरे पिताजी ने 1975 में एक ट्रांजिस्टर लाकर दिया था, सिलसिला वहीं से प्रारंभ हुआ जो अनवरत जारी है। आज का सुनहरे पल कार्यक्रम बहुत सुंदर लगा, प्रस्तुतकर्ता को शुभकामनाएं
1: जी।
0: ये खत हमें भेजा है डीसी सारस्वत, पटवारी कॉलोनी रतलाम से आया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम सुनने के लिए और उस कार्यक्रम की सराहना करने के लिए
0: जी। एक और खत हमारे पास आया है आकाशवाणी इंदौर से, 16 तारीख को जो मनभावन कार्यक्रम, 17 तारीख को मनभावन कार्यक्रम सुना, ये अच्छा लगा, इसमें सुनाए गीतों को अच्छे से प्रस्तुत किया गया था, 20 जुलाई को एफएम आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने को मिला, प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। आकाशवाणी पर प्रातःकाल 7:00 से 7:10 तक हमें कार्यक्रम सुनने को नहीं मिला, इस गड़बड़ी के कारण हम कार्यक्रम नहीं सुन सके, इस तकनीकी खराबी को दूर करने का प्रयास करें। ये हमें लिखा है लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम और समस्त बामनिया परिवार
1: जी। ये आपका जो सुझाव है निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है, और कई बार अगर आप, मैं आपसे ये सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आप जो हमारे कार्यक्रम है वो न्यूज़ ऑन AIRF मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनते हैं या रेडियो सेट पर सुनते हैं? अगर न्यूज़ ऑन AIRF मोबाइल पर सुनते हैं तो जो कार्यक्रम है वो आप नियमित रूप से उस पर सुन पाएंगे। कई बार रेडियो सेट पर प्रसारण नहीं मिलता है, उसका कारण ये है कि जो हमारा ट्रांसमीटर है वहाँ, ये जो बारिश का समय, इस समय बिजली का जो फेलवर ज़्यादा होता है, और उस

0: वजह से कई बार ट्रांसमीटर में समस्याएँ आती है, जिसकी वजह से आप रेडियो के कार्यक्रम सुन नहीं पाते हैं, जिसका हमें बहुत खेद है। और इस कमी को पूरा करने के लिए ही न्यूज़ ऑन जो मोबाइल ऐप है वो बनाया गया है। तो आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी कार्यक्रम को आप सुने तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की जो व्यवधान होता है वो आपको उसमें रेडियो पर सुनने को नहीं मिलेगा।
1: जी, धर्मेंद्र पटेल गांव टीही तहसील महू जिला इंदौर से लिखते हैं, और इनके साथ में इनके दोस्त विक्रम चौधरी ग्राम बगड़ी से वो भी शामिल हैं। इनका कहना है कि हम आपका कार्यक्रम हमेशा सुनते हैं
0: जी।
1: इस कार्यक्रम को सुनकर हमें बचपन की याद आ जाती है, सुकून और शांति वाला दौर याद आ जाता है
0: जी।
1: हमारे दादाजी पुलिस में थे लेकिन वो हमेशा रेडियो साथ में रखते थे और सुनते थे
0: जी।
1: एक अलग माहौल बनता था आपके इस प्रकार के कार्यक्रम को सुनकर। सोचता हूँ काश वही दौर फिर से आ जाए।
0: निश्चित रूप से हम हमारे बीते हुए दिनों को बहुत याद करते हैं
1: जी।
0: और हम सभी के साथ में ये होता है कि हम ये कहते हैं कि पहले का ज़माना बहुत अच्छा था, लेकिन ज़माना वही है, बस समय आगे बढ़ गया है, तकनीक आगे बढ़ गई है। तो हमें अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको सहेज के रखना है और उन्हीं यादों को सहेजते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आज जो वर्तमान है वही आगे चल के हमारी स्मृति बन जाएगा, हमारी यादें बन जाएगा
1: जी।
0: तो हम आज के दौर में वो अच्छे काम करें अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, कि जब हम उन स्मृतियों को आज से 2 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद 20 साल बाद जब याद करें तो हमें अपने उस किए गए योगदान को याद करके बहुत खुशी मिले
1: जी।
0: और हम अपना जो बीता हुआ समय है उसको हम ऐसे ही सहज कर अपने मन को बहुत खुश रख सकते हैं
1: जी। नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हमें मेल मिला है सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा का।
0: क्या लिखते हैं?
1: ये लिखते हैं कि 18 जुलाई 2026 का कार्यक्रम विकसित होता भारत बहुत अच्छा लगा
0: जी।
1: इस कार्यक्रम में संवाद, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर डॉक्टर ममता चंद्रशेखर ने सुषमा व्यास जी की जो बातचीत थी बहुत लाभदायक लगी, ये धन्यवाद दे रहे हैं।
0: निश्चित रूप से विकसित होता भारत ये जो कार्यक्रम है हमारा बहुत ही ज्ञानवर्धक है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी हमारे श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचती है
1: जी।
0: और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कई बार बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ यदि हमें आज नहीं लेना है लेकिन हम अपने किसी साथी को हम दिला सकते हैं यदि वो इस योजना में पात्र है। तो ये कार्यक्रम में हम जागरूकता वाला कार्यक्रम है और विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उनको हम शामिल करते हैं। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए नियमित रूप से और इसकी समीक्षा ऐसे ही ईमेल के माध्यम से हमें भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: जैसा कि हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे प्रकृति की, और ये प्रकृति हमें बिना कुछ हमसे लिए हमें बहुत कुछ देती है,
1: बहुत कुछ।
0: जब हम सुबह उठते हैं तो सूर्योदय जब होता है तो उस समय आप देखिए कितना खूबसूरत जो आसमान होता है भूरा भूरा, और उसके बाद में फिर हमें धूप मिलती है, और चिकित्सा की भाषा में कहते हैं कि हमें धूप की ज़रूरत है, विटामिन डी उससे हमें मिलता है। और जैसे जैसे हम हमारा जो दिनचर्या आगे बढ़ती है तो बहुत ही खूबसूरत, जब हम घूमने फिरने जाते हैं किसी बाग में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं तो खूबसूरत हमें वहाँ जो फूल दिखते हैं, पौधे दिखते हैं, वो हमारे मन को बहुत खुश कर देते हैं। इसी प्रकार से आज अभी वर्तमान में बारिश का समय है, बारिश के समय आप प्रकृति प्रेमी हैं तो निश्चित रूप से आप जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ जाकर आप अपना जो मन है वो खुश रखते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँ,
1: आपको थोड़ा सा रोकूंगी
0: जी।
1: सुदर्शन शाह जी का मेल हमें अभी अभी मिला है, मैं वो मेल पढ़ देती हूँ। इन्होंने लिखा है, दिनांक 19 जुलाई को प्रातःकालीन सभा में प्रसारित कार्यक्रम रोग योग निरोग में योगाचार्य नितिन राठौर से मधुमेह और योग की जानकारी सुनी, साफ स्वास्थ्यवर्धक और लाभप्रद लगी। और चूंकि मेरे ससुर जी को भी 40 वर्षों से मधुमेह की शिकायत है, आपकी वार्ता से मुझे लाभ हुआ। और 7:20 पर साप्ताहिक गतिविधियों पर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर भी इन्हें अच्छा लगा।
0: सुदर्शन शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल चलते चलते आपने मेल किया है
1: जी,
0: और मेल करने के लिए बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम सभी

0: अभी आप आपका पत्र कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
5: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
7: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहेश्वरी

0: श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
1: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीओ 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहेक श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुंचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि

0: उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीयों को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल यह है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉल्स फॉर सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड नॉर्थ मैसेडोनिया। अर्जेस बिजनेसेस फ्रॉम बोथ कंट्रीज टू मूव बियॉन्ड ट्रेड एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स। India to host three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva. And PV Sindhu to take on compatriot Unnati Hooda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Drobdi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
4: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
3: Our correspondent covering the President's visit to North Macedonia has filed this report.
5: President Murmu said India's pharmaceutical industry is well placed to invest in North Macedonia through joint manufacturing of medicines and medical devices for the wider Balkan and European markets. She also encouraged partnerships in food processing, cold chain logistics, renewable energy, artificial intelligence, cyber security, and startup ecosystems. The President invited North Macedonia to join initiatives such as International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and the Global Biofuels Alliance. She also extended an invitation to participate in the World Audiovisual Entertainment Summit WEBS to be held in India next year. This is Subhasri Mahapatra from Skopje, North Macedonia.
3: Concluding her address, President Murmu urged businesses, investment agencies and industry bodies of both countries to build enduring partnerships through technology transfer, joint ventures and local value creation. India will host a three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness, and equitable access to quality health care. A report.
6: The 16th BRICS Health Ministers meeting reflects India's commitment to advancing collective action on key global health priorities through the guiding theme of building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Addressing a press conference, Union Health Secretary Punya Salila Srivastava said that discussions during the ministerial meeting will focus on strengthening cooperation in areas such as health security, pandemic preparedness, digital health, innovation, access to affordable medicines, traditional complementary and integrative medicine, tuberculosis, healthy lifestyles,

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओह लवली, वेल डन।
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से

0: EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
1: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
0: आप कौन?
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: श्रुतम, भारतीय फिल्म संगीत के विशाल आकाश में अनेक सितारे चमके, लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिनकी चमक समय के साथ साथ और भी बढ़ती चली गई। उनमें एक नाम है मुकेश, एक ऐसा जादुई स्वर जिसने संगीत को केवल सुरीला ही नहीं बल्कि संवेदनशील भी बनाया।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओ, मुकेश केवल गायक नहीं थे, वे भावनाओं के ऐसे शिल्पी थे जिन्होंने शब्दों को आत्मा की आवाज बना दिया। उनकी गायकी में कोई दिखावा नहीं था, कोई बनावटीपन नहीं था। उनकी आवाज सीधे दिल से निकलती और बिना किसी आडंबर के श्रोता के दिल तक पहुंच जाती।

जब मुकेश गाते थे तो लगता था मानो कोई अपनी मन की बात कह रहा हो, दर्द हो तो ऐसा कि आंखें नम हो जाएं, प्रेम हो तो ऐसा कि मुस्कान खिल उठे, और दर्शन हो तो ऐसा कि जीवन का अर्थ समझ में आने लगे।

संगीत के जानकार कहते हैं कि मुकेश सुरों से अधिक भाव के गायक थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सुरों से कमजोर थे। उनकी सबसे बड़ी कला ये थी कि वे कभी अपनी गायकी का प्रदर्शन नहीं करते थे। वे गीत के ऊपर हावी नहीं होते, बल्कि स्वयं गीत में समा जाते। यही वजह है कि आज भी उनके गीत सुनते समय गायक याद नहीं आता, केवल भाव याद रहते हैं।

कुछ आवाजें केवल सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। कुछ गायक केवल गीत नहीं गाते, वे शब्दों में प्राण फूंक देते हैं। कुछ कलाकार समय के किसी एक दौर के नहीं होते, बल्कि हर दौर के हो जाते हैं। मुकेश ऐसे ही कलाकार थे। आज 22 जुलाई मुकेश की जन्म जयंती है, उन्हें हमारा सादर नमन। श्रोताओं, अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में

0: 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: लोक संगीत में आज आप लक्ष्मण गोपाल और मंडली के गाए मालवी लोकगीत सुन रहे हैं।

लोक संगीत में आज आप लक्ष्मण गोपाल और मंडली के गाए मालवी लोकगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज हम आपको जगजीत सिंह के गाए भजन सुनवा रहे हैं।

0: श्रोताओं, जगजीत सिंह के गाई भजनों का आनंद आप शाम 6:30 बजे भी ले सकते हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: शास्त्रीय संगीत में लीजिए अब सुनिए पंडित सतीश व्यास का संतूर पर बजाया राग बसंत मुखारी, विलंबित गत रूपक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं मुकेश जाधव।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप पंडित सतीश व्यास का संतूर वादन सुन रहे थे। आज आपने सुना संतूर पर बजाया राग बसंत मुखारी। विलंबित गत रूपक ताल और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध थे। तबले पर संगत कर रहे थे मुकेश जाधव। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाएगी। कृपया जिले की चिट्ठी की प्रतीक्षा कीजिए।

0: भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खरगोन जिले की चिट्ठी। आलेख आशुतोष पुरोहित, वाचन स्वर दीपा सिंह। खरगोन जिले के लिए महीना मिला जुला रहा। जिले के झिरनिया में पिछले दिनों आयोजित सिकलसेल शिविर में राज्यपाल मंगू

पटेल ने कहा कि सिकल सेल जैसी अनुवांशिक बीमारी के उन्मूलन के लिए उपचार के साथ साथ जन जागरूकता भी आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक इस बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसे जन सहभागिता से ही पूरा किया जा सकता है। जल गंगा संवर्धन अभियान में खरगोन ने प्रदेश में छठा स्थान प्राप्त किया है। अभियान के अंतर्गत जिले में 8352 जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के जिला स्तरीय समापन समारोह में विधायक बालकृष्ण पाटीदार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मिलिंद कुमार नागदेवी सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। खरगोन में पिछले दिनों सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, वनाधिकार से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने, आयुष्मान कार्ड अभियान में तेजी लाने, सिकल सेल उन्मूलन अभियान को प्राथमिकता देने, पेयजल और सिंचाई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग में ड्रॉप आउट बच्चों की मुख्यधारा में वापसी, स्कूल भवनों की मरम्मत और निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन का शुभारंभ पिछले दिनों हुआ। विकसित भारत गारंटी ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन का शुभारंभ पूर्व मंत्री खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार के मुख्य आतिथ्य में हुआ। श्री पाटीदार ने कहा कि यह मिशन ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के साथ जल संरक्षण और आजीविका सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खरगोन जिले के झिरनिया विकासखंड ने नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में मध्य प्रदेश जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर दिशा समिति की बैठक में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने पूरी टीम और जिला प्रशासन को बधाई दी। उधर झिरनिया और भगवानपुरा विकासखंड में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए विशेष परिवहन सुविधा शुरू की है। इसके साथ सुमन पंचायत पहल के माध्यम से सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रभारी कलेक्टर रेखा राठौर ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन और शासन की प्राथमिकता है। इससे जन सहभागिता से मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत खरगोन नगर पालिका क्षेत्र के 29 श्रद्धालुओं का वैष्णो देवी यात्रा के लिए पिछले दिनों रवाना किया गया। श्रद्धालु बस से खंडवा और वहां से रेल मार्ग से वैष्णो देवी गए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी, उपाध्यक्ष भूलू कर्मा सहित पार्षदगण और अधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाओं के साथ विदा किया। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पिछले दिनों सपत्नीक खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर का भ्रमण किया। उन्होंने मां नर्मदा और बारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की तथा अहिल्या किला और महेश्वर साड़ी बुनाई केंद्र का अवलोकन किया। जिले में अमृत हरित महा अभियान के तहत नगर पालिका खरगोन ने शहर में लगभग 1500 पौधों का रोपण किया। अभियान के अंतर्गत औषधीय फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। महत्वाकांक्षी अभियान धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष के तहत जिले में लगभग 34,65,00,000 रुपए की लागत से छात्रावासों, अधीक्षक और आवासों तथा मरम्मत कार्यों सहित 29 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दस्तक अभियान शुरू किया गया है। 31 अगस्त तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए किसानों को 31 मई तक फसल बीमा कराने की अपील की गई है। योजना में कपास, सोयाबीन, मक्का, अरहर और मूंग की फसलें शामिल हैं। प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह ने जिले के कृषि क्षेत्रों का भ्रमण कर किसानों से संवाद किया। उन्होंने बढ़िया मिर्च की गुणवत्ता और निर्यात की संभावनाओं का भी अध्ययन किया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के दौरान लगातार जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन पुलिस द्वारा जिले के सभी 18 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज का विषय था खरगोन जिले की चिट्ठी। आलेख आशुतोष पुरोहित का था, वाचन था दीपा सिंह का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को शालिनी का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम में आप अब से लेकर 11 बजे तक हमें फोन कर सकते हैं और अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर नोट करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। हमारे वो श्रोता जिनका फोन पिछले कार्यक्रमों में लग चुका है, उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया 2 महीने बाद कॉल करें, और हम उन्हें बताना चाहेंगे कि बार बार उनका कॉल ले सकना हमारे लिए संभव नहीं हो सकेगा। और अब लेते हैं आज का पहला फोन कॉल। हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मैं कोलवार चौक रंत भवन जिला साजापुर मध्य प्रदेश से हसन खां बोल रहा हूँ साहब।
0: जी जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे हसन खां जी।
1: मैडम बड़ी खुशी जी, तो बड़ी खुशी है मैं साले जी। मैडम आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा सुना, हम आप हमारा पत्र भी शामिल करती हो।
0: जी जी जी।
1: और हमारे अच्छा लगता है आपका जो कार्यक्रम है। मैं हेमेश लाइट को सभी साथियों को अनुरोध करता हूँ कि आज मेरा पहला फोन लगा, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। और बारिश हो गई है तो इससे बड़ी किसानों को हमें बहुत फायदा मिल रहा है।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बारिश का हम सब इंतजार कर रहे थे, बहुत लंबी खींच हो गई थी और बारिश का होना बहुत जरूरी।
1: फसल हमारी लटकी हुई थी
0: जी,
1: तो फसल में अब जान आ गई है। कल से बारिश हो रही है, अब 30 तारीख तो सावन को महीनों लगे रही है। हमारा गाँव रंत भवन में आसपास के इलाका में जो बहुत सारी प्रगति का नियम को देखते हुए सब कानून कायदा में रहते हैं लोग
0: जी।
1: तो कोई अपने इबादत में करता है, कोई अपने भगवान की पूजा करता है, कोई मंदिरों को भरा जाता है, कोई क्या होता है। हमारे कोलवार चौक से गांव रंत भवन से 2 किलोमीटर दूर भैसापण महाराज का एक मंदिर होता है। उसमें लोग उसकी श्रद्धा और पूजा करते हैं और अपने अपने धर्म से लोग पूजा पाठ जो भी जिस धर्म से है वो अनुभव करते हैं। कोई बाहर भोजन करता है, कोई झूले में झूलता है, माँ बहनों तो बड़े प्रेमित प्रभावित होता हमारा गांव
0: जी।
1: और बहुत शिक्षित परिवार गांव का है हमारा रंत भवन।
0: अच्छा,
1: साजापुर जिले से 20 किलोमीटर दूर आता है।
0: अच्छा अच्छा, देखिए ऐसा ही ऐसे ही देश की ऐसी ही जगह की हम कल्पना करते हैं जहाँ सब मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं
1: जी। बहुत अच्छा लगता है गाँव मैडम हमारा। हाँ। साजापुर जिलो बहुत अच्छा जिलो है, किसानों को गांव है और सब समाज का लोग अच्छी प्रभावित रूप में शांत स्वभाव से रहते हैं। और हमारे गलियों में सारे हमारे एक साथी सुनना भी चाहते हैं कि मुकेश नारोलिया है, दीपक है, ईरोस भाई है और समस्त साथी गण नीचे सुन रिया हमारे कार्यक्रम को रेडिया पे। आपको कार्यक्रम मैडम बहुत अच्छा लगे, और जो भी मुकाम सिंह जी करे, ये कोई भी करे जो कार्यक्रम प्रस्तुत करे
0: जी, जी।
1: सभी अच्छा करे, प्रयास अच्छा लगे आपको
0: जी। धन्यवाद। और हसन का जी, आपकी मालवी भी बहुत अच्छी लग रही है, मीठी लग रही
1: है। हमारी है नी उम्र ही हुई है रेडियो सुनते सुनते
0: जी,
1: और कई प्रोग्राम में जाऊँ तो रेडियो साथ ही ले जाऊँ।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप संगीत का साथ रखते हैं। और आप खेती करते हैं?
1: जी जी बिल्कुल, खेती कर लिया मैडम।
0: अच्छा अच्छा, कितना क्या लगा रखा है आपने अभी अपने खेत में?
1: सोयाबीन चली रही है मैडम। अभी क्या है कि बाहर गांव में अभी क्या जंगल में जानवरों का बहुत प्रभावित हो रही हो हमारे तरफ।
0: अच्छा
1: हाँ, तो वो उससे कहीं कि आजकल जब भुट्टा वगैरह हिसाब कोई हो ही नहीं, अभी सोयाबीन ही हो रही है ज्यादातर।
0: अच्छा अच्छा,
1: चली रहा है। हाँ, सोयाबीन को प्रभाव ज्यादा ही है और किसान इससे प्रभावित भी हुए, उससे फायदा भी मिले। और वो चीज पहला फली बहुत होती थी मैडम हमारे गाँव में, पहला फली को बहुत ज्यादा प्रभाव होता था, मक्का ज्वार बाजरा वगैरह जो भी जो होता तो ना इस टाइम पे।
0: हाँ,
1: तो ये कि पानी को प्रभाव भी खेतों पानी खींचे जाए जमीन।
0: अच्छा, हाँ
1: तो बिल्कुल ऐसा है मैम साहब।
0: चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस साल अच्छी बारिश होगी और आप और हम मिलकर घटा छा रही है, ये गीत सुनते हैं। धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो एमएच हॉटलाइन।
3: हेलो हॉटलाइन,
2: हाँ जी,
3: अजय बात कर रहा सागर से।
2: अजय जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
3: फूल और कांटे का।
2: गीत के बोल?
3: धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना।
2: क्या बात है। अजय जी बताएं अपने बारे में, क्या करते हैं?
3: बस खेती किसानी का काम करते मैडम।
2: आपके इधर बारिश अच्छी है?
3: हाँ बारिश हो गई 2 दिन पहले।
2: अच्छा बोनी हो गई आपकी?
3: हाँ बोनी हो गई, अब दवाई डल रही मैडम, पानी गिर गया।
2: अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। अजय जी सुनिए आप भी और आपके साथियों के साथ फिल्म फूल और कांटे का ये गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
3: थैंक यू।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो एमएच हॉटलाइन।
3: हाँ दीदी नमस्कार।
2: नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: दीदी दुले सिंह यादव बोल रहा हूँ दीदी, ग्राम बापचा जिला आगरमालवा से।
2: जी दुले सिंह जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
3: दीदी गाना सुना है इंकलाब फिल्म का, अमिताभ बच्चन वाली का, वो बिच्छू लड़ गया वाला।
2: अच्छा अच्छा, ये गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। अपने गाँव के बारे में बताएं।
3: दीदी गांव बढ़िया, खेती किसानी बढ़िया है, और गांव में दीदी एक रामदेव बाबा का मंदिर है।
2: अच्छा,
3: बहुत अच्छा मंदिर है, दर्शनीय। यहाँ पे हर महीने भंडारे का आयोजन रखा जाता है दीदी।
2: जी जी जी, बढ़िया
3: तो
2: बढ़िया।
3: इसमें 1000-2000 पब्लिक हर महीने मतलब भोजन प्रसादी ग्रहण करके जाती है दीदी।
2: अच्छा,
3: मतलब महीने की जो दूज आती है नी अमावस्या की,
2: हाँ हाँ,
3: उस दिन भंडारा होता है। तो हमारा भी नंबर आ रहा है दीदी इस सावन की जो आएगी अभी दूज।
2: अच्छा,
3: अभी तारीख ठीक से मालूम नहीं है उसकी मेरे को।
2: अच्छा,
3: तो जितने भी श्रोता भाई सुन रहे हैं वो कोई आए तो भले आ सकते हैं हमारे गांव में।
2: अच्छा,
3: बहुत दूर दूर तक आते हैं, और पास में हमारे बुगला मुखी माता का मंदिर भी आ गया है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है दीदी, और 6 किलोमीटर दूर बैजनाथ वाले भोले बाबा की पावन नगरी है दीदी।
2: अच्छा अच्छा, नलखेड़ा के पास ही आपका गाँव?
3: नहीं, मेरा गाँव तो आगर से 10 किलोमीटर दूर है दीदी, लेकिन नलखेड़ा कोई ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 25 किलोमीटर है।
2: अच्छा, हाँ हाँ, चलिए बहुत तो अच्छी बात है। दर्शनों का आप लाभ ले रहे हैं, और अभी हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं, सुनिए अपने रेडियो सेट पर। धन्यवाद फोन करने के लिए।
3: धन्यवाद दीदी, थैंक यू, धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी। नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: जी? गोविंद बात कर रहा था मैम।
0: गोविंद जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मंदसौर जिले से।
0: बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मीरा का मोहन मूवी का सुना दीजिए, तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी।
0: जी मीरा का मोहन फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए अपने रेडियो सेट पर। धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो एमएच हॉटलाइन।
3: जी नमस्ते मैम, शालिनी जी।
2: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
3: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
2: अरविंद जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: जी श्रीनगर जिला महुआ उत्तर प्रदेश।
2: जी जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
3: जी फिल्म का नाम रहेगा 20 साल बाद।
2: 20 साल बाद और गीत के बोल?
3: हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग याद करेंगे।
2: जी जी महुआ के बारे में बताइए कुछ।
3: जी यहाँ का आला उदल बहुत लड़ाइया महुए वाले, बड़े लड़ाइया महुए वाले पिछले थे।
2: अच्छा अच्छा
3: जी
2: एक बार और गीत के बोल बताएं अरविंद जी।
3: हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
2: जी आला उदल वहाँ के महोबा के ही रहने वाले थे।
3: जी
2: अच्छा,
3: अभी सावन में कजलिया का मेला भरेगा यहाँ महोबा में तीरथ सागर पर।
2: अच्छा,
3: बड़ा फेमस मेला होता है।
2: अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है अरविंद जी, सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
3: आपको भी धन्यवाद फोन लेने के लिए।

0: हेलो, आई एम एच हॉटलाइन।
1: जी
0: हाँ जी,
1: नमस्ते
0: कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी।
0: नमस्कार।
1: जी मैं धुनीवाले दादी जी की नगरी और किशोर कुमार की नगरी से यूनुस मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ।
0: जी, मोहम्मद यूनुस जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गीत मुद्दत फिल्म का सुनना है मुझे,
0: मुद्दत फिल्म का कौन सा गीत?
1: ये वाला प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां,
0: क्या
1: ये
0: बात
1: वाला।
0: है, गाने का भी शौक रखते हैं आप।
1: जी हाँ, मैं तो सब रेडियो को, मैं तो सब मेरी 50 साल की जिंदगी, 60-65 साल में 50 साल रेडियो में गुजर गए।
0: क्या बात है।
1: और
0: और
1: अब रेडियो लॉकडाउन के बाद से जो रेडियो भी जितना भी फेमस चल रहा है
0: जी
1: वो हमारा
0: जी
1: आकाशवाणी इंदौर ही चल रहा है,
0: क्या बात है,
1: बहुत
0: धन्यवाद
1: बढ़िया
0: आपकी
1: चल रहा है।
0: तारीफ
1: मतलब
0: करने के लिए।
1: इतना इतना इतना मतलब कि मैं क्या, आप हर श्रोताओं से पूछोगे तो वो यही बताएंगे,
0: जी
1: अभी
0: जी
1: नंबर वन पे है ना। इससे पहले भी बहुत नंबर वन पे और भी थे दीगर प्रोग्राम, ऐसा नहीं है। हम तो 50 साल से हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: जी
1: हाँ बाकी ये अभी जो है ना आपका आकाशवाणी इंदौर टॉप पे
0: जी
1: चल रहा है मेरी नज़र में। बाकी आप देखो, सबकी पसंद अपनी अपनी,
0: सबकी
1: ख्याल अपना
0: पसंद
1: अपना
0: अपनी अपनी। बिल्कुल, आपने तारीफ की, आपका
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: और आपसे पहली बार बात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: जी।
1: और मेरा क्या है कि मौसम भी बहुत अच्छा है, अभी धुनीवाले दादाजी की तैयारी भी चल रही है यहाँ फिल्म में,
0: अच्छा
1: भंडारे भी लगेंगे, बहुत बढ़िया चलता है अभी है गुरु पूर्णिमा पे।
0: जी,
1: आप भी आइए जरूर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम ज़रूर आएंगे। और अभी
1: जी
0: आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए।
1: जी जी

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।
0: हाँ जी
1: चालिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद
0: जी। जी बताएं कैसा चल रहा है स्कूल?
1: बढ़िया चल रहा, जबरदस्त बारिश हो रही है।
0: जबरदस्त बारिश हो रही है आपके उधर?
1: जी बिल्कुल मैम। और बाहर के जो बच्चे आते 2-3 किलोमीटर दूर से, प्रशासन का निर्देश है कि बारिश ज्यादा हो तो उनको बुलाना नहीं है, तो वो आए नहीं है। जो हॉस्टल के बच्चे हैं केवल वही हैं, आए हैं आज।
0: अच्छा अच्छा, मतलब काफी बारिश है आपके उधर आज?
1: हाँ हाँ है ना, बारिश ज्यादा है।
0: अच्छा
1: यहाँ बार भी बारिश है और जहाँ धर्मपुरी में बारिश है मैम।
0: अच्छा, बारिश का काफी दिनों से इंतजार हो रहा था।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और सब चाह रहे थे कि
1: अब... और मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता तो किसान लोग आते रहते स्कूल में।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते तो वो भी परेशान रहते, अपनी परेशानी बारिश के लिए बताते रहते हैं कि पानी नहीं गिर रहा सर, क्या कर रहे हैं।
0: पानी नहीं गिर रहा तो बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे थे।
1: जी जी।
0: और इंदौर शहर में तो
1: आज
0: जी इंदौर शहर में तो इस साल पीने के पानी के लिए भी बहुत लोग परेशान हुए, तो बहुत जरूरी था कि बारिश हो जाए।
1: जरूर था, बहुत जरूरी था मैम। और हम तो क्या धर्मपुर रहते हैं नर्मदा तट पे,
0: अच्छा
1: तो दिक्कत नहीं रहती पानी की हमको तो उधर।
0: हाँ हाँ हाँ, नर्मदा जी तो देखिए हमारे यहाँ भी मेहरबान है और इंदौर वासियों को भी वही पानी पिलाती हैं।
1: बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही बात।
0: जी जी जी। तो आपका गीत
1: जी,
0: जी
1: सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपका पत्र में आपने सारे मेलों को पूरा पढ़ा, पहली बार ऐसा हुआ है।
0: जी धन्यवाद आपका
1: जी।
0: और अब बताएं हम आपको आज कौन सा गीत सुनवा रहे हैं?
1: तो जबरदस्त बारिश के इस मौसम में दो खिलाड़ी फिल्म का गीत सुना रफी साहब की आवाज में, झूमता सावन देखो आया बरखा ने प्यार बरसाया।
0: क्या बात है, चलिए आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद शालिनी जी।
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आज MH हॉटलाइन कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। कार्यक्रम को समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: अभी आप MH हॉटलाइन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुनें।

0: फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए। फिर पत्तों की पाजेब बजी, तुम याद आए। पहले तो मैं चीख कर रोया और फिर हंसने लगा। बादल गरजा, बिजली चमकी, तुम याद आए। श्रोताओं नमस्ते, मैं हूं नीतिका वर्मा। प्रस्तुत है आपके लिए फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने, और जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता के साथ। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्ते।
1: नमस्कार मैडम,
0: किससे बात कर रहे हैं हम, परिचय दे दीजिए।
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
0: जी लोकेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद मैडम।
0: उज्जैन में

0: बारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, कल थोड़ी हल्की बारिश हुई थी, बाकी मौसम तो अभी खुशनुमा बना हुआ है। बारिश का इंतजार कि बारिश आ जाए, क्योंकि बरखा रानी का तो सभी जगह इंतजार हो रहा है।
0: हाँ, और अब तो झमाझम बारिश होनी शुरू हो गई है कई जगह प्रदेश पर। आज पानी बरस ही रहा है और
1: हाँ जी जी बहुत जगह थोड़ी बारिश जो पहले हुई थी ना, पहले जो बोहनी के समय में होती है,
0: हाँ
1: उस समय तो सब पूरे प्रदेश में और पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में हुई है,
0: हाँ
1: पर अभी बीच में थोड़ा ये 15 दिन का अंतराल जो बहुत मुश्किल भरा निकला है मैडम।
0: ठीक है। ये तो खैर ऐसा है कि अब जब भी बारिश बरसेगी तो सुकून आपको मिलेगा। बहरहाल आप ये बताएं कि आज आपने फोन किया है, पहला फोन कॉल है आपका, और कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: हाँ तो फिर एक और चरस फिल्म का ये
0: जी
1: आजा तेरी याद आई, बस इस आपका ये गीत है।
0: जी जी जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर हम भेज रहे हैं।
1: जी
0: नमस्कार
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: मैडम।
0: नमस्कार।
2: दिल

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: जी निकिता जी, आपसे जब बात हुई थी, जब से आप कॉल लगाए मेरा
1: कौन बोल रही हैं आप?
0: कैसे हैं आप
1: जी हम बहुत अच्छे हैं। आप हसीना भी मंसूरी बोल रही हैं?
0: जी? हसीना भी मंसूरी बोल रही, फालदा नाका इंदौर से।
1: क्या सुनना पसंद करेंगे आज?
0: मैडम तेरी मेहरबानिया का गाना सुनना है, फिल्म का नाम है और गाने के बोल हैं। आंचल उड़ाया मैंने चली पुरवाई, काजल लगाया मैंने काली घटा छाई, जुल्फ लहराई तो रात हो जाएगी, जो नहीं होनी वो बात हो जाएगी। ये सुना दीजिए।

0: हेलो
1: जी
0: मैडम, नमस्ते। शैतान
1: नमस्ते
0: सिंह मीना बोल रहे हैं, राजस्थान से। थैंक
1: जी, बहुत स्वागत है आपका
0: यू मैडम। मैडम एक गाना सुनना है, फिल्म
1: जी। अपनी पसंद बताएं।
0: का नाम है राम लखन, और गाने के बोल हैं ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैडम जी, ऐसा कुछ गाना है जी। जी
1: जी जी
0: जी मैडम, यही वाला।
1: जी चलिए, 1 2 का 4, 4 2 का 1।
0: जी जी जी मैडम जी।
1: चलिए, आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है।

0: हाँ, मैं कटनी से सुनील गर्ग बोल रहा हूँ
1: जी। नमस्कार सुनील गर्ग जी, बहुत स्वागत है आपका।
0: आप कौन दीदी बोल रही?
1: मेरा नाम नीतिका वर्मा है।
0: अच्छा दीदी, आज हमने आपकी परछाई यहाँ पिक्चर का गाना सुनना रहा, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। जी, आपकी परछाइयाँ पिक्चर
1: जी
0: का।
1: आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी जी परिचय दीजिए आपका।
1: मैं सोनिया सोनी बोल रही हूँ।
0: जी क्या करती हैं सोनिया जी?
1: मैं घर पे रहती हूँ, काम करती हूँ।
0: अच्छा, और रेडियो सुनती हैं हमारा?
1: जी कभी कभी सुन लेते हैं, टाइम मिलता है तो घर के काम से।
0: जी, तो आज आपने फोन किया है, आपकी पसंद का गीत कौन सा है?
1: हम तुम्हारे हैं सनम का टाइटल ट्रैक। जी मैम, आप कौन बोल रही हैं?
0: जी, मैं नीतिका वर्मा बोल रही हूँ।
1: ओके okay।
0: चलिए, आपके पसंद का ये गीत हम रेडियो पर भेज रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया है। नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: जी नमस्ते
1: जी नमस्ते जी, मैं तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास तिवारी ले बोल रहा हूँ।
0: जी देवीदास जी बहुत स्वागत है जी, बताएं आज फोन किया है, आपकी पसंद का गीत कौन सा है?
1: पसंद गीत तो बताऊंगा मैं, जब आज चंदवा में बरसात हो रही है
0: जी,
1: तो आज फिल्म का नाम है हेलो, इसका बता रहा हूँ मैं आपको, फिल्म का नाम माशुक
0: जी, माशुक का
1: ओ यारा जिन्होंने भेजी है जिदाई
0: जी, ये गीत आपका रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, आपकी पसंद
1: जी, थैंक यू
0: जी, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: जी नमस्कार।
0: हाँ दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते
0: हम भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज बासोदा से। हाँ
1: जी
0: दीदी, और मौसम कैसा है भोपाल में अभी?
1: जी बारिश हो रही है आज तो।
0: हाँ इधर तो बासोदे में भी पानी गिर रहा है।
1: चलिए अच्छा है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अभी
0: नजदीक है सावन तो नजदीक है।
1: हाँ मानसून आ गया, ये बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मानसून तो जरूरी है, पानी गिर ही नहीं रहा था।
1: हाँ, फसलें खराब हो जाती हैं हमारी
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
1: जी। तो आज
0: और दीदी
1: जी
0: आज कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, फोन करेंगे
1: फोन
0: क्या?
1: करेंगे
0: है
1: गीत सुने हैं
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी, बताएं अपनी पसंद का गीत
0: दीदी हमें सुनवा देना बॉर्डर फिल्म का,
1: कौन सा।
0: बहुत संदेशे आते हैं, चिट्ठी आती है।
1: जी, संदेश आते हैं।
0: बिल्कुल, हमें क्या है, चिट्ठी लिखने का बड़ा शौक है, इसलिए हम फौजी वानियों के लिए ये
1: हाँ
0: गीत सुनाना चाहते हैं, जो हमारे जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए, उन नौजवानों के लिए
1: जी, बहुत धन्यवाद आपने।
0: जो अपने भी घर नहीं पहुंच पाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके
1: हाँ
0: लिए चिट्ठी के माध्यम से।
1: जी बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत हम भेज रहे हैं।

0: एमपी मध्य प्रदेश भोपाल।
1: जी। तो आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: जी, आज मैंने फिल्म का नाम बंजारन।
1: बंजारन फिल्म, बोल बता दीजिए गीत के।
0: ये जीवन जितनी बार मिले।

0: तो श्रोताओ, आज के मौसम के बदलते मिजाज पर मेरा कुछ यूं कहना है कि तब्दीली जब भी आती है मौसम की आधाओं में, किसी का यूं ही बदल जाना बहुत याद आता है। तो ये था आज का फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। अब कार्यक्रम से अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बीरोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवड़ का कर्नाटक के कारवार में जल अवतरण करेगी। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वर्ष 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान बेहतर शिक्षा, आधुनिक स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के नए अवसरों के साथ युवा सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जाएगा। सरकार ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें उन्हें दिल्ली हमलों के मद्देनजर मुस्लिम सैन्यकर्मियों से 20,000 इस्तीफे मिलने का दावा करते हुए दिखाया गया है। सरकार के अनुसार ये वीडियो AI द्वारा निर्मित डीप फेक है। मौसम विभाग ने आज गुना, श्योपुर, सतना, सिवनी, बालाघाट, राजगढ़ और बैतूल समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का सामना उन्नति हुड्डा से होगा। प्रतियोगिता के अन्य वर्गों में भी आज भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आप सभी की फरमाइश लिखने वाले हैं देवरी भाटरपारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर महाराष्ट्र से अभिजीत, श्रीमती सरिता, सिद्धांत, प्रिंस एकांश, नागपुर से शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित, कुमारी ध्वनि, बंडा बेली से लक्षणपुर रामजी और इनके परिवार के सदस्य, लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है विवाह फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

महादेव घाट व अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन, मिथलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश, बाटरपारा से द्वारिका प्रसाद, किशोर, दीपक और जाविंद्र वर्मा, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। आप सभी ने सुनना चाहा है आशिकी फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने। गीत समीर का है, तस बनाई नदीम श्रवण ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके परिवार के सदस्य। इंदौर से लाल फतेह चिंदानी, लीला फतेह, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी ने सुनना चाहा है तलाश फिल्म का नगमा मोहम्मद लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और तस बनाई एस डी बर्मन ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं तलाश फिल्म का ये नगमा।

अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब, मुस्तबा, रऊफ भाई और शाहिद। अकोला से रमेश और वैशाली। आप सभी ने सुनना चाहा है आशिक फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। गीतकार हैं समीर। तो आइए आप सभी की पसंद पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

औरंगाबाद से राजेश सांबले, शीतल राशि और राजदीप, अनिल साबी, पूजा, सुषमा, श्वेता और इनके परिवार के सभी सदस्य, इन्होंने ये ख़त हमें भेजा इंदौर से। आप सभी ने सुनना चाहा है मीरा का मोहन फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर ने। गीत इंदिवर का है, तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पे ये नगमा।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
8: क्या?
7: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
8: वो कैसे?
7: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
8: पर सुनेंगे कैसे?
7: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
9: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
10: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
9: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
11: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
12: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
11: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
13: आकाशवाणी इंदौर।
12: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कामिनी काय कांतारे का सातवां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का सातवां भाग।

अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महालय छोड़कर चले जाते हैं। मार्ग में वृक वन में एक अपरिचित उनके प्राणों की रक्षा करता है। उनके प्रिय अश्व नीलमणि को लेकर वो आचार्य नागदत्त के आश्रम में बांध देता है। अश्व नीलमणि ठीक हो जाता है। आचार्य नागदत्त नीलमणि को अवंती भेजने की व्यवस्था करते हैं। अब आगे।

0: राजा भर्तहरि का प्रिय अश्व नीलमणि अवंती आ जाता है। उसे आचार्य नागदत्त के आश्रम से चंद्रसेन लेकर आते हैं। चंद्रसेन को रानी पिंगला बुलाती है। चंद्रसेन महल के अतिथि गृह में बैठे हैं। रानी की सेविका वैसिका कहती है,
1: आपने तो मधुरव्य का स्पर्श भी नहीं किया ब्रह्मचारी।
2: देवी, आप वय में मुझसे बड़ी हैं, अतः आप नाम से पुकारें तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे चंद्रसेन कहते हैं।
1: इस भांति मैं भी देवी नहीं हूँ, मेरा संबोधन है वैसिका।
2: किंतु मैं आपका नाम नहीं लूंगा, दीदी कहूं तब क्या अधिक ठीक नहीं होगा? इस महानगर में मेरा कोई परिचित मित्र नहीं है। गोप आश्रम से मेरे साथ आया है, दो दिन के साथ में मैं उसे समझ ही नहीं पाया। वो भी स्यात उतना ही मेरे प्रति अजनबी है। वो बाहर झांकना भी नहीं चाहता। अपने भोजन शयन सुविधा से निकलकर उसके लिए केवल अपना परिवार है।
1: सांसारिक व्यक्ति है, अपनी सीमाओं में जीता हुआ। अब तुम मुझे दीदी कहो या बहन, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु क्या तुम दासी और अनुचरी को बहन के रूप में स्वीकार कर पाओगे?
2: क्यों नहीं, मैं भी तो सेवक हूँ।
1: अंतर है ब्रह्मचारी, तुमने स्वयं सेवा का व्रत चुना है और मैं क्रय की गई सेविका हूँ, दासी, स्वामी के आदेशों से बाध्य।
2: तो आप मेरी दीदी बनना नहीं चाहती?
1: ऐसा तो मैंने नहीं कहा चंद्रसेन, पहले मुंह तो झूठा करो।
2: आपकी जिव्या से अपना नाम सुनकर मुझे सुख मिला। बहुत स्वादिष्ट है ये मधुरव्य, किंतु व्रती को सांसारिक सुख से बचना चाहिए, संयम बाधित होता है, सुख का परितोष क्रमशः व्यसन में बदल जाता है। पाने की इच्छा बलवती होती जाती है और न पाना दुख बन जाता है। पाने के लोभ में विचलन और उसके बाद अकरणीय का रूप ले लेती चेष्टाएं, ये पाप कर्म की प्रवृत्ति है दीदी।
1: बहुत ज्ञान की बातें करते हो चंद्रसेन।
2: नहीं दीदी, ज्ञान तो शास्त्रों में है, जहां उद्विग्नता क्लेश विकार से मुक्त होकर ही कुछ सीखा और समझा जा सकता है। ये तो मेरा अनुभव है। लीजिए, आपकी आज्ञानुसार मैंने जलपान कर लिया, अब आप मेरी एक याचना स्वीकार करेंगी?
1: भाई की बात तो माननी ही पड़ेगी। यदि असाध्य ना हो, संभव हो, करनीय हो।
2: कोई बड़ी बात नहीं है दीदी, मुझे महामात्य ने 5 स्वर्ण और 5 रजत मुद्राएं दी हैं। मेरे लिए उनकी कोई उपादेयता नहीं है। एक मुद्रा मैं गोप को देने वाला हूं, परिवार के लिए कुछ क्रय कर लेगा। शेष 4 स्वर्ण मुद्राएं आप रख लीजिए। लीजिए, मेरे किसी भी काम की नहीं है।
1: किंतु इन्हें मेरे पास क्यों रख रहे हो?
2: इसलिए कि आप मेरी दीदी हैं, आपके सिवा मेरा यहाँ कौन है।
1: अच्छा, रख लूंगी।
2: ये लीजिए।
1: तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है चंद्रसेन?
2: परिवार बहुत विशाल है मेरा परिवार दीदी। 20 कुष्ठरोगी, अनेक अशक्त, वृद्ध, बावरे और अनेक मूक जैसे सेवक, परिचारक, सेवाश्रम के कार्यकर्ता, आचार्य नागदत्त से मुझ तक लगभग 100 से अधिक सदस्य हैं मेरे परिवार में दीदी।
1: हो, 100 तो है, किंतु मैं तुम्हारे माता पिता के संबंध में पूछ रही थी। सेवाश्रम में कहां से पहुंचे हो?
2: आया तो गोपांचल से हूं, ब्राह्मण के घर में जन्मा था। बाल्यकाल में मां नहीं रही, उसकी धुंधली सी स्मृति है। और रहने दीजिए, किसी अन्य अवसर पर सब कुछ सुनाऊंगा।
1: ठीक है, ये मुद्राएं मेरे पास तुम्हारी धरोहर रहेंगी, जब चाहो ले लेना।
2: ठीक है दीदी।
1: कभी भी आ सकते हो, द्वार पर मेरा नाम लोगे तो प्रवेश मिल जाएगा।
2: बहुत अच्छा,
1: नाम स्मरण है ना मेरा, वैसिका दासी।
2: आपका नाम और छवि तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता दीदी, आपको देखते ही मुझे आश्रम के भेषज्ञ त्रिलोचन का स्मरण हो आया। आप दोनों की छवि में अद्भुत साम्य है।
1: त्रिलोचन, कौन है ये त्रिलोचन?
2: सेवाश्रम के भेषज्ञ हैं। मुझ पर उनका असीम स्नेह है, बिल्कुल लघु भ्राता मानते हैं मुझे।

0: त्रिलोचन, वह क्या होगी उनकी? कहां से आए हैं?
1: दीदी, आश्रम में किसी का कुल, ग्राम, गोत्र तथा देश जानने की प्रथा नहीं है। कोई स्वयं बता दे तो अलग बात है। वहां केवल दो ही भाव हैं, पीड़ा और सेवा। आश्रम वासियों को जोड़ने के लिए यही पर्याप्त है। हाँ, भेषज्ञ त्रिलोचन की वय मेरे अनुमान से वो मुझसे 5-7 वर्ष वरिष्ठ होंगे।
0: क्या तुम्हारे भेषज्ञ का वर्ण गंदूषी है?
1: हाँ, मुझसे कुछ उजला है।
0: क्या उनके बाएं कपोल पर क्षत का कोई चिन्ह है?
1: वो तो मुझे ज्ञात नहीं।
0: चंद्र,
1: दीदी,
0: एक काम करना, आश्रम के भेषज्ञ से उनका देशाकुल पूछना।
1: अच्छा दे।
0: यदि वो दक्षिणत्य कालाधर से हो तो किसी भांति उनके कपोल पर घाव की रेखा का चिन्ह देखने का प्रयत्न करना। यदि ये 3 संयोग मिल जाएं, तो उनसे पूछना कि क्या उन्होंने गोदावरी की जल यात्रा की है। त्रिलोचन की आंखों में कहीं अश्रु दिखाई दे तो तुरंत मुझे सूचना देना।
1: ये क्या दीदी, पहले मुझे रुलाई आई और अब तुम रोने लगी?
0: रो नहीं रही हूँ चंद्रसेन, अपनी आंखें धो रही हूँ कि कहीं कोई आशा की किरण दिखे तो उसे चीन तो सकूं। अच्छा, अब जाओ, उज्जैनी में दर्शन और भ्रमण करो। ये नगरी बड़ी मोहक है। और हाँ, लौटने से पहले भेंट करके जाना।
1: जो आज्ञा दीदी। प्रणाम दीदी।
0: प्रणाम।

0: वैसिका से भेंट करके चंद्रसेन नगर भ्रमण को निकल पड़ते हैं। रथ चालक उनसे कहता है कि महास्पद के बिना वो इन्हें रथ से नगर भ्रमण के लिए नहीं ले जा सकता है। नगर में उन्हें पहरुआ रोकता है।
1: रुको!
2: अरे
1: हाँ हाँ, तुम सही कह रहा हूं। कौन हो तुम? कहां से आ रहे हो? यहां भीतर कैसे पहुंचे?
2: अरे भाई, हम महामात के अतिथि हैं।
1: तुम राजकीय अतिथिशाला में ठहरे हो?
2: हाँ, हम महाराज का अश्व लेकर आए हैं।
1: उसे जानते हैं?
2: अरे वो तो गोप है, मेरा सही यात्री।
3: बचाइए बचाइए बचाइए ब्रह्मचारी जी।
2: हाँ।
3: मुझे बचाए, इन लोगों ने मुझे निरुद्ध कर रखा है।
2: अरे
3: हम भांति भांति के प्रश्न करते हैं।
1: क्यों, ये तुम्हारे साथ है ये व्यक्ति?
2: हाँ भाई, हाँ आश्रम से भी साथ है। आओ गोप, आ जाओ।
3: हाँ हाँ हाँ,
1: ठीक है ठीक है। कहाँ जाना है?
2: नगर भ्रमण करना है, लेकिन सर्वप्रथम महाकाल के दर्शन करेंगे। अवंती के सनातन शासक तो वही हैं, शेष तो आते जाते रहते हैं। भूलो के चा महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते।
1: किंतु आपने राजकीय वाहन नहीं लिया?
2: आवश्यकता नहीं है, पैदल चलने का स्वाभाविक अभ्यास है।
1: जी जी, जाइए जाइए जाइए।
2: गोप चलो, तुम यहाँ कैसे आ गए?
3: ब्रह्मचारी जी,
2: हाँ
3: मैं एकाकीपन से ऊब रहा था, सोचा राजमहल ही देख लूं, अब यहाँ आने का अवसर कहाँ मिल पाता।
2: हाँ हाँ।
3: किंतु रक्षकों ने रोक लिया, राजमहल देख नहीं पाया।
2: वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, चिंता मत करो। मुझे अपना भाई स्वीकार किया है उन्होंने।
3: किसने? महारानी ने?
2: नहीं बंधु, प्रीति और विरोध समान से होना चाहिए। वहां महारानी की एक सेविका है।
3: अच्छा?
2: स्नेहशील और मितभाषी, उनकी छवि हमारे भेषज्ञ त्रिलोचन से बहुत साम्य रखती है। उन्होंने मुझे अपना भाई स्वीकार किया है, अब हम किसी भी समय महालय में आ जा सकते हैं।
3: हाँ।
2: किस ओर से महाकाल के लिए चलना है?
3: देव मंदिर की दूरी तो इधर से कम पड़ेगी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इधर से चलते हैं।
3: हाँ चलिए।

0: महाकाल की श्रद्धा के आकर्षण से आवश्ट वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तथा स्वतः प्रकाशित दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर अभिभूषित हो जाते हैं। बाहर निकलते हुए चंद्रसेन कहता है,
1: देख रहे हो बंधु गो, कैसा अनिर्वचनीय आनंद है भगवान शिव के सानिध्य में। जैसे काल और जगत की गति ही ठहर गई हो, न उत्पत्ति है और न विनाश, केवल शांति ही शांति, चिरंतन शांति, अनुभवातीत शांति। ओम नमः शिवाय।
2: अब वो तो है, किंतु आप तो जैन है ब्रह्मचारी।
1: जैन हूं नहीं, होना चाहता हूं। वैसे आसान नहीं है जैन होना, वो एक चर्या है, विचार है, व्रत है। सो मैं एक व्रती मात्र होना चाहता हूं। महाकाल से आशीष चाहा था मैंने कि मेरा व्रत सफल हो, किंतु उनके सामने कुछ भी स्मरण नहीं रहा, स्तुति के श्लोक तक विस्मृत हो गए। महाकाल का प्रभाव, सम्मोहन, जैसे माया संपन्न हो गई हो।
2: ब्रह्मचारी जी, धूप तो तीखी होने लग गई है।
1: हाँ सो तो है, कहीं विश्राम करें क्या?
2: हाँ ऐसा कीजिए, आप उन वृक्षों की छाव में ठहरें।
1: अच्छा अच्छा,
2: मैं तो अपने एक परिचित वणिक के यहाँ जाता हूँ।
1: हाँ ठीक है। गोप, यहाँ से अतिथिशाला कितनी दूर है?
3: लगभग आधा कोस। यदि मुझे लौटने में देर हो जाए तो प्रतीक्षा न करें ब्रह्मचारी।
1: हाँ हाँ,
3: देखिए हाँ। आगे चौक से मुड़कर आप वहां पहुंच जाइए।
1: ठीक है,
3: मैं वहीं आ जाऊंगा।
1: अच्छा,
3: जाता हूँ।
1: ठीक है, जाओ जाओ।

0: राजमहल के द्वार पर चहल पहल हो रही है। सभी चिंतित हो रहे हैं कि चंद्रसेन और गोप कहां गए हैं। चंद्रसेन को देखकर कुमारास्पद पूछते हैं कि आप कहां हो? आपके लिए रथ और शिविका की व्यवस्था तो थी। इसका चंद्रसेन उत्तर देते हैं,
1: आप नहीं थे व्यवस्था के सूत्रधार। यह समझकर मैंने अपना निर्णय स्वयं ले लिया। अब हम यहां नहीं रहेंगे। देवी वसुंधरा तक आर्य नागदत्त का पत्र पहुंचाना है, तो किसी से पूछकर उन तक पहुंच जाएंगे। जाने से पहले वैसिका दीदी से विदा लेना है। आप हमारी चिंता छोड़िए। हमारे कारण आपको जो असुविधा हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें बंधु।
0: कुमारास्पद से विदा लेकर चंद्रसेन महालय की ओर प्रस्थान करते हैं।
2: किधर जा रहे हो ब्रह्मचारी?
1: हम
2: कौन हो तुम? यह राजपथ है।

0: महालय का मार्ग।
1: हमें वहीं तो जाना है विदा लेने।
0: किससे विदा लोगे?
1: देवी व्यासिका से।
0: ठहरो, तुम संदेह जागृत कर रहे हो।
1: भाई, ब्रह्मचारी के पास छुपाने के लिए क्या है?
0: ओह, क्षमा करें ब्रह्मचारी, आप ही हैं जिन्हें देवी व्यासिका ने अभात आने की अनुमति दे रखी है।
1: हाँ भाई।
0: आइए ब्रह्मचारी जी।

0: देवी वयस्का तक सूचना पहुंचा दी गई है। हाँ। उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा है।
1: अच्छा अच्छा,
0: आप विराजिए। हाँ।
2: प्रणाम दीदी।
3: जीते रहो चंद्र। कहो क्या बात है, तुम तो दो दिन बाद लौटने वाले थे, मन नहीं लग रहा तुम्हारा इस वैभव की नगरी में?
2: नहीं दीदी, दृश्य के नेपथ्य में कुछ ऐसा है जिसे समझ नहीं पा रहा हूँ और आत्म प्रवंचना स्वीकार नहीं। महामात्य की अधीरता, महादेवी का विषाद और आर्य त्रिलोचन के संबंध में आपकी व्यग्रता, कुछ तो है जो अबूझ है। दीदी, महाराज की अनुपस्थिति एक बड़ा प्रश्न है, अवंती का रहस्य। महाकाल के दर्शन कर लिए और सोचता हूं कि कल प्रातः लौट जाऊंगा। प्रश्न तो यह भी है कि भेषक त्रिलोचन और आपकी मुखाकृति में इतना साम्य क्यों है?
3: चंद्र, तुम थोड़ा सा उपहार ग्रहण करो, मुझे भी देवी वसुंधरा के पास औषधि लेने जाना है, मेरे साथ ही चलना।
2: आप देवी वसुंधरा से परिचित हैं दीदी?
3: मैं प्रायः उन सभी को जानती हूँ जिनसे महादेवी की भेंट होती है। क्यों?
2: सुंदर और सुशील तो होंगी।
3: होंगी क्या, निसंदेह हैं, किंतु तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो?
2: आर्य नागदत्त उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखते? देवी वसुंधरा उनके साथ हो तो उनकी चिंता कुछ हल्की हो जाएगी।
3: संसार भर की चिंताएं तो तुम्हें हैं चंद्रसेन। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ।

0: देवी वयसिका रथ द्वार पर प्रस्तुत है।
1: अच्छा अच्छा
2: चंद्रसेन चलें।
1: चलिए दीदी, किंतु देवी मैं व्रती हूं, जीव पर आरूण होना कल भूल हो गई थी, व्रत भंग का फल भी मुझे मिल गया।
2: तुम राजा के अतिथि हो, राज्य की मर्यादा तोड़ोगे? व्रत उपवास आदि आश्रम में एकांत के आचरण है, ये राजधानी है चंद्रसेन, चलो रथ पर बैठो।
1: अच्छा दीदी।
2: चलो सारथी, देवी वसुंधरा के आवास पर। लो आ गए हम चंद्रसेन, अब उतरो।
1: अरे
2: महामाते तो यहाँ पहले से ही हैं, उनका रथ दिख रहा है। हाँ।

0: अनुचरी आकर वैशिका को अतिथि कक्ष में बैठा देती है। महामात्य और देवी वसुंधरा वहां पर आसन ग्रहण किए हुए हैं। देवी वसुंधरा कहती हैं,
1: आओ आओ वैशिका, बैठो।
2: मैं ठीक हूं देवी, महादेवी ने मुझे औषधि लाने के लिए भेजा है। मेरे साथ सेवाश्रम के ब्रह्मचारी चंद्रसेन आए हैं। आपके लिए उनके पास एक पत्र है, वे बाहर बैठे हैं।
1: ठीक है वैशिका।
3: वो ब्रह्मचारी तो राजकीय अतिथि गृह में ठहरा है ना?
2: उसने वो आवास छोड़ दिया है देव, अब आश्रम लौटना चाहता है।

0: रिश्ता होगी देव।
1: वैसे का
0: जी,
1: तुमसे कुछ कहने की इच्छा है। सोचता हूँ और फिर रह जाता हूँ। संकोच भी है और भय भी।
0: उज्जैनी के महामाते को भय? सहज विश्वास नहीं होता देव।
1: वैसे का कभी कभी पद की प्रभुता भी भय का कारण होती है। ये 10 वर्षों से तुमसे कहना चाहता हूं, किंतु आज तक कह नहीं पाया। वैसे का
0: आज कह दें।
1: नरेश नगर में होते ना तो कदाचित कह डालता। उत्कटता से उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रयास करूंगा कि 10 वर्षों का भार उनके समक्ष ही उतार दूं।
0: कह देने से यदि भार उतरता हो तो निश्चिंत होकर मेरे सामने कह डालिए देव। वचन देती हूँ कि मैं किसी पर प्रकट नहीं करूंगी। प्रीत दासी इससे अधिक क्या विश्वास दिला सकती है?
1: तो सुनो वैसिका, चाहो तो हंस लेना। समझ लो कि मैं मां बात नहीं हूं। मैं तुम्हारे प्रति अनुरक्त हूं। क्या तुम्हें स्वीकार है वैसिका?
0: एक बात कहूं महामाते?
1: हाँ, कहो।
0: आपकी साहसहीनता ने 10 वर्ष यूं ही गवा दिए। आप समर्थ हैं, वैसे भी मुझे अपनी सेवा में ले सकते हैं।
1: महादेवी को स्वीकार होगा?
0: मैं बना लूंगी।
1: तुम वैसे का तुम

महामात्य लौटकर सीधे अपनी पीठिका पर जाकर बैठ जाते हैं। तीव्रतर हुई सांसों पर नियंत्रण पाते हुए मस्तक पर आया पसीना पहुंचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे भूकंप आ गया है, जिसमें ये भवन, ये दीवारें भर भरा कर गिर रही हैं।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का सातवां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार पद्म भंडारी, वैसिका प्रमिला दिवाकर, चंद्रसेन बद्रवास्ती, पहरुआ कमलेश जैमिनी, गोप विवेक सावरिकर मृदुल, वसुंधरा ज्योति केने, महामात्य अरशद इकबाल, संयोजक राकेश ढोंडियाल, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महालय से पैठार गांव आ जाते हैं। वो पैठार छोड़कर जाना चाहते हैं, परंतु कुछ विपरीत परिस्थितियां उन्हें रोक लेती हैं। वे विपरीत परिस्थितियां क्या हैं? ये हम जानेंगे अगले भाग में।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर अपनी चर्चा की पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वर्ष 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान बेहतर शिक्षा, आधुनिक स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के नए अवसरों के साथ युवा सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जाएगा। मौसम विभाग ने आज गुना, श्योपुर, सतना, सिवनी, बालाघाट, राजगढ़ और बैतूल समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर के कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। श्राइन बोर्ड ने कटरा में फंसे तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क लंगर सहित व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला महिला सिंगल्स के 32वें राउंड में अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का सामना 32वें राउंड में जापान के युशी तनाका से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी सखियों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी सखी निरंजना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज की तेज रफ्तार दुनिया में डिजिटल साक्षरता समय की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार और सरकारी सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल हो चुका है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस युग में बैंकिंग, शिक्षा और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए डिजिटल साक्षरता उतनी ही जरूरी है जितना कि सामान्य रूप से पढ़ना लिखना। अगर हमें डिजिटल रूप से सब काम करना आते हैं तो हम धोखाधड़ी से बच सकते हैं और UPI और नेट बैंकिंग के माध्यम से सुरक्षित लेनदेन कर सकते हैं। गाँव में रहने वाली महिलाएँ प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे माध्यमों से डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं। बदलते कार्यक्षेत्र में तकनीकी ज्ञान होने से नौकरी की भी अच्छी संभावनाएं बनती हैं। ईमेल भेजना, ऑनलाइन मीटिंग करना, डिजिटल माध्यमों से जुड़ना, अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखना, साइबर धोखाधड़ी से बचना, अपनी व्यक्तिगत जानकारी को निजी रखना आदि काम हम सरलता से कर सकते हैं। सखियों, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे भी डिजिटल माहौल में पल बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि कोडिंग और सोशल मीडिया जैसे विषय अब बच्चों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। विद्यालय में शिक्षक भी डिजिटल साक्षरता पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आज हर स्टूडेंट किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर निर्भर है। इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित, विश्वसनीय और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता उनकी शिक्षा और भविष्य के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सखियों, हम महिलाएं अपनी कला और हुनर को

घर बैठे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर और अधिक निखार सकती हैं और अपने हुनर से परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग भी कर सकती हैं। तो सखियों, आप आज से ही अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पहचानें और उसको डिजिटल माध्यम से एक नई पहचान दें।

0: सखियों, हम समय समय पर आपके लिए कहानी और वार्ताएं लेकर आते हैं। आज उसी कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं ये वार्ता, नशा नहीं नई दिशा चुने, नशा मुक्त भारत अभियान। इसकी वार्ताकार हैं शालिनी कुलश्रेष्ठ।
1: बहनों, मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, जो न केवल एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के भविष्य का प्रश्न है। आज हमारी चर्चा का विषय है नशा नहीं नई दिशा चुनो। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं, और यदि नागरिक किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसके युवा होते हैं। यदि युवा स्वस्थ शिक्षित और जागरूक होंगे तो देश निश्चित रूप से प्रगति करेगा, लेकिन यदि युवा नशे के गिरफ्त में आ जाए तो परिवार टूटते हैं, समाज भी कमजोर होता है और राष्ट्र का विकास प्रभावित होता है। सबसे पहले प्रश्न आता है कि नशा क्या है। नशा वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति किसी ऐसे पदार्थ का बार बार सेवन करता है जो उसके शरीर और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है। शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ई सिगरेट, अफीम, चरस, गांजा, स्मैक तथा अन्य मादक पदार्थ नशे की ही श्रेणी में आते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि लोग नशा क्यों करते हैं। इसके भी कई कारण हैं। कुछ लोग गलत संगति में आके नशा करने लग जाते हैं, कुछ लोग दोस्तों के दबाव में भी आकर नशा करने लग जाते हैं, तनाव और अवसाद की स्थिति में भी नशा करते हैं, दिखावा और फैशन के पीछे भागते हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं उनके लिए भी वो लोग नशा करने लग जाते हैं, बेरोजगारी, फिल्मों और सोशल मीडिया का प्रभाव और जिज्ञासा, ये इतनी सारी समस्याएं और कारण हैं जिसके कारण लोग नशा करने लग जाते हैं, जो धीरे धीरे आदत बन जाती है। नशा व्यक्ति के शरीर, मन, परिवार और समाज सभी को नुकसान पहुंचाता है। शारीरिक तौर पर भी इसका सबसे बुरा असर पड़ता है, जैसे हृदय, फेफड़े और लीवर यानी यकृत की गंभीर बीमारियों का होना, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आना, समय से पहले बुढ़ापा और मृत्यु का भी जोखिम बना रहता है। नशे का प्रभाव हमारे शारीरिक तौर पर ही नहीं मानसिक रूप से भी हमें प्रभावित करता है। तनाव और चिंता का अवसाद, याददाश्त का कमजोर होना, निर्णय लेने की क्षमता का कम होना, चिड़चिड़ापन और हिंसक व्यवहार, ये व्यक्ति तभी करता है जब वो एक नशे का आदी हो जाता है। अगर हम इसके सामाजिक प्रभाव की भी बात करें तो नशे के कारण परिवार में कलह बना रहता है, घरेलू हिंसा होती है, बच्चों में भी आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं, अवरोधों में भी वृद्धि होती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करने लग जाता है तो उसको इतना नहीं ज्ञान होता और जिससे वो सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बनता है। शिक्षा और रोजगार पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। नशे का आदि व्यक्ति अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा नशे पर खर्च कर देता है। धीरे धीरे परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और पूरे परिवार का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। आज भारत विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है। आज समाज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से नशा एक बन चुका है। अब हमें यह समझना होगा कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है। चाहे आपके साथ कितनी भी समस्याएं हों, लेकिन नशा करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जीवन में तनाव भी होते हैं, असफलताएं भी मिलती हैं, अकेलेपन से भी लड़ना होता है, लेकिन इन सब से बचने के लिए नशा नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच, परिवार का सहयोग और अच्छे मित्रों का साथ आवश्यक। अब हमारे सामने यह भी प्रश्न आता है कि नई दिशा क्या हो सकती है। नई दिशा का अर्थ है जैसे शिक्षा को अपनाना। अगर सभी लोग शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति नशे की तरफ अग्रसर नहीं होगा। खेल और योग से जुड़ना,

0: संगीत, कला और साहित्य जैसी रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में योगदान देना, समाज सेवा यानी लोगों की सहायता करना, लोगों के लिए खाने देना, अपने लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना। हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए जिसे उसे पूरा करने में उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए, जिससे उसका ध्यान कभी भटकने ना पाए और वो नशे की तरफ अग्रसर ना हो। यदि हर युवा अपने जीवन का उद्देश्य तय कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो नशे की तरफ जाए भी और सोचे। उसके जीवन में नशे का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। समाज की भूमिका भी नशे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों के अच्छे मित्र बने, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। घर का वातावरण अच्छा होता है और माता पिता में आपस में संबंध अच्छे होते हैं तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। विद्यालयों में समय समय पर जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। हमारी सरकार नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे काम कर रही है, जैसे जन जागरूकता अभियान। सरकार समय समय पर नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलाती है कि हम नशा करने से कितना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, जिनमें स्कूल, कॉलेज, गांव और शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र संचालित किए जाते हैं जहां लोगों का उपचार और परामर्श दिए जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा नशा करते हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र में भी थोड़े दिन रखकर उनका उपचार किया जाता है और उन्हें उससे मुक्त कराया जाता है। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, बिक्री और सेवन पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाए जाते हैं। शिक्षा और परामर्श के क्षेत्र में भी विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाती है, क्योंकि आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे भी नशा करने लग जाते हैं। लेकिन विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी जाती है तथा सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। हेल्पलाइन और परामर्श सेवाएं दी जाती हैं। जरूरतमंद लोगों और उनके परिवारों को सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए परामर्श सेवाएं, हेल्पलाइन संचालित की जाती है। सामुदायिक भागीदारी भी हमारी सरकार करती है, जैसे सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर नशा मुक्त अभियान चलाती है। आइए हम सभी आज यह संकल्प लें कि मैं स्वयं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा या करूंगी, किसी को नशा करने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा या करूंगी। मैं अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को नशा मुक्त बनाने में सक्रिय योगदान दूंगी। इसके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर कविता रखी है। नशा नहीं नई दिशा चुनो, जीवन को खुशियों से तुम बुनो, स्वस्थ तन हो, निर्मल मन हो, हर चेहरे पर मधुर सधन हो, नशा छीन ले हंसी और सपने, तोड़ दे जी अपनों से अपने, क्षण भर का यह मीठा सुख दे जाता जीवन भर का दुख, आओ मिलकर ले यह ठान, नशा मुक्त हो अपना हिंदुस्तान। धन्यवाद
1: सखियों। अभी आपने सुनी ये वार्ता, नशा नहीं नई दिशा चुने, नशा मुक्त भारत अभियान। वार्ताकार थी शालिनी कुलश्रेष्ठ। वार्ता के बाद अब हम आपसे चर्चा करते हैं बारिश में घर की बगिया की देखरेख कैसे करें। सखियों, गर्मी की तपन झेलने के बाद बारिश का मौसम आते ही हरी भरी बगिया हमारे मन को सुकून और खुशी से भर देती है। लेकिन इस समय हमारे पौधों की अच्छे से देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। बारिश के मौसम में पौधों को पानी तो भरपूर मिलता है, लेकिन जल भराव और धूप की कमी से पौधों में फंगस और कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बगिया की सही देखभाल के लिए गमलों की जल निकासी को दुरुस्त रखें, ज़्यादा बारिश से नाजुक पौधों को बचाएं और जैविक खाद का ही उपयोग करें। हर गमले के नीचे बने ड्रेनेज होल को चेक करें ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल जाए। अगर गमलों के नीचे पानी इकट्ठा करने वाली प्लेट्स लगी हैं तो उन्हें हटा दें, क्योंकि रुके हुए पानी में पौधों की जड़ें गल सकती हैं। अगर बहुत तेज बारिश हो रही हो तो नाजुक पौधों, छोटे पौधों और सब्जियों को प्लास्टिक शीट से ढक दें। अपने इंडोर पौधों को घर के अंदर ही रखें, लगातार बारिश उनके पत्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। बारिश के पानी से मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं

इसलिए समय समय पर जैविक खाद और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें। बारिश के बाद मिट्टी की हल्की गुड़ाई करें ताकि जड़ों तक हवा पहुंच सके। सड़े हुए पत्तों और टहनियों को तुरंत काटकर हटा दें, क्योंकि नमी में इनसे फंगस फैलती है। कीड़ों और फंगस से बचाने के लिए पौधों पर नीम के तेल और पानी के मिश्रण का स्प्रे करें। और सखियों, अगर आप नए पौधे लगाना चाहती हैं तो ये मौसम उसके लिए बहुत अच्छा है। इस समय बेला, चमेली, कामिनी, गुड़हल, मैक्सिकन पिटूनिया, कनेर, चांदनी, अडेनियम, गुलाब, नाग चंपा, जिरेनियम आदि लगा सकती हैं और अपनी बगिया को हरा भरा और सुंदर बना सकती हैं।

सखियों, अब हम गीत के बाद चर्चा करते हैं समय समय पर रूटीन हेल्थ चेकअप कितना जरूरी है। सखियों, हम अपने परिवार का ध्यान तो बहुत अच्छे से रखती हैं, लेकिन कई बार अपने शरीर में अनायास होने वाले बदलाव को हम नज़रअंदाज करती हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। कई बार शरीर में होने वाले कुछ सिम्टम्स हमें बीमारी का संकेत देते हैं, पर हम महिलाएं ये सोचकर उस पर ध्यान नहीं देती हैं कि हमें ऐसा लग रहा है, शायद हमने कल बहुत ज़्यादा काम किया था, शायद हम बहुत देर तक खड़े रहे थे तो थोड़ी परेशानी हो रही है। यही हम गलती करते हैं। हमें अपनी छोटी छोटी तकलीफ को भी सीरियसली लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि हमें समय रहते तकलीफ का पता लगे और हम इलाज करवा सकें। और सखियों, हमें अगर कोई परेशानी नहीं भी है तो भी हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए समय समय पर अपना रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए, ताकि कुछ बीमारियों जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को शुरुआती दिनों में ही पता लगाने में मदद मिले, जिससे उनका इलाज भी आसान और प्रभावी हो जाता है। रूटीन चेकअप में आमतौर पर ये जांचें होती है, ब्लड प्रेशर की जांच, खून से जुड़ी समस्याओं के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट, डायबिटीज़ की जांच के लिए ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत के लिए लिपिड प्रोफाइल, हार्मोनल संतुलन के लिए थायराइड आदि शामिल है। इस प्रकार सखियों, आप अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक और समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें, ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। और इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अपनी सखी निरंजना को विदा लेने की अनुमति दें। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: पर सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
8: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
9: आकाशवाणी इंदौर।
8: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
7: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
8: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
7: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
8: अरे काहे का मजा।
7: क्यों, क्या हुआ?
8: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
7: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
8: ऐसा क्या? तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
7: ये हुई ना बात।
10: इस समय आप हैं हमारे साथ।
11: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है। पहले सुनिए रतनलाल कुशवाहा और साथियों के स्वर में मल्हार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है। इसमें पहले सुनिए वैशाली मोघे के स्वर में भजन।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: पर सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
6: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
7: आकाशवाणी इंदौर।
6: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
8: इस समय आप हैं हमारे साथ।
9: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

ये गीत था फिल्म सर से, जिसके लिए आवाज़ थी कुमार सानू की और संगीत दिया था अनु मलिक ने।

0: हाफ गर्लफ्रेंड इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना एश किंग सायशा तिरुपति की आवाज़ में, और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार नीट यूजी पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकार पिछले 3 दिनों से चर्चा का प्रस्ताव दे रही है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विपक्ष को चर्चा के एजेंडे पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया।
1: नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है।
0: वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक हितों से बड़ा है। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन दिल्ली में छात्रों से मारपीट और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं दी, जिसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। दिल्ली की घटना पर चर्चा की मांग को सत्तापक्ष ने यह कहकर नकार दिया कि यह मामला मध्य प्रदेश से बाहर का है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रदेश में पुलिस नशे के अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न जिलों में पुलिस ने 82 लाख रुपए से अधिक के मादक पदार्थ और तस्करी में इस्तेमाल वाहन जब्त किए हैं। नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, शिवपुरी, इंदौर और नरसिंहपुर जैसे जिलों में पुलिस ने स्मैक और एमडी ड्रग्स के साथ कई आरोपियों को पकड़ा है। राज्य सरकार ने दतिया में विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में इस दिन मतदान होगा, इसलिए इसे सार्वजनिक और सामान्य अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए मुख्य अभियंताओं के 7 दलों ने भोपाल, जबलपुर और इंदौर सहित 7 जिलों में 35 निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। गुना और उज्जैन में 2 सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब मिलने पर संबंधित एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। वहीं इंदौर में 1 छात्रावास की गुणवत्ता बेहतर मिलने पर संबंधित अधिकारियों की सराहना भी की गई। उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर की सावन माह की पहली सवारी 3 अगस्त को निकलेगी। इसकी तैयारियों को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने सवारी मार्ग का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सड़क, बिजली और साफ सफाई से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और रामघाट क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने तथा जर्जर इमारतों के पास चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा आज लगातार 4थे दिन स्थगित रही। बालटाल और नुनवान के बेस कैंपों में ठहरे सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण माता वैष्णो देवी, शिवखोड़ी और मचैल माता यात्रा भी लगातार बंद रही। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और पिछले 36 घंटों में 35 से ज्यादा जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज 15 जिलों में भारी और अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिवपुरी, गुना, सागर और डिंडोरी में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 4 से 8 इंच तक बारिश की आशंका जताई गई है। राजधानी भोपाल में भी कल रात से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में 14 से 21 जुलाई तक चले दस्तक अभियान के तहत 5 साल तक के 5005 बच्चों की स्वास्थ्य जांच, 4480 बच्चों को विटामिन ए की खुराक और 4240 बच्चों को ओआरएस के पैकेट बांटे गए। जबलपुर की 521 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से आरओ पेयजल प्लांट लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत बरेला के सालीवाड़ा गांव से की जाएगी। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत कल आगरमालवा जिले में विभिन्न विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और शिवपुरी में नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 8 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 26 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव

0: आना चाहते हैं।
1: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
2: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
1: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
3: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
1: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: आयन पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कदंबा नौसेना बेस पर माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने आईएएसवी त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
2: In this era of volatility and disruption,
3: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
2: इवन वाल एड्रेसिंग चैलेंजेस।
0: बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
4: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है। है।

0: जबकि 1 लाख से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जास्मीन प्रयागराज भट्ट, भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, सहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। आपने सुनना चाहा है फिल्म चश्मे बद्दूर का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है यशुदास हेमंती शुक्ला की और गीतकार हैं इंदु जैन और संगीत है राजकमल का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है हमारे इन श्रोता साथियों की। ये है रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश, ऋषि वर्मा, भाटापारा दत्तरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा। और ये साथी हैं धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, और ये जो साथी हैं ये हैं अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश, गुड़िया ठाकुर। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है अभिनेत्री का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आपकी फरमाइश में कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म चांदनी से, जिसके लिए आवाज़ है सुरेश वाटकर, अनुपमा देश पांडे की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है संगीत हरि का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं भोपाल से करुणा द्विवेदी, सीमा सपना गोयल, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मनन तान्या। बीड़ महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल। तो सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पर चांदनी फिल्म का ये गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, और खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मिति पंचोलिया, सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है 1942 अ लव स्टोरी, इस फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत है आर डी बर्मन का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है राजपुर मध्य प्रदेश से घीसू दिलवारे लक्ष्मी माधुरी सोनाली भगवान पुष्पा नेहा एकता अस्मिता सौरभ कुणाल दिलवारे और खुरई से राम सखी परमानंद सौरभ गौरव किशोरी बोस एलपी रोहित लल्लूराम पूरन रोहित और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म दहक का ये गीत जिसके लिए आवाज़ है हरिहरन साधना सरगम की गीतकार है श्यामराज और संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार नीट यूजी पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकार पिछले 3 दिनों से चर्चा का प्रस्ताव दे रही है। विधानसभा के मानसून सत्र के 3रे दिन दिल्ली में छात्रों से मारपीट और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं दी, जिसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। प्रदेश में पुलिस नशे के अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ लगातार

कार्रवाई कर रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न जिलों में पुलिस ने 82 लाख रुपए से अधिक के मादक पदार्थ और तस्करी में इस्तेमाल वाहन जब्त किए हैं। राज्य सरकार ने दतिया में विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को दतिया में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए मुख्य अभियंताओं के 7 दलों ने भोपाल, जबलपुर और इंदौर सहित प्रदेश के 7 जिलों में 35 निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा आज लगातार 4थे दिन भी स्थगित रही। बालटाल और नुनवान के बेस कैंपों में ठहरे सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं और उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर की सावन माह की पहली सवारी 3 अगस्त को निकलेगी, जिसकी तैयारियों को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने सवारी मार्ग का निरीक्षण किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको बता दें आज शाम की सभा के कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:02 पर सुनिए हमारी संध्याकालीन सभा में कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान होगा। 5:33 पर, 6:30 पर, रात 8:35 पर सुनिए फिल्म संगीत और शाम 6 बजे सुनिए एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

8:30 पर होगी विधानसभा समीक्षा। 9:30 पर सुनिए चर्चा का विषय है, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात 10 बजे, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। और सात बजकर 21 मिनट पर सुनिए आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा। इसमें सुनिए भेंटवार्ता केला उत्पादन के उन्नत तकनीक डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ से। तो ये थी जानकारी हमारी शाम के सभा के कार्यक्रमों की। मीडिया वेव 1593 किलोहर्ट्ज पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:02 हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम की सभा में 5 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

कंसर्ट का समय हुआ है 4:20:41:47। समय ले लीजिए 4:20:47:49।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजने को ही हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, शाम के बज चुके हैं 5 और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वैष्णवी
1: और मैं हूं अनुषा, और हम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके प्रिय कार्यक्रम युववाणी में।
0: श्रोताओं, आप जानते हैं आज दिन है बुधवार का और हम युववाणी कार्यक्रम में आज आपके लिए लेकर आते हैं एक बहुत ही खास और एंटरटेनिंग सेगमेंट एक ही फिल्म से, जिसमें हम एक फिल्म के बारे में बात करते हैं, उसकी पूरी कहानी ऐसे पिरोते हैं कि आपके आंखों के सामने पूरी फिल्म आ जाए, और उसको उसके कई खूबसूरत गीत भी आपको सुनाते हैं, जो कि हम आज भी करने वाले हैं ना अनुषा।
1: बिल्कुल, लेकिन वैष्णवी उससे पहले हम सीधे फिल्मों पर चलने से पहले हम आज के प्रश्न बता दें हमारे श्रोताओं को।
0: बिल्कुल,
1: तो आज का पहला प्रश्न है, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में कैरिबियन सागर में खोजी गई दुनिया की सबसे विशाल जीवाणु जायंट बैक्टीरिया प्रजाति का नाम क्या है।
0: आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आइसलैंड में लगातार हो रहे ज्वालामुखी विस्फोटों यानी कि वॉल्केनो इरप्शन के कारण चर्चा में आए प्रसिद्ध प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला का क्या नाम है। श्रोताओं, हम फिल्म की बात करेंगे आज, एक एंटरटेनिंग और सुपरहिट फिल्म की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका ये भी जानना जरूरी है कि आज का दिन हमारे देश के लिए, हमारे देश के पहचान के लिए एक बहुत जरूरी दिन कैसे है। आपने कभी सोचा है कि, अनुषा तुम भी सोचना, कि 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश आज़ादी का के जश्न में डूबने वाला था, उससे ठीक 24 दिन पहले यानी कि आज के दिन 22 जुलाई के दिन नेताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या रहा होगा?
1: मुझे लगता है अक्सर हम सभी जैसे ख्वाब देखने लगते हैं, सपने सजाने लगते हैं, मुझे लगता है हमारे सामने एक सवाल होगा कि आज़ाद भारत की पहचान क्या होगी, वो कौन सा प्रतीक होगा जिसके नीचे पूरा देश एक साथ खड़ा हो सके।
0: और अनुषा, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन इसी सवाल का जवाब हमें मिला था आज के दिन 22 जुलाई 1947 को। यही वो ऐतिहासिक दिन था जब हमारी संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तिरंगे को भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पहली बार अपनाया था। इसीलिए हर साल 22 जुलाई को हम राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस यानी कि नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे के रूप में मनाते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे हाथ में लहराता ये तिरंगा रातों रात बनकर तैयार नहीं हुआ था। इसके पीछे एक सदी लंबा इतिहास, एक महान सोच और कई दिग्गजों का योगदान है।
0: और तिरंगे के पीछे की डिजाइन और इसके नायक की बात करें तो जब भी इस सब का जिक्र होता है, तिरंगे का जिक्र होता है, तो सबसे पहला नाम आता है आंध्र प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद पिंगली वेंकैया का।
1: पिंगली वेंकैया ने 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक झंडा तैयार किया था। इसमें मुख्य रूप से दो रंग थे, लाल और हरा, जो दो प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व करते थे।
0: और इसी चर्चा के बीच महात्मा गांधी ने इस डिजाइन को देखा और उन्होंने इसमें दो बदलाव के सुझाव दिए। पहला, देश के बाकी सभी समुदायों और शांति का प्रतीक सफेद रंग इसमें होना चाहिए, और दूसरा, आत्मनिर्भरता और प्रगति का प्रतीक चरखा, जो उनका भी एक आइडेंटिफिकेशन है।
1: जिसके बाद आजादी से ठीक पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में नए ध्वज का प्रस्ताव रखा,
0: और इसमें चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र, आप सभी ने देखा है तिरंगा में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र शामिल किया गया, और रंगों का क्रम तय हुआ, जिसमें आप सभी जानते हैं कि हमारे तिरंगे में पहला कलर होता है सैफरन यानी कि केसरिया, जो साहस और त्याग का प्रतीक है। दूसरा वाइट यानी कि सफेद, जो शांति और सत्य को बताता है। तीसरा होता है ग्रीन यानी कि हरा, जिसका अर्थ होता है विश्वास और समृद्धि।
1: तो श्रोताओं, अभी तक हमने समझा कि तिरंगा और उसका महत्व क्या है, और उसके रंगे रंग और उसके पीछे छुपे जो कारण और उसके अर्थ को समझा। अब हम जानते हैं कि तिरंगों से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में। तो क्या आप जानते हैं भारत के ध्वज संहिता यानी कि फ्लैग कोड के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज केवल खादी, सूती या रेशमी से ही बनाया जा सकता है। किसी अन्य कपड़े से बना झंडा फहराना नियम के खिलाफ माना जाता है।
0: एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पूरे भारत में आधिकारिक रूप से तिरंगा बनाने और सप्लाई करने का अधिकार सिर्फ एक ही संस्था के पास है, कर्नाटक के हुबली में स्थित कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ यानी कि KKGSS।
1: इसी के साथ कई बार हमारे मन में एक और प्रश्न उठता है कि अशोक चक्र का रंग नीला ही क्यों? सफेद पट्टी के बीच बना 24 तिलियों वाला अशोक चक्र गहरे नीले यानी नेवी ब्लू रंग का होता है और ये रंग आसमान और महासागर की असीम गहराई और निरंतर गतिशीलता को दर्शाता है।
0: तिरंगे की डिजाइन में गणित और प्रॉपर नाप का भी ध्यान रखा गया। तिरंगे की तीन पट्टियां आकार में बिल्कुल बराबर होती हैं और पूरे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 का होना अनिवार्य होता है।
1: आपको ये भी बता दें कि 2004 से पहले आम नागरिकों को साल के आम दिनों में अपने घरों में तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उद्योगपति नवीन जिंदल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है और अधिकार भी।
0: श्रोताओं, हम जानते हैं कि 22 जुलाई की ये महत्वपूर्णता अक्सर हमें नहीं बताई गई है, हमें नहीं पता होती है, लेकिन आज तो आपने जान लिया ना कि 22 जुलाई केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं बल्कि एक बहुत खास दिन है। ये दिन हमें ये याद दिलाता रहेगा कि विविधताओं से भरे इस विशाल देश को एक सूत्र में पिरोने वाली डोर हमारा तिरंगा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हमारा प्रतीक है।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप 22 जुलाई को कैलेंडर में देखें या 15 अगस्त को हवा में लहराता हुआ तिरंगा देखें तो 1947 के उस ऐतिहासिक पल को जरूर याद कीजिएगा जब हमारे पूर्वजों ने हमें हमारी पहचान दी थी।
0: चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आज के हमारे पहले गीत के साथ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: तो दोस्तों, हमारे खास सेगमेंट एक ही फिल्म से में हम हर बार आपके लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि अपने साथ एक खूबसूरत एहसास भी छोड़ जाती है।
4: और आज की वो फिल्म है, उसमें एक खास बात है, वो है कि यहाँ प्यार पहली नज़र में नहीं होता बल्कि पहली चिट्ठी से होता है। वही ओल्ड स्कूल प्लेटोनिक लव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ दो लोग एक दूसरे को देखने और मिलने से पहले एक दूसरे से सिर्फ बातें करते हैं, टेक्निकली बातें भी नहीं करते, एक दूसरे को सिर्फ चिट्ठियाँ लिखते हैं और एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। और उस फिल्म का नाम है सिर्फ तुम।
3: तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है आरती से, जिसका किरदार निभाया है प्रिया गिल ने। आरती एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर युवती है, जो नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर इंटरव्यू देने जाती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो ट्रेन से अपने घर लौट रही होती है।
4: ट्विस्ट ये आता है कि सफर के दौरान उसका पर्स चोरी हो जाता है। चोर उसमें से पैसे निकाल लेते हैं और बाकी पर्स, उसमें रखी जरूरी चीजें जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, डिग्रियां और उसका पता होता है, और वो ट्रेन की ही एक सीट पर रैंडमली फेंक देते हैं।
3: और बाद में उसी ट्रेन में सफर कर रहा होता है दीपक। दीपक जो इसका अहम किरदार है, जिसका किरदार संजय कपूर ने निभाया है। दीपक भी एक साधारण परिवार का सीधा साधा और ईमानदार युवक है, और उसे वो पर्स मिल जाता है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो समझ जाता है कि किसी ने पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन इसमें रखे जरूरी प्रमाण पत्र किसी लड़की के भविष्य से जुड़े हुए हैं।
4: और दीपक बिना किसी लालच के उस पर्स को दिए गए पते पर वापस भेज देता है। कुछ दिनों बाद आरती को वो पर्स मिल जाता है। अब आज के जैसा फ़ोन वाला ज़माना तो है नहीं कि फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया तो सेकंड्स में पता चल गया। तो बहुत समय बाद आरती को उसका पर्स मिलता है और वो हैरान भी हो जाती है और खुश भी हो जाती है कि ऐसे कैसे पर्स वापस आ गया।
3: और तो और उसे लगता है कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी अनजान इंसान की मदद कर सकते हैं। वो यही सब सोचकर पर्स मिलने के बाद उसकी खुशी में दीपक को धन्यवाद देने के लिए एक चिट्ठी लिखती है।
4: दीपक भी उस चिट्ठी का जवाब देता है और यहीं से वो चिट्ठियों का रोमांटिक सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि शुरुआत से ये चिट्ठियां रोमांटिक नहीं होती, शुरुआत में तो वो एक दूसरे से सिर्फ बातें करते हैं, दोस्त बनते हैं, और लेकिन धीरे धीरे अब बातें करते करते एक दूसरे को इतना जान लेते हैं कि दो अनजान लोगों को एक दूसरे की जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बना देते हैं।
3: बिल्कुल सही, दोनों में तो सिर्फ औपचारिक बातें हुआ कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वैष्णवी वो अपने परिवार, अपने सपने और अपनी परेशानियां और छोटी छोटी खुशियों को भी एक दूसरे के साथ बांटने लगते हैं।
4: और ऐसे ही उनको एक अनदेखा अटैचमेंट हो जाता है एक दूसरे से। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं है अभी तक, वो तो सिर्फ एक दूसरे को चिट्ठियां लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं और ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ना उन्होंने एक दूसरे की तस्वीर देखी है, ना कोई मुलाकात की है, और अभी तक फिल्म में उन्होंने फोन पे बात भी नहीं की है। बस नाम जानते हैं, पता जानते हैं और उस पते पे चिट्ठियां लिख देते हैं, जो उन्हें एक, मतलब कहते हैं ना, एक बिना नाम का एक रिश्ता बन जाता है, खत वाला दोस्त बन जाता है।
3: बिल्कुल सही, और ऐसा भी कहते हैं कि कभी कभी शब्द चेहरे से भी ज्यादा गहरा रिश्ता बना देते हैं। और शायद इसीलिए ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग जिंदगी में मिलने से पहले एहसासों में मिल जाते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, हमारे आज के खास सेगमेंट एक ही फिल्म से में हम बात कर रहे थे फिल्म सिर्फ तुम के बारे में, और दोस्तों हम पहुंच गए थे कि दीपक और आरती ने एक दूसरे को खत लिखना शुरू कर दिया है। छोटी छोटी बातें, अपनी छोटी छोटी परेशानियां, सपने, परिवार की बातें वो एक दूसरे से एक अच्छे दोस्त की तरह शेयर करने लगे हैं, और ऐसे ही सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्दों के जरिए ही अब तक भी वो एक दूसरे को ऐसे ही जानते हैं। लेकिन हर नई चिट्ठी के साथ, हर नई एक जताई हुई बात के साथ दोनों का रिश्ता और भी गहरा होता जाता है।
3: और इतना ही नहीं, दीपक की जिंदगी में भी कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और अब वो अपनी जिंदगी के संघर्ष भी आरती को लिखता है। नौकरी की तलाश, नए शहर में अकेलापन और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश, वो सब कुछ उन चिट्ठियों में लिखने लगता है।
2: और वहीं आरती भी अपने मन की बातें दीपक से साझा करने लगती है, और कब दोनों एक दूसरे की चिट्ठियों का इंतज़ार करने लगते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं चलता, कि कैसे उन्हें एक आदत सी हो जाती है एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे का हालचाल जानने की, चिट्ठियों के ज़रिए ही सही, लेकिन वो एक दूसरे से एक बहुत ही गहरा नाता जोड़ लेते हैं।
3: बिल्कुल, और सिर्फ चिट्ठियाँ ही नहीं वैष्णवी, फिल्म में एक बहुत ही सुंदर बात हमें देखने को मिलती है कि कई बार चिट्ठियां लिखने के साथ एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देने का और कुछ न कुछ उपहार में भेजने का भी काफी बार जिक्र होता है, और इसी के चलते फिल्म में इसके दौरान एक बहुत ही खूबसूरत पल आता है, और उसमें सर्दियों का मौसम होता है। आरती अपने हाथों से दीपक के लिए एक स्वेटर बुनती है। वो सिर्फ एक ऊनी स्वेटर नहीं होता है, बल्कि उसमें उसका अपनापन, उसकी परवाह और उसके अनकहे जज्बात बुने हुए होते हैं।
2: और उस स्वेटर की, उस गिफ्ट की खास बात एक तो यही है कि उसे आरती ने खुद अपने हाथों से बनाया है, और उस स्वेटर में एक और खास बात होती है कि उसका नाम, क्योंकि दीपक नाम है तो उस स्वेटर पर एक चिन्ह होता है दीपक का, जिसमें एक दिया और उसमें एक लौ जल रही होती है, ऐसा एक चिन्ह होता है। और जब वो स्वेटर दीपक तक पहुंचता है तो पहली बार उसे एहसास होता है कि उनके बीच का जो रिश्ता है वो अब सिर्फ दोस्ती नहीं है, वो धीरे धीरे अब कुछ और बनता जा रहा है, वो और करीब आते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं दीपक के मन में भी आ जाता है कि अब आरती को वो दोस्त से आगे पसंद करने लगा है।
3: अब जब चिट्ठियों तक बात सीमित नहीं रही तो जाहिर सी बात है दोनों ने फोन पर भी कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हम जानते ही हैं उस समय एसटीडी कॉल लगाया जाता था और हर किसी के घर में लैंडलाइन फोन हुआ नहीं करता था, तो उस कॉल के लिए एक दुकान पर जाना और लंबी सी लाइन में इंतजार करना, खड़े रहना भी बहुत तो मुश्किल दौर था। और तुम्हें पता है फिल्म में आरती जो है एक पास की नज़दीक की दुकान में घंटों बैठकर दीपक के फोन का इंतजार करती रहती थी,
2: और वहीं दीपक भी इसी कोशिश में रहता था कि वो कब कहीं से उसे फ़ोन करने का मौका मिल जाए, एक बार वो आरती की आवाज़ सुन ले, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक दूसरे की देखना तो दूर आवाज़ भी नहीं सुनी है। तो वो यही कोशिश करता रहता था पूरे टाइम कि उसे कैसे एक फ़ोन करने की जगह, समय मिल जाए ताकि वो आरती को फ़ोन कर सके। और दूसरी ओर आरती भी एक दुकान पर घंटों बैठ कर, जहाँ पर लैंडलाइन की कॉलिंग की सुविधा होती थी, वहाँ बैठ कर इंतज़ार करती थी कि दीपक का फ़ोन आएगा और वो बात करेगी। और आखिर में बहुत लंबे इंतजार के बाद दोनों चिट्ठियों के माध्यम से ये तय करते हैं कि अब सब समय आ गया है कि अब उन्हें मिल ही लेना चाहिए एक दूसरे से। लेकिन फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म है, ट्विस्ट तो आएंगे ही, तो अब उनके मिलने में भी कुछ ट्विस्ट आता है। कह सकते हैं कि दीपक और आरती की किस्मत को उनका इतनी जल्दी मिलना मंजूर नहीं था,
3: क्योंकि फिल्म में ऐसे भी पल आते हैं जब दोनों एक ही शहर में होते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब भी पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से उनकी मुलाकात टल ही जाती है।
2: और पता है, एज इन देखने, एज इन दर्शक, हमें ऐसा लगता है कि अब पक्का मिलने वाले हैं, अब तो मिल ही लेंगे, एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं, अब मिल लेंगे, बस इस बार तो मिल ही जाएंगे, तब मिलेंगे, लेकिन उनकी मुलाकात टलती ही जाती है, वो एक दूसरे के सामने नहीं आ पाते।
3: लेकिन इसी दौरान दीपक की मुलाकात होती है प्रीतम से, जिसका किरदार निभाया है जैकी श्रॉफ ने। प्रीतम दीपक के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक बड़े भाई की तरह बन जाता है और वो मुश्किल समय में दीपक का साथ देता है और उसे आगे बढ़ने का हौसला भी देता रहता है।
2: और उधर आरती के घर में हर टिपिकल हाउसहोल्ड की तरह उसकी शादी की बातें चालू हो जाती है। उसके परिवार वाले उसके लिए एक लड़का देखना चालू कर देते हैं और वो चाहते हैं कि अब वो पढ़ाई हो गई है, अब वो नौकरी ढूंढ रही है और इसी के साथ वो अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करे। लेकिन ऑफकोर्स आरती को तो नहीं करना है अभी शादी, आरती का मन तो कहीं और लगा हुआ है, उसका मन तो उस इंसान में बस चुका है जिसे आज तक उसने देखा नहीं है, सिर्फ पढ़ा है।
3: लेकिन फिल्म का सबसे खूबसूरत पहलू ही यही है कि यहाँ प्यार चेहरे से नहीं भरोसे से जन्म लेता है, हर चिट्ठी दोनों के बीच की दूरी कम करती जाती है।
2: लेकिन किस्मत बार बार उनकी मुलाकात को टाल देती है, वो हर बार फोन पे बात करने की एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिल पाते हैं।

0: तो दोस्तों, दोनों का मिलने का दौर जो था वो पूरा नहीं हो पाता है और दोनों ये चाहते हैं कि एक मुलाकात तो ज़रूरी हो है। लेकिन इन सभी जद्दोजहद और संघर्ष के चलते अब कहानी अपने भावुक मोड़ पर पहुंच रही होती है। लेकिन इसी बीच दीपक की जिंदगी में प्रवेश होता है नीलम का, जिसका किरदार निभाया है सुष्मिता सेन ने।
1: श्रोताओं, नीलम एक सफल, आत्मविश्वासी और आधुनिक युवती है जो कि दीपक से उसके ऑफिस में मिलती है, दीपक की कलीग होती है और वो दीपक के व्यक्तित्व से, उसके ईमानदार स्वभाव और उसकी जेंटलमैन एक नेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और धीरे धीरे इसी वजह से उसे पसंद करने लगती है।
0: लेकिन बहुत जल्द उसे ये एहसास भी हो जाता है कि दीपक का दिल पहले से ही किसी और के नाम है। वो उस लड़की से कभी मिला नहीं, लेकिन उसके लिए उसका प्यार बहुत सच्चा है।
1: शुरुआती दौर में तो नीलम कोशिश करती है दीपक को पाने की, उसे पसंद करती है वो क्योंकि, लेकिन फिर धीरे धीरे नीलम इस सच्चाई को समझती है और इस सच को कबूल कर लेती है और दीपक की भावनाओं का सम्मान करती है और यही बात सुष्मिता सेन के किरदार को खास बनाती है, एक पॉजिटिव टर्न देती है।
0: बिल्कुल। दूसरी तरफ आरती की शादी की तैयारियां तेज हो जाती है। परिवार और परिस्थितियां उसे एक ऐसे फैसले की ओर ले जाती है जो उसके दिल के बिल्कुल विपरीत है।
1: इसी दौरान फिल्म में एंट्री होती है सलमान खान की। हालांकि इस फिल्म में सलमान खान का छोटा रोल है, लेकिन वो एक बहुत ही अहम कैमियो है जो कहानी को आगे बढ़ने में और दीपक और आरती की कहानी, उनकी जिंदगी की कहानी को आगे एक अच्छा मोड़ लाने में बहुत मदद करता है।
0: अब जब इन सभी कोशिशों के बावजूद कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दर्शक सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहता है कि क्या दीपक और आरती कभी मिल पाएंगे।
1: और फिर लंबे इंतजार, दीपक, आरती और नीलम के बीच में हुई कई गलतफहमियों और अनगिनत अधूरी मुलाकात, मतलब एक किस्सा तो ऐसा भी है जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है, दीपक ऑटो चलाता है उस समय और आरती उसके ऑटो में ही उसकी पैसेंजर है, उसको ही घर छोड़ने जा रहा होता है दीपक, लेकिन फिर भी ऐसा कोइंसिडेंस होता है जो हर बॉलीवुड फिल्म की खूबसूरती है, देखा है आप सभी ने, कि फिर भी वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं और मिल नहीं पाते। जायज बात है, उन्होंने एक दूसरे को कभी देखा नहीं और आरती ने दीपक से चिट्ठी में कहा था कि जब भी हमारी पहली मुलाकात होगी तुम वो जो दीपक के चिन्ह वाला जो स्वेटर मैंने सफ़ेद रंग का तुम्हें भेजा है वो पहन कर आना। और इसी तरीके से इतनी अनगिनत अधूरी मुलाकातें रहती हैं, इतने करीब आके भी वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते। लेकिन फिल्म में आखिर में एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये इंतज़ार एक तरीके से कहें पूरा होता है
0: और दो लोग जो अब तक सिर्फ एक दूसरे को लिख रहे थे, लिखावट पहचानते थे, जो एक दूसरे की आवाज तक ठीक से नहीं जानते थे, वो आखिरकार आमने सामने खड़े होते हैं। ये सिर्फ दो प्रेमियों की मुलाकात नहीं होती
1: और मिलते भी वही स्वेटर की वजह से है। आरती ने कहा था कि पहली बार वो स्वेटर पहन के आना और उनकी पहचान का चिन्ह भी वही था, ट्रेन स्टेशन पे दीपक होता है। आरती ट्रेन से निकल रही होती है और वो देखती है एक लड़के को उसी स्वेटर में और फिर वो बुलाती है, आवाज़ देती है दीपक और फिर उनकी मुलाकात होती है और उन तमाम चिट्ठियों की, उन लंबे इंतज़ारों की एक जीत हो जाती है, उन चिट्ठियों की जीत होती है जिन्होंने दो अनजान लोगों को एक दूसरे की ज़िंदगी बना दिया, एक दूसरे की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना दिया। आज के दौर में जहां हम देखते हैं कि माइक्रो सेकंड्स में हम एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सकते हैं, कुछ मिनटों में एक दूसरे को तोहफा पहुंचा सकते हैं, अब तो ये भी सुविधा हो चुकी है कि हर तरीके से एक दूसरे को फेस टाइम करके देख सकते हैं, पूरे टाइम एक साथ रह सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी अब लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है। लेकिन वो दीपक और आरती का इंतज़ार अब रंग लाता है जो उन्होंने महीनों इंतज़ार किया एक दूसरे की चिट्ठियों में, फ़ोन पे बात करने के लिए और अब मिलने के लिए। सिर्फ तुम ये फिल्म हमें उस समय की याद दिलाती है जब प्यार इंतज़ार भी हुआ करता था और जब एक चिट्ठी आने में दिन महीने लग जाते थे और जिस दिन चिट्ठी आती थी वो दिन एक त्यौहार होता था।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने वैष्णवी, ये एक सच्चे एहसास की कहानी मानी जाती है और शायद मुझे लगता है इसलिए दर्शकों को ये बहुत पसंद भी होगी। आज के समय में यदि हम ये फिल्म बैठकर देखें तो हमें एक ठहराव महसूस होगा क्योंकि जितनी बार हमने देखा है एक तो चिट्ठी पत्रों से बातचीत हो रही है, एक दूसरे को उपहार भेजने की बात हो रही है, साथ ही

0: कहीं ना कहीं ट्रेन से शुरू हुई एक कहानी ट्रेन ही में खत्म हो रही है। बहुत सारी खास बातें हैं इस फिल्म की जो उसको दिलचस्प बनाती है।
1: और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये खतों के जरिए एक प्लूटोनिक लव की शुरुआत होती है जिसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई सेल्फिश रीजन नहीं है, सिर्फ एक दूसरे की भावनाओं को समझते समझते एक दूसरे को पसंद कर बैठे हैं। और मुझे लगता है ये फिल्म एक अच्छा मैसेज देती है कि सच्चा प्यार हमेशा मुलाकात से नहीं होता, कभी कभी एक छोटी सी अच्छाई, सिर्फ तुम की बात करें तो एक अच्छी चिट्ठी और एक भरोसे से भी प्यार जन्म ले सकता है।
0: और उसमें एक और खास बात, किसी की मदद करना।
1: हाँ, दीपक ने शुरुआत तो मदद से ही की थी, तो आरती भी इसी बात से प्रभावित हुई कि अच्छा इंसान है, ईमानदार इंसान है।
0: तो दोस्तों, इसी तरह हर फिल्म हमें कोई ना कोई संदेश जरूर देती है। और सिर्फ तुम इस फिल्म का निर्देशन किया अगथियन ने और ये फिल्म काफी लोकप्रिय है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं और सुनते हैं इस सेगमेंट का आखिरी गीत।

0: तो अभी आपने हमारे खास सेगमेंट एक ही फिल्म से में सुना, सिर्फ तुम फिल्म के बारे में। तो श्रोताओं, हमें तो ये फिल्म देख के और इसकी बात करके बहुत मजा आया। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा, और अगर देखी है तो हम आशा करते हैं कि आपने भी इस फिल्म को, उस दौर को रिलिव कर लिया होगा। चलिए अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपको जवाब देंगे उन दो प्रश्नों के जो हमने आपसे शुरुआत में पूछे थे।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज का पहला प्रश्न था, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में कैरिबियन सागर में खोजी गई दुनिया की बड़ी जीवाणु जायंट बैक्टीरिया प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है थियोमार्गेरिटा।
0: श्रोताओं, आपका आज का दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में आइसलैंड में लगातार हो रहे ज्वालामुखी विस्फोटों यानी कि वोल्केनो इरप्शन के कारण चर्चा में आए प्रसिद्ध प्रायद्वीप पेनिनसुला का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है राइकिंस।
1: तो इसी के साथ अब दीजिए इजाजत अनुषा
0: और वैष्णवी को। आप सभी को हमारा नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं दयावान फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है पंकज उदास और अनुराधा पोडवाल ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुमधुर संगीत और अजीज कैसी की शब्द रचना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: अभी आप सुन रहे थे बाजीगर फिल्म का ये गीत। विनोद राठौर और अलका याग्निक का स्वर था, अनु मलिक का संगीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है।

मीडियम वेव 465.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्म भूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
0: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबिल मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
0: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, अब जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है।
0: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
2: जी,
0: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा।
2: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
0: जी,
2: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फूं फूं जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
0: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
2: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
0: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
2: जी,
0: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
2: जी,
0: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
2: जी
0: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है।
2: जी,
0: जिसे मोरुंग कहते हैं।
2: जी,
0: ये मोरुंग होता क्या है।
2: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
0: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहां जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
2: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
0: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
2: जी,
0: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
2: जी,
0: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
2: जी,
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: मोरुंग किसे कहते हैं?

0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800044559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
0: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी। इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
4: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
3: जी मालिक, ये बात तो है।
4: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहाँ की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
3: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
4: अच्छा,
3: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
4: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
3: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूँगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
3: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
4: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
2: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
3: मेरी प्यारी सुंदरिया,

0: अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूं तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा मेरी प्यारी सुंदरी।
1: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
2: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
0: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दोहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
2: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
0: जी सेठ जी।
1: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
2: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
0: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
2: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
1: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
0: सुंदरिया, तुम? मेरी प्यारी सुंदरिया।
1: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
0: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
0: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
0: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
1: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
0: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
1: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
2: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
0: जी सेठ जी।
2: खुशी से जाओ हीरा सिंह। और हाँ,
3: सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
0: धन्यवाद सेठ जी।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
5: नमस्कार श्रोताओं, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
1: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
5: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
1: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
5: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
1: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
6: यहीं कहीं तो थी वो दुकान, कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ वो रही।
1: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
5: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
1: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
5: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
6: हाँ, यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
1: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
5: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
1: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
6: नमस्ते मैडम।
7: नमस्ते बेटा।
6: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
7: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
6: ओह।
7: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
6: जी बिल्कुल, पर आप

0: ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
1: बेटा, बात यह है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
0: नहीं,
1: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो
0: नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा। आप उनके दाम बताइए तो सही।
1: यूजीन, देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
0: अच्छा,
1: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
0: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे। आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
1: बेटा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
0: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूँ तो पसंद करके ही जाऊंगा। अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
1: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
2: हाँ जी, बताइए।
1: देखो, सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
2: हाँ हाँ, अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
3: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
4: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
1: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
2: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे। चलो शाबाश, वापिस चलो।
0: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा, इधर आ।
1: ये जन से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
0: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
1: हैं? अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
0: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
1: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
0: क्या?
1: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
0: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं ऐसे ही खरीदूंगा।
1: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
0: मुझे यही चाहिए।
1: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
0: नहीं।
1: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे और

0: और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
1: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा। चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
0: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
1: यूं ही?
0: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत।
1: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
0: अच्छा, समझी। स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे। अच्छी बात है, तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो। खुश?
1: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
0: पर बेटा ये तो
1: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
0: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए। मेरा मतलब है कि
1: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए।
0: अब
1: और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना, है ना मेरा दोस्त तू, यूजीन का दोस्त। तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
0: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
1: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
0: अरे बेटा, ये
1: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
0: अरे नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं
1: भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी एक कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
0: बेटा।
1: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
0: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो।
1: आजा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई कुछ भक्ति रचनाएं।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई भक्ति रचनाएं। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लक्ष्मण गोपाल और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस पारंपरिक लोकगीत से।

0: लोक संगीत में आप सुन रहे थे लक्ष्मण गोपाल और मंडली के गाए मालवी लोकगीत। मीडियम व्यू 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आई श्रोताओं, आपको एक सूचना दे दी, 23 जुलाई यानी कल सवेरे 10:32 से 11:02 तक होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बीमारी के दिनों में होने वाली बीमारियां और बचाव। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासा में प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर विक्रम बलवानी से पूछ सकते हैं। आप हमारा कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज एन AIR पर भी इसे सुना जा सकता है। हमारे फोन नंबर 2710223 और 2710224, इंदौर का स्टडी कोड है 0731, तो फोन करना ना भूले कल यानी 23 तारीख को। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, शाम के 7:00 को ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने

0: बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स मुकाबले में आज सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम व्यू 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आई श्रोताओं, आपको बता दें हमारी आज की सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। 7:20 पर आप सुनेंगे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। इसमें आज की बात का विषय है सुकन्या समृद्धि योजना। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता टीकाकरण एवं महत्व। वार्ताकार होंगे रणजीत सिंह बोग। घरेलू व्यंजन होंगे और घरेलू नुस्खे में आप जानेंगे रागी के फायदे। साथ ही होंगे कुछ लोकगीत। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम प्रस्तुत करेंगे संसद समीक्षा। 8:15 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही आप सुनेंगे कार्यक्रम विधानसभा समीक्षा। 8:35 पर होगा फिल्म संगीत। रात्रि 9:15 पर चित्र गीत और 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से चर्चा का विषय है। 10 बजे होगा रूपक

विषय है शीश कटे रुख बचे तो भी सस्ता जान। आलिख होगा वसंत निर्गुणेकार, प्रस्तुत करता है राकेश ढूंढियाल। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे संतूर वादन। कलाकार हैं पंडित सतीश व्यास, राग होगा यमन। तो श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम। आइए कल के प्रसारित कार्यक्रम हम आपको बता देते हैं। 6:05 पर वंदना कार्यक्रम होगा। 6:30 पर चिंतन कार्यक्रम में विषय है राष्ट्र धर्म की शिक्षा। आलेखे किशोर कुमार श्रीवास का और वाचक है मुकाम सिंह चौहान। 6:35 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप जानेंगे खरीफ मूंगफली का लाभ कैसे लें, वाचक हैं भारती उपाध्याय। 6:40 पर श्री रामचरित मानस गान। 7:20 पर संस्कृत कार्यक्रम दिव्य धारा प्रसारित की जाएगी। वार्ता है विकसित भारतस्य निर्माणे संस्कृतस्य योगदानम, वार्ताकार हैं डॉक्टर वंदना प्रजापति। 7:35 पर होगा सुनहरे पल। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित करेंगे। सवेरे 9:00 लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे रेखा सोलंकी के गाए मालवी लोकगीत। 8:15 पर सुगम संगीत में कल की कलाकारा हैं लता मंगेशकर। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे वायलिन वादन, कलाकार हैं अब्दुल हमीद, राग होगा नट भैरव। 10:00 जिले की चिट्ठी और 10:05 पर श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। 11:00 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम में आरंभिक चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में आप जानेंगे और कहानी पाठ होगा दो दीपक, कहानीकार हैं शैला व्यास। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत। दोपहर 2:00 होगा फिल्म संगीत। 2:30 पर चित्रपट संगीत। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल शाम 5:00 युवाणी कार्यक्रम होगा, उसमें आज के क्रम कार्यक्रम में होगा गीतों भरी कहानी। 6:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग। 6:30 पर सुगम संगीत में लता मंगेशकर के गाए कुछ चंद रचनाएं। 6:45 पर लोक संगीत में आप सुनेंगे रेखा सोलंकी की गाए मालवी लोकगीत। 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा भारत योजना, साथ ही होंगे कुछ लोकगीत। 8:00 संसद समीक्षा। 8:15 पर सुर्खियों में और 8:30 पर विधानसभा समीक्षा। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में पंडित अभय नारायण मलिक का गाया रागेश्वरी। तो ये थे हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को ही प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपजे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं के प्रति संवेदनशील,

0: विद्यार्थियों के हर मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में हंगामा, 3 महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय। 24 घंटे में प्रदेश के 35 से ज्यादा जिलों में बारिश, नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा पानी बरसा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान आज स्कोपजे शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भारत के थे, लेकिन सत्य और अहिंसा का उनका संदेश समस्त मानवता का है। राष्ट्रपति ने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार नीट यूजी पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकार पिछले 3 दिनों से चर्चा का प्रस्ताव दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विपक्ष को चर्चा के एजेंडे पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक हितों से बड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के हर मुद्दे को सुनने और सुलझाने के लिए तैयार है।
1: और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शनों और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति न मिलने से नाराज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे, जिसके कारण कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन ने आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2026 और पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन वाला रेलवे नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारतीय रेलवे के 99.6% ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। इस मामले में भारत केवल स्विट्जरलैंड से पीछे है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से 2026 के बीच 48,072 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया है, जिससे डीजल की खपत में भारी कमी आई है और कार्बन उत्सर्जन भी घटा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। ये मार्च कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के पास किए गए धरने के विरोध में था, जो भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रेडक्रॉस अस्पताल से कांग्रेस कार्यालय तक निकले हुए मार्च में शामिल हुए। पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के पास बैरिकेडिंग कर मार्च को रोक लिया। श्री खंडेलवाल ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के जरिए पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और घुमंतू जनजातियों के छात्रों को शिक्षा में मदद देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस योजना के तहत 4 छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्रों को कवर करते हैं। लोकसभा में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बताया कि इस योजना का मकसद पात्र छात्रों को आर्थिक कठिनाइयों के बिना अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करना है। प्रदेश में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की निगरानी के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति बनाई है, जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त उपाध्यक्ष होंगे और कई विभागों के सचिव सदस्य रहेंगे। ये समिति योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी और जिलों को समय पर बजट दिलाएगी। समिति प्रदेश के चयनित 8 जिलों में उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी मदद करेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जुलाई 2026 प्रवेश सत्र के लिए नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष और अगले सेमेस्टर के विद्यार्थी भी अब 31 जुलाई तक ऑनलाइन पुनः पंजीकरण कर सकेंगे। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र भोपाल की उप निदेशक स्मृति गर्गव ने बताया कि प्रवेश और पुनः पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उन्होंने ये भी बताया कि इग्नू 350 से अधिक रोजगारोन्मुखी शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित कर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ उच्च शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों पर प्रदेश में किसानों के लिए हर विधानसभा में कम से कम एक कृषि यंत्र किराए की दुकान खोली जाएगी। अभी राज्य में ऐसे 5,260 केंद्र चल रहे हैं। अब हर साल 1,060 नई दुकानें खोली जाएंगी, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को खेत तैयार करने में आधुनिक मशीनें आसानी से मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ विदिशा में करीब 150 इकाइयां ग्रेडर, कल्टीवेटर, प्लाऊ जैसे यंत्र बना रही हैं। ये यंत्र नाइजीरिया, सूडान, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों को भी भेजे जा रहे हैं। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मानसून के पहले और मानसून के दौरान बारिश के जल के संचयन को बढ़ावा देना है। इस अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजें। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्धार तथा रिचार्ज पिट और चेकडैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश में इन दिनों बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 जुलाई को इंदौर से इसका आगाज किया था। ये महोत्सव 13 नवंबर तक प्रदेश के सभी 55 जिलों में चलेगा, जिसके तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने महोत्सव की शुरुआत में किसानों को दिन में बिजली देने की घोषणा भी की थी। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। आज राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाए जाने की वर्षगांठ है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। तिरंगा स्वतंत्रता, एकता और लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर देश भर में तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को याद किया गया। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 35 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में हुई, जहां पर 4.2 इंच पानी बरसा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत खंडवा पुलिस ने जिला मुख्यालय स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में एनजीओ लॉयंस क्लब के सहयोग से नशा मुक्ति जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया। गुना में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में निजी कंपनियों द्वारा 383 से ज्यादा युवाओं का प्रारंभिक जॉब चयन किया गया। उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह ने आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ माँ बगलामुखी देवी मंदिर का दौरा कर प्रस्तावित देवी लोक निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैतूल कलेक्टर ने ग्राम पंचायत रगड़ गांव पहुंचकर सीधे ग्रामीणों से मुलाकात की और अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। शिवपुरी के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में करगिल विजय दिवस और सेवा सुशासन के 12 वर्षों पर केंद्रित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 23 जुलाई यानी कल यशवंतपुर बेंगलुरु से कोटा के लिए एक तरफा स्पेशल ट्रेन 06591 चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी और भोपाल स्टेशनों से होकर गुजरेगी। वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण SAI साई भोपाल के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के प्रतिभाशाली गोलकीपर मोहित HS का चयन FIH सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। हॉकी विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी

कार्यक्रम का सुनने वाले सभी बहनों के कवा उनकी सुनीता बहन की घनी घनी राम राम। भाई बिछावा समृद्धि का ताना बाना से बुनेली अपनी जाचम ने शुरू करे अपनो कार्यक्रम जिको नाव छी ग्राम लक्ष्मी। अने आज अपन अपनी बहन की बात करान कि अगर घर की समृद्धि की बात करा तो वो पूरी निर्भर करज अपनी बहन का ऊपर। आन बहन की समृद्धि का लेन छे या योजना जिको नाव छे सुकन्या समृद्धि योजना। अन इनी योजना का तहत अपन यो कवांगा कि अपना जो बहन छे उनका नका लेन 10 साल से जो कम की उम्र की बहन छे उनका नक 250 रुपया का हिसाब से 1.5 लाख तक वो 15 साल तक पैसों जमा करी सके। अना 8.2% का ब्याज दर का हिसाब से उनका पैसा मिलेगा। खातो रखनू पड़ेगा। अना 18 साल की बरस की उम्र हुई जाए उनको ब्याह हुई जाए या फिर 21 बरस तक उना पैसा का परिपक्व हुई ना वो वापस ले भी सके। अने यो पैसों कर मुक्त रहेगा। भाई अब खातो कसो खोलोगा क्योंकि बालक जो छे वो तो 10 साल से कम को छे अपनी जो बहन छे तो उनका जो कानूनी अभिभावक छे माए बाप छे वो उनको खातो खोली सकज। हाँ यो जरूर बतावांगा कि परिवार में 2 खाता तक खोली सकज। अन प्रतिवर्ष 250 रुपया तक न अधिकतम 1.5 लाख तक आप जमा करी सकोज। आंशिक निकासी की बात करा तो भाई वो भी तम करी सको जैसे कक्षा 10वीं पास कर ली और वो का बाद आगे पढ़ाई करना का लेन चाहिए तो 50% तक वो काम से निकाली सको। शादी होना पर अगर जल्दी से हुई गई या असो कोई मानवीय आधार हो जे काम हो कि भाई खातो बंद कर लो तो तम वो भी बंद करी सको। हाँ लेकिन एक आप होगा चिकित्सा का आधार पर होगा या मानवीय आधार पर आप बंद कर देगो। आवेदन करने का लेन यो कहवांगा कि अधिकृत वाणिज्यिक बैंक न छे उनका न मजाई न अपनो खातो खोली सको। जन्म को प्रमाण पत्र लेनूज माए बाप ने की पहचान लेनूज पतो लेनूज यो सब जो दस्तावेज छे वो एकटा करी न आप खातो खोलाड़ो। अन इनी जो समृद्धि योजना छे बहन का लेन सुकन्या समृद्धि योजना एको लाभ लियो अन आग बढ़ो। अने साथ में यो प्यारो सो लोकगीत जो गायलो छे शंकर लाल धोलपुरिया ना उनको भी सुनो।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: संदेश का पहला अपर्णा सुनियो, शंकर लाल ढोलपुरिया को गायलो यो प्यारो से लोक गीत। और बेटा होए कि बेटी होए, भाई बाळक होए कि अपनी नानी सी बहन होए, हस्तो खेलतो बाळक होए तो घणो अच्छो लगे। छम छम का पाए बाज और पूरो अंगणो अपनो महकी जाए। आन वो उकी स्वस्थता पर निर्भर करे कि वो अच्छो हारी बीमारी नहीं होएगा तो नाचेगा कूदेगा गावेगा। आना ओका लेन के ओका हरी बीमारी नहीं होए, ओका लेन छे टीकाकरण। और टीकाकरण को काई महत्व छे, भाई देखो टीकाकरण तो जो कि नानो से बाळक होय कि अपनो वाचरू होय सब नका लेन घणो जरूरी छे। तो टीकाकरण को बाळक नका लेन या सब नका लेन क्यों जरूरी छे का महत्व पर अपन सुनी लेवानी एक बातचीत। अपन क्या बातचीत में शामिल हो रही छे डॉक्टर आर एस पोत, अने उनका से बात कर रही बहन प्रियंका। सुना इनका दुई की या बातचीत।
3: किसान भाई बहना, आज हमारा बीच हमारा स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रणजीत सिंह बोध, मेडिकल ऑफिसर शासकीय शहरी मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक आजाद नगर में पदस्थ है, जो आज हमारा बताएगा कि भाई टीकाकरण क्यों जरूरी है और उसको कई महत्व है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो तमारो हूँ कार्यक्रम में स्वागत करूँ। राम

0: राम राम।
1: हमारा जो नाना बालक ना है भी डॉक्टर कन जाना से घबराए, और यो जो दर्द है थोड़ी देर को रही, पर यो जो है उनका लिए एक जीवन दान,
0: जीवन दान, जीवन दान, जीवन की पूरी सुरक्षा है।
1: जी बिल्कुल। तो अपन शुरुआत यहाँ सच करा कि भाई राष्ट्रीय टीकाकरण को उद्देश्य कहीं है और यो हमारे कौन कौन से बीमारी ना से बचाए।
0: जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और राम राम। मैं डॉक्टर रंजीत सिंह बोध मेडिकल ऑफिसर के रूप में आजाद नगर डिस्पेंसरी है शासकीय गवर्नमेंट की, उसमें पदस्थ हूँ। और अब जैसे आज बात करते हैं कि टीकाकरण का उसका उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए, तो उद्देश्य में सबसे पहले जैसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम बोला जाता है इसको, इसका उद्देश्य यही रहता है कि शिशुओं और गर्भवती महिलाओं में जितने भी जैसे बहुत सारे होने वाली जानलेवा बीमारियाँ होती, अब जानलेवा बीमारी जो होती है उनके पास जैसे नाम बोलें तो पोलियो हो गया, टीबी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, काली खांसी हो गई, गलघोटू है, टिटनस है, दस्त रोग हैं, निमोनिया है, और जापानीज इंसेफ्लाइटिस एक और बीमारी, वो खसरा, रूबेला और हिब, ये इन टीकाकरण इन सारी बीमारियों से बचाव करता है। और शिशु और बाल मृत्यु दर में इसकी वजह से बहुत आशातीत कमी होती है, मतलब ये शिशु और मृत्यु जो भी बाल मृत्यु है टीका अगर जिसको लग गया तो उसमें उसमें कमी आना ही है, क्योंकि उससे टीकाकरण से बच्चे अगर प्रतिरक्षित हो गए तो उन बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उनसे बढ़ जाएगी। अब जैसे अपन गलघोटू और बात करते हैं ना, जैसे साधारण भाषा में बोलते हैं कि कुकर खांसी हो गई और वो जैसे बच्चा खूब खांसता है उसकी खांसी ठीक नहीं होती, तो ये इन सारी चीज़ों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम हम ये गवर्नमेंट जो चला रही है WHO चला रही है, तो ये इसीलिए चलाया जा रहा है।
1: और अभी अपन वर्तमान में देख ही भी रहे कि भाई पहला जो पोलियो को जी जी शिशु नामक बहुत ज्यादा मात्रा में या बीमारी भी जाती थी, पर अभी तो बहुत ज्यादा राहत है।
0: हाँ, कोई भी नहीं दिखता ना, अब देखते हैं अपन, देखने में आता है कि अपने को कोई भी बच्चा ऐसा हाथ के बल चलता हुआ या अपंग नहीं दिखता, क्योंकि ये सब सरकार के सहयोग से, अपने शासन के सहयोग से ये पोलियो पे एक तरह से अभी कंट्रोल हम लोगों ने पा लिया है।
1: और कहीं ना कहीं जागरूकता तो है हमारा जो
0: जी जी जी
1: है उनमें भी,
0: बिल्कुल।
1: हमारी जो गर्भवती महिला ना है उनका शुरुआत पर कौन कौन सा टीका लगाया जाए और कब कब लगाया जाए, एक बारा में हमारा विस्तार से बताओ।
0: जी, टीकाकरण की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले गर्भवती से शुरू करते हैं कि गर्भवती जब भी होती है, मतलब जैसे ही उसको पता चलता है कि गर्भ से है या अपन प्रथम 3 माह में, तो उसको एक TD का टीका प्रथम डोज के रूप में लगाया जाता है, हाथ के ऊपरी बाहों में लगाया जाता, तो वो उसको टिटनस बीमारी से बचाता है। उसके 1 महीने बाद फिर से वही वाला टीका उसको दोबारा दिया जाता है ताकि वो प्रतिरक्षित रहे। अगर इस बीच मान लो कोई महिला 3 साल के अंदर पुनः गर्भवती होती है तो उसको एक बूस्टर के रूप में टिटनस का टीका दिया जाता है, उसको बाद में 2 टीके लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: अच्छा अच्छा, तो ये भी हमारी जो महिला ना है उनका भी और साथ ही जो गर्भस्थ शिशु है उनका भी जो विभिन्न प्रकार की बीमारी ना है उनसे बचाए से। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो नवजात शिशु ना है उनका लिए खासतौर पर हमारी जो भाई बहना है उनका बताओ कि उनका कैसा और कब कब कौन कौन सा टीका लगाया जाए।
0: हाँ, तो सभी के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टीका की जानकारी हमें सभी को होना चाहिए। तो जैसी गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए भर्ती हुई अस्पताल में और उसको प्रसव हो गया, तो प्रसव के तुरंत बाद, जन्म के तुरंत बाद बोलेंगे, तो जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर उसको एक हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, जो पीलिया की बीमारी से बच्चे को सुरक्षित रखता है, और उसको हाथ के ऊपर लगाया जाता है। उसी समय जन्म के तुरंत बाद 15 दिन के भीतर भीतर पोलियो की दवा 2 बूंद पिलाई जाती, उसको 0 डोज बोला जाता है।
1: अच्छा।
0: और साथ में ही एक BCG का टीका भी लगाया जाता है। BCG का टीका जन्म के तुरंत बाद लगता है। BCG का टीका ऐसा है कि अगर जन्म के समय नहीं लगवाया उसे तो 1 वर्ष की उम्र तक बच्चे को कभी भी लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा डोज में अंतर हो जाता है। जी,
1: जितना माह को शिशु रहे उतना हिसाब से उसको।
0: हाँ, जन्म के समय लगाएंगे तो उसका डोज थोड़ा कम लगेगा, और जन्म के बाद मतलब 1 साल के भीतर लगाएंगे तो उसका डोज बढ़ जाता है, और ये उल्टे हाथ की ऊपरी बाह में लगता है। वो देखा भी होगा बच्चों में, छोटा सा टीका लगने के बाद ये सब पक जाता है, वो उभर जाता है, तो माँ बाप चिंतित होते हैं कि भाई क्या हो
1: बिल्कुल
0: रहा है। तो वो उस पे अगर कुछ होता भी है तो उस पे कुछ लगाना नहीं है, चिंता नहीं करना है। उसका मतलब ये होता है कि बच्चे को टीका
1: असर करे।
0: असर कर रहा है।
1: हाँ
0: अब उसके बाद बात करते हैं, ये 3 टीके तो जन्म के समय हो गए। अब 6 सप्ताह बाद, मतलब बच्चे की उम्र जब जैसे 1.5 महीने का हो जाता बच्चा, तो बच्चे को 1.5 महीने के बाद उसको 5 टीके लगाए जाते हैं। एक उसमें होता है पोलियो की दवा पिलाई जाती है इसको 2 बूंद, एक रोटा वायरस की खुराक पिलाई जाती। मतलब ये जो पिलाते हैं ये पहली खुराक पिलाती, और जन्म के
1: अच्छा
0: संबंध में देते हैं वो 0 डोज कहलाता है,
1: अच्छा
0: जीरो
1: अच्छा
0: खुराक।
1: अच्छा
0: तो ये
1: अच्छा
0: 1.5 महीने में पहली
1: पहली
0: खुराक,
1: खुराक।
0: हाँ, पोलियो की 2 बूंद, रोटा वायरस की 5 बूंद, ये मुंह से दी जाती है। उसके बाद एक इंजेक्शन लगता है FIPV, वो दाहिनी बाएं में लगता है, और फिर PCV का जो निमोनिया से बचाता है
1: अच्छा
0: वो दिया
1: अच्छा
0: जाता है, और उसी के साथ एक पेंटावेलेंट जिसके अंदर की 5 इंजेक्शन होते हैं, 5 बीमारियों से सुरक्षा करता बच्चे की, वो दिया जाता है।
1: अच्छा। पहला ये उसको कि अलग अलग इंजेक्शन होता होगा, अब
0: जी
1: इनका
0: हाँ, अब वो
1: सबका मिलाई
0: एक
1: दिया,
0: साथ पांच कर एक ही उसमें
1: दवाई
0: दवा
1: मिलाई
0: में
1: दिया।
0: हम जाते। अब इसी पे नहीं रुकना अपनों को, 1.5 महीने के बाद आता 2.5 महीने। 2.5 महीने बोल रहे हैं अपन या 10 सप्ताह बोलते हैं, 10 हफ्ते में 2.5 महीने की उम्र में बच्चे को पोलियो के फिर से 2 बूंद की दवा पिलाई जाती है, उसको दूसरी खुराक बोलते हैं, फिर रोटा वायरस की 5 बूंद की मुंह से खुराक पिलाई जाती है, उसको सेकंड डोज बोलते हैं, फिर ये पांचवा 5 वैक्सीन वाला टीका पेंटावेलेंट उसको फिर से लगाया जाता है 2.5 महीने की उम्र में। टीकाकरण अपने गांव में या शहर में कोई भी आंगनवाड़ी सेंटर में या कोई शासकीय अस्पताल में नियमित रूप से किया जाता है, प्रति मंगलवार और प्रति शुक्रवार को किया जाता है। फिर 3.5 महीने की उम्र में अपन 14 सप्ताह का बोलेंगे, तो पुनः उसको पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है मुंह के द्वारा, रोटा वायरस की 5 बूंद पिलाई जाती है, FIPV का दूसरी जो डोज रहती है वो बांह में लगाई जाती है, और अगर जानकारी किसी को लेना है तो शासकीय अस्पतालों में टीकाकरण चार्ट रहता है, वहां से उसकी फोटो लेके आ सकते हैं, और जब भी टीकाकरण करने जाएं तो नर्स बहन जी से या NM बहन जी से उसको पूछें कि कौन सा टीका लगाया जा रहा है और कौन सी बीमारी से बचाएगा इसको, और अब आज लगा लिया तो उसके बाद हमें कब आना है।
1: तो अगर जैसे टीकाकरण को जैसे अपन महीना के हिसाब से कि चलो 1.5 महीना को 2.5 महीना को, लेकिन उना समय मान लो समय हो गया कि हाँ अब अपना टीको लगवाना है, अगर बच्चों बीमार है
0: जी
1: तो कहीं उना समय जानो सही रहे, या फिर अपना थोड़ा सा इंतजार करें या जानकारी लें फिर अपन जावा।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात है मैडम। इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे को बुखार आ रहा है या कोई बच्चे को कुछ गंभीर बीमारी हो रही है तो टीकाकरण को थोड़ा सा टाल सकते हैं।
1: बाद
0: हाँ
1: में अपन जा सकते
0: हाँ
1: हैं।
0: उसको टाल सकते हैं, 1 आध महीने में भी टाल सकते हैं, तो कोई बुराई नहीं। और हल्की फुल्की बीमारी जैसे सर्दी वर्दी है, दस्त भी लग रहे हैं, तो उसमें लगा सकते हैं। बुखार में नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है टीके की वजह से उसको बुखार
1: और
0: आने की
1: बढ़
0: संभावना भी
1: जाए।
0: रहती है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। अब अपन 3.5 के बाद सीधे जाते हैं 9 महीने की उम्र में। बच्चा अगर 9 महीने का होता है तो उसको विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती जो कि उसकी आंखों की रक्षा करती है, उसकी रोशनी की रक्षा करती है, और खसरा खसरा का टीका और एक MR जिसको MR1 बोला जाता है वो लगाया जाता है, जो कि खसरे की बीमारी से बचाता है। खसरे की बीमारी वो साधारण भाषा में छोटी माता या वो ऐसा बोला जाता
1: हाँ
0: है
1: गाम नामक।
0: गांव में, तो उसको लगाना जरूरी है। और उसी के साथ साथ एक निमोनिया का वैक्सीन बूस्टर के रूप में दिया जाता है, वो भी 9 महीने की उम्र में। और अब एक नई बीमारी जो बाहर से होके आई है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, उसका भी टीका 9 महीने की उम्र में बच्चों को दिया जाता है। तो ये टीके ज्यादा हैं मगर ज्यादा सुरक्षा ज्यादा बीमारियों से करते हैं, तो इसको ज्यादा की मात्रा देख के डरना नहीं है,
1: हाँ
0: हम लोग
1: हाँ
0: समय पर टीकाकरण लगाना है।
1: बिल्कुल।
0: और उसी के साथ साथ एक FIVP की जो भी चर्चा करी थी अपनों ने, उसकी तीसरी खुराक दी जाती है। अब यही नहीं खत्म होता है, बच्चों 24 महीने का जो शेड्यूल है उसके अंदर फिर से विटामिन ए
1: 16 से 24 महीना।
0: महीना, हाँ 16 से 24 महीना, उसमें विटामिन ए की खुराक फिर से पिलाई जाती है। अब जैसे 9 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है तो विटामिन ए की खुराक की मात्रा भी बढ़ जाती है। पोलियो की फिर बूस्टर के रूप में 2 बूंद उसको मुंह के द्वारा पिलाया जाता है, और खसरा जैसे 9 महीने में लगाता तो इसका सेकंड वाला डोज 16 माह से 24 माह के बीच में दिया जाता है। और इसी के साथ साथ एक DPT का टीका और दिया जाता है, और एक जापानीज इंसेफ्लाइटिस का टीका दूसरी खुराक के रूप में दिया जाता है। तो ये 16 से 24 महीने तक के हो गए, 5 से 6 वर्ष की उम्र हो जाए बच्चे की, तो उसको डीपी का टीका लगवाने जाना है, वो दूसरा बूस्टर कहलाता है।

0: और उसके बाद फिर 10 वर्ष की उम्र हो जाए तो उसको टीडी का टीका लगता है, और 16 वर्ष की उम्र में टीडी का दूसरी खुराक मिलती। तो बच्चे जन्म से लेके तो देखा जाए तो 16 वर्ष की उम्र तक के हमें टीके लगाना बिल्कुल बहुत ज़रूरी रहता है,
1: ताकि बच्चा की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती रहे, मजबूत
0: बढ़ती रहे,
1: रहे, और बीमारी को संक्रमण जल्दी नहीं फैला,
0: जल्दी नहीं
1: अगर
0: फैले।
1: कहीं ऐसे होनो भी रहे तो कम ही उतरी जाए। इका अलावा भी और कोई टीको लगा
0: जी जी
1: सकता है
0: जी
1: अपन?
0: बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा भी HPV वैक्सीन एक नया वैक्सीन है, नया तो नहीं है, बहुत पुराना है वो। अभी देखा होगा आपने सभी ने कि अभी पिछले 2-3 महीने में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के नाम से वैक्सीन वैक्सीन आया, जो 14 साल से 15 साल की लड़कियों को दिया जा रहा है, और वो उनको गर्भाशय की जो ग्रीवा का कैंसर होता है, जो कि बहुत कॉमन कैंसर है,
1: हाँ, आजकल सुनना में भी ज्यादा है।
0: उससे बचाता है वो। तो उससे डरना नहीं है, उसको अपने बच्चियों को वो लगवाने के लिए बिल्कुल प्रेरित करना है, और जहाँ भी टीकाकरण होता है वहाँ, और गत महीने में स्कूलों में और सभी आंगनवाड़ी में स्वास्थ्य केंद्र में बच्चियों को टीका लगाए गए हैं।
1: अच्छा, तो एक मास हो कहीं का जैसे दूसरा जो टीका है उनमें बुखार उखार आए, तो यो जो बालिका ना के लिए जो तुमने टीको बताया वो
0: जी
1: भी कहीं ऐसा बुखार हो, कोई ऐसा लक्षण रही टीका लगाने का बाद?
0: कुछ कुछ बीमार, मतलब कुछ कुछ टीके हैं जो उससे बुखार आ सकता है, तो बुखार में वो जो भी नर्स बहन जी या NM बहन जी हैं तो वो वहाँ पैरासीटामोल की गोली देती हैं, वो बच्चे को जिस हिसाब से बच्चे की उम्र है वो डोज बताती, कितनी गोली कब देना है क्या करना, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है।
1: बिल्कुल। टीकाकरण काले भी कोई विशेष दिन है जिन दिन हम अपना भाई बहना जो जागरूक करने का लिए कोई शासन की तरफ से कार्यक्रम रखियो जाए?
0: देखिए अभी इतना बड़ा अभियान अभी सरकार द्वारा चलाएगा 28 जून से 30 जून तक पल्स पोलियो का अभियान, जो कि अपना प्रति वर्ष अपने वहाँ मनाया जाता है, वो भी इसलिए अभियान चलाया जाता है कि क्योंकि अपने आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर इनके पोलियो के एक्टिव केस मिलते हैं, क्योंकि अपने भारत में तो एक तरीके से पोलियो मुक्त हो चुका है भारत, मगर यह माइग्रेशन, जैसे माइग्रेशन में अपन बात करें तो जैसे कि अपने यहाँ के इंडिया के लोग, भारत के लोग दूसरे कंट्री में या दूसरे देश में जाते हैं, आसपास जो भी करीब देश हैं वहाँ के लोग अपने वहाँ पे आते हैं, तो वो वायरस का माइग्रेशन या वायरस एक दूसरे से दूसरे फैलता है, तो वो वायरस को यहाँ नहीं छोड़े, इसलिए वो अभी तक टीकाकरण किया जा रहा है इसका, पोलियो के रूप में 2 बूंद बच्चों को दवा पिलाई जाती है।
1: तो डॉक्टर रणजीत सिंह बूथ, मेडिकल अफसर, शासकीय शहरी मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, बहुत अच्छी जानकारी। हमारी जो बेटना है, हमारा जो शिशु ना है, उनका टीकाकरण का बारे में चर्चा करी, और डॉक्टर साहब तब ना इनका महत्व का भी समझा और विस्तार से हमारा हर एक टीका का बारे में भी जानकारी दी। निश्चित रूप से जो हमारी भाई बहना है कार्यक्रम का सुनी दी है, दूसरा जो श्रोता भाईना है भी इससे जरूर लाभ लेगा और समय पर टीकाकरण करवाएगा। तो डॉक्टर साहब, हमारा कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: तो अभी संदेश का पहला अपन ने सुनियो टीकाकरण का महत्व, अपन का जानकारी दे रहा था डॉक्टर RS बोध, अने इनका से बात करी थी बहन प्रियंका। और सही बात छे, हारी बीमारी नहीं होए ओको सीधो संबंध टीकाकरण से तो छे, लेकिन खान पान से भी छे। अगर अपन अच्छो खान पान रखांगा तो हारी बीमारी से दूर रहांगा। और अच्छो खान पान में छे कि पौष्टिक होए और अपना शरीर का लेन सुपाच्य हो, और ओका में मोटो अनाज एक असो छे जो फायदा छे, गुणकारी छे। और ओका में भी मोटा अनाज में बतावा मक्का हुई, ज्वार हुई, बाजरा हुई, रागी हुई, असा अन्न छे। आज रागी की जानकारी देवान कि रागी को जो छे ओका नाचनी बोलन अन वो बड़ो अच्छो छे, ओका आप दलिया का रूप में भी लई सकोज, अन ओका पीसी नना आटा की रोटी बने न भी ले सकोज, अना कई तरीका से उको उपयोग करी सको। जो नाचनी छे या रागी छे वो हड्डी नकलन बहुत अच्छी छे, पाचन कलन बहुत अच्छी रहेगा, खून की कमी अगर हुई जाए तो ओखा दूर करज, वजन बढ़ी जाए तो ओखा भी नियंत्रण करज, शक्कर को नियंत्रण जो शुगर की बीमारी जैसे कमाज ओका नियंत्रण कलन भी यो बहुत अच्छो छे। एकांदर एमिनो एसिड जो रहे एक ही वजह से नींद भी बहुत अच्छी आवाज, और नींद अच्छी रहेगा तो मन शांत रहेगा, तनाव रहित रहेगा। इकालेन रागी शरीर को जो मोटो अनाज छे ओखा खानु चाहिए। बात तो अरु होती रहेगा सुना ने पण यो प्यारो सो लोकगीत जख गायलो छे स्वाति उखले अन उनकी मंडली ना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: वाह, अभी अपन स्वाति उखले बहन को गायलो यो प्यारो सो लोकगीत सुनियो। और बिल्कुल सही बात है कि मोती वेरावा अपन खेत में कहीं ऊंच नीच हुई जाए या कोई सलाह चाहते हो तो या सलाह विशिष्ट सलाह है। अने या छे कि मिर्ची में जो रोपाई कर दी जो का 15 दिन हो गए छे तो काम नीम को तेल 3000 ppm को 3 ml प्रति लीटर का हिसाब से पानी में घोली नको छिड़काव करना। अन जहाँ पर सोयाबीन ले लिए छे तो वहाँ पर 10 से 15 दिन की सोयाबीन हुई गई तो यो सलाह छे भाई उनका नकल इनकी खरपतवार निकाल देवा, हाथ से निंदाई गुड़ाई कर लेवा, डोरा कोलपा चल को उपयोग करा अन अपनो खरपतवार निकाला। मक्का की जहाँ तक बात छे तो वहाँ 1 महीना की अगर फसल हुई गई छे तुम्हारी तो 20 kg यूरिया का प्रति एकड़ की दर से पौधा नका जड़ का जो क्षेत्र छे ने उनका नम डाला अन माटी से ढकी देवा। कपास की जहाँ तक बात आयल छे तो भाई असो पानी की खेच जहाँ होवेल छे जिना क्षेत्र नम वहाँ सूखने की समस्या छे तो कपास की फसल में सूखने का बाद बारिश होना पर अगर या सिंचाई करना पर भी पौधा मुरझाना की समस्या आई रहल छे तो एका लक्षण देखी रहा हो तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2.5 ग्राम की या फिर कार्बन डाइजिम की 1 ग्राम का न ओका साथ में 20 ग्राम यूरिया या हेक्साक्लोनोजोल की 2 ml की प्रति लीटर पानी में घोल बने ना जड़ न कपास देनु चाहिए। तो भाई यह तो आज अपनी विशेष सलाह छे अपना जो खेत किसान भाई बहन छे उनका नकाले। अन जहाँ तक अपन ने बात करी थी कि अपना मोटा अनाज की तो क्यों नहीं अपन आज बड़ नख बतावा व्यंजन में कि रागी का तम डोसा कसा बनाई सको। तो सामग्री लिखी लो, रागी को आटो 1 कप, चावल 1/2 कप, अन खट्टो जो दही छे वो 1/2 कप, पानी लगभग 2 से 3 कप, नमक अपना स्वाद का अनुसार, घी तेल न ओका साथ में ओका में तड़को लगाना कर लेन, हरी मिर्ची हुई, बारीक कटेला प्याज हुआ, थोड़ो सो जीरो हुयो, यो रहेगा। अब घोल बनाना कर लेन बतावांगा कि सबसे पहले तो एक बर्तन लेवा अन ओका अंदर रागी को जो आटो छे ओका अपन घोली लेवा। हाँ, चावल को आटो भी 1 कप रहोगा तो ज़्यादा अच्छो रहेगा तो वो भी 2 कप मिला ही लेवा, 1 कप रागी ना 2 कप चावल को आटो। ओका में दही मिलाई ना ना सब न का ओका में नमक मिर्ची जीरो यो भी सब मिलाई लेवा। 2 तरीका से मिले सको जी, एक तो काचो हो तो कच्चो भी ओका में नहाकी दो, नहीं तो थोड़ो सो तड़को लगाई ना ना फिर ओका में नहाकोगा तो वो भी घणो अच्छो रहेगा। अब धीरे धीरे पानी डालता जावा अने एक पतलो घोल बनाई लेवा। 10 से 15 मिनट तक न घोल कर रखा, आटा को पानी सोख ही जाए उसका बाद तवो गरम रखा आना उना तवा गरम का मध्यम आँच रखा आना थोड़ो सो तेल ओका पर नहाकी न अपनो कागज हुयो ओका से या कपड़ो हुयो ओका से न तवा का पोची देवा ताकि अच्छो सो तेल ओका अंदर ही जी भी जाए। आमो तवो थोड़ो सो गरम होना लग तो उना तवा पर छीटा देवा आना उना तवा गरम कर ठंडो करा आना ओका बाद में बड़ी कटोरी हुई या अपनी कड़छी हुई ओका से जो अपनो घोल बनेलो छे ओका से चम्मच से नाकता जावांगा आने गोल गोल गोल करता जावा अंदर से बाहर की तरफ तो एक अच्छो गोल अपनो डोसो बनी जाएगा। एक तम धीरे धीरे सेकोगा।

कार्यक्रम में आज मारा पास मंडी का भाव भी आई गेल छे। ये मंडी का भाव छे लक्ष्मीबाई नगर मुख्य मंडी प्रांगण इंदौर का। एका में आज अपन बतावांगा सोयाबीन की आवक हुई 2538, न्यूनतम भाव रहो 3600 से लगीने 7330, मॉडल भाव रहो 7265। गेहूं की आवक रुई 1766, न्यूनतम भाव रहो 2100, अधिकतम भाव रहो 2871, मॉडल भाव रहा 2871। चना की 34 क्विंटल आवक हुई, भाव रहो 5950 से 6520 अने मॉडल भाव रहो 6200। मटर की 1 क्विंटल आवक रही 3300 एको भाव रहो, मॉडल भाव भी 3300। मूंग की 4 क्विंटल आवक रही 6590 एको एकज भाव रहो, मॉडल भाव रहो 6590। सातज मारा पास से संयोगितागंज मंडी का भाव भी आयल छे, वो बते देवा। मटर की 3 क्विंटल आवक रही अन भाव रहो 2905, एकज भाव रहो, मॉडल भाव भी 2905 को रहो। चना की 97 क्विंटल आवक हुई अन भाव रहो 2000 से लगी 7200, मॉडल भाव रहा 5990। डॉलर चना की 1861 क्विंटल आवक रही, भाव रहो 3300 से लगी 9400, मॉडल भाव रहो 8700। गेहूं की आवक रही 1260, 2100 से लगी 2895 अन मॉडल भाव रहो 2510। तुवर की 13 क्विंटल आवक रही, भाव रहो 6610 से लगे देना 7295, भाव रहा 6610। सरसों की 6 क्विंटल आवक रही 6990 से लगे देना 8030 अने मॉडल भाव रहो 6990। सोयाबीन की आवक रही 757, भाव रहो 2035 से लगे देना 7290, भाव मॉडल भाव रहो 6360। मूंग की 57 क्विंटल आवक रही, भाव रहो 3405 लगी देना 7000 अने मॉडल भाव बैठो जो को 3405। तो भाई ये तो रहा आज अपना जो मंडी का भाव आया था वो कार्यक्रम को। समय अपन का घड़ी कही रही कि आव तो जाजम का अवेनो का वक्त हुयो, पर हम योज कवांगा बैंड न का खास करी ना हमारो यो ग्राम लक्ष्मी को कार्यक्रम कसो लगज, एक हम वो कौन सा लोकगीत सुननु चाहज, और उन कौन सी ऐसी बात छे जो उनका अनुभव छे जो हमका लिखी न भेजेगा, तो हम उनका अनुभव और दूसरा नसे बैठने से भी साझा करांगा। एक हम पतो बते दे, अपना पतो छे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी केंद्र मालवास इंदौर। इन्हीं आशा के साथ कि हमका जरूर से कार्य चिट्ठी लिखा गा, हमका दियो विदा कवा सभी बैठने का राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम लक्ष्मी या आकाशवाणी के इंदौर केंद्र। ही हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। प्रतीक्षा करें।
1: अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए, ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मॉनसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। श्री तेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर

लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपने सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केन्द्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए न तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और न ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क), भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है।

अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही तीन बार बाधित होने के बाद अपराहन 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि यह प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में यह संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें, अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा, विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है, यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख

0: रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले चार दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है। जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है। बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन
1: 15 मिनट हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और कूटनीतिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
3: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उत्तर मैसेडोनिया यात्रा को भारत की विदेश नीति और यूरोप के साथ बढ़ते संबंधों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसी संदर्भ में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: प्रोफेसर मिश्रा, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम देखें तो ये जो राजनयिक संबंध है उत्तर मैसेडोनिया और भारत के बीच, ये काफी वर्ष पहले ही स्थापित हो गया था और उसके बाद ये भारत के किसी राष्ट्रपति की नॉर्थ मैसेडोनिया की पहली ऐतिहासिक राज यात्रा है। ऐसे में वहाँ की संसद में दिया गया जो राष्ट्रपति का संबोधन है या फिर हम बोले कि ये जो दोहरा है, ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और संसदीय कूटनीति को एक नई ऊंचाई देने में कितना मील का पत्थर साबित हो सकता है।
4: देखिए, उत्तरी मैसेडोनिया एक लोकतांत्रिक देश है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाना एक तरह से मुझे लगता है कि नेचुरल है। ये एक नैसर्गिक और तार्किक परिणति है कि दोनों लोकतांत्रिक देश मिलकर साथ काम करें। भारत का जो आईटेक प्रोग्राम है, जिसमें हम दूसरे अपने तमाम मित्र देशों के सिविल सर्वेंट्स की, वहाँ के ऑफिशियल्स की जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उसके तहत भी हमने उत्तरी मैसेडोनिया के पार्लियामेंट एम्प्लॉइज को लोकसभा में ट्रेनिंग दी थी। तो दोनों देशों के बीच में लोकतंत्र को कैसे सुदृढ़ करें और लोकतांत्रिक जो मूल्य है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको हम कैसे सुदृढ़ करें, इस लिहाज से मुझे लगता है न सिर्फ राष्ट्रपति मुर्मू का वहां पर संबोधन, बल्कि दोनों देशों के बीच में लोकतंत्र को लेकर के बात करना और आपस में इसको लेकर एक सॉलिडारिटी होना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही सॉलिडारिटी है जो भारत को ग्लोबल साउथ का एक मुखिया बनाती है। भारत ने ग्लोबल साउथ के एक नेता के तौर पर भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह परिलक्षित किया है कि ग्लोबल साउथ का मतलब हमारे लिए सिर्फ यही नहीं है कि एशिया और अफ्रीका के विकासशील देश हमारे साथ हैं, बल्कि यूरोप के भी जो छोटे देश हैं, जो बहुत

0: बड़ी आर्थिक महाशक्ति नहीं है, उनको भी हम साथ लाएं। तो इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि
1: जी
0: लोकतांत्रिक वैल्यू और ग्लोबल साउथ की वैल्यूज दोनों को साथ लाने की कोशिश की जा रही है।
1: हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अभी उत्तर मैसेडोनिया यात्रा में हैं, तो ये भारत की जो विदेश नीति है और यूरोप के साथ जो भारत के बढ़ते संबंध हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? और ये जो यात्रा है हमारे राष्ट्रपति की, वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है?
0: देखिए, इसमें तीन पहलू हैं। एक तो सबसे बड़ा पहलू ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा मैसेडोनिया, मोल्डोवा, जो बाल्कन के जो देश हैं, उनकी यात्रा के साथ साथ हमें ये देखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री भी अभी विदेशी दौरों पर हैं, और मोटे तौर पर भारतीय विदेश नीति में इस बात पर बहुत अच्छी तरह जोर दिया जा रहा है कि आज यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंधों को नए स्तर पर पहुंचाना है और उनको एक नया आयाम देना है। इसमें भारत ने न सिर्फ यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत किया, बल्कि बाल्कन और पूर्वी यूरोप के जो छोटे देश हैं उनको भी साथ लाने की कोशिश है। तो एक बहुत ही इंक्लूसिव यूरोप पॉलिसी हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि भारतीय विदेश नीति में और भारत के जो नीति निर्धारक हैं उनको ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि जैसे भारत की आर्थिक शक्ति और उसकी जो डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस है वो बढ़ रही है, हमें दुनिया के तमाम देशों के साथ न सिर्फ कूटनीतिक तौर पर बल्कि उनके साथ आर्थिक और तकनीक के स्तर पर सहयोग को आगे बढ़ाना होगा। इस लिहाज से मुझे लगता है उत्तरी मैसेडोनिया की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तरी मैसेडोनिया एक छोटा सा देश नहीं है। उत्तरी मैसेडोनिया वो देश है जो युगोस्लाविया से अलग हुआ था, और जब एक स्वतंत्र देश बना तो भारत ने 39 और देशों के साथ मिलकर उत्तरी मैसेडोनिया को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित करने के लिए और उसे एक संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के तौर पर जगह देने के लिए पुरजोर उसकी वकालत की थी और उत्तरी मैसेडोनिया एक देश बना। भारत के साथ उत्तरी मैसेडोनिया के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जो क्रिश्चियन है एक बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है। भारत जैसे मल्टीकल्चरल देश के लिए ये तथ्य कि मदर टेरेसा का जन्म उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था, ये अपने आप में दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंधों के साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट में बहुत बड़ी भूमिका ये अदा करता है। और दोनों देशों के बीच में संबंध इसी तौर पर जब अतीत में जब युगोस्लाविया एक देश था तब भी, और जब उत्तरी मैसेडोनिया एक देश बना तब भी, इन दोनों देशों के बीच में संपर्क तो था लेकिन उसे कूटनीतिक तौर पर, उसे राजनयिक तौर पर एक सही दिशा देना बहुत जरूरी हो गया था। और ये मुझे लगता है राष्ट्रपति मुर्मू की ये जो यात्रा है ये उसी दिशा में उठाया हुआ कदम है कि दोनों देशों को अब पिछली जो हमारी जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाते हुए आपसी व्यापार और सहयोग को, राजनीतिक कूटनीतिक सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, उस दिशा में हम कैसे काम करें, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा की जा रही है।
1: जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो रिश्ते हैं ये और मजबूत होंगे, और काफी क्षेत्र है जिसमें भारत और उत्तर मैसेडोनिया का सहयोग बहुत जरूरी है। तो आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये भी कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई मॉडल को साझा करने की एक बहुत बड़ी जरूरत है। इससे उत्तर मैसेडोनिया और भारत दोनों को किस प्रकार के व्यवहारिक लाभ मिल सकते हैं?
0: देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्तरी मैसेडोनिया को जोड़ने का मतलब, और हम जानते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के देश पहले से ही इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई से एक दूसरे को जोड़ना है। उत्तरी मैसेडोनिया का एक खास इसकी एक भूमिका है। तमिल जो हमारा सिनेमा है उसमें मरसूल नाम की एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने भारतीयों को ये दिखाया कि उत्तरी मैसेडोनिया कितना खूबसूरत देश है, स्कोपे जो उनकी राजधानी है वो कितनी खूबसूरत है। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में पहले तो जो सैलानी उत्तरी मैसेडोनिया जाना चाहते हैं या भारत आना चाहते हैं उनके लिए जब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई जैसी सुविधाएं होंगी तो उनके लिए एक दूसरे के देश में आना जाना सरल होगा। दूसरी बात यह है कि ये भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच में व्यापार को लेकर जो दोनों देशों में समझौता हुआ है कि आज जो हम 37 मिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर खड़े हैं इसे कैसे दुगना किया जाए, और उसके लिए जरूरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, और उस क्षेत्र में मुझे लगता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई की बहुत बड़ी भूमिका है। साथ ही साथ ये जो हम भारत और उसके जो विदेश नीति के निर्धारक हैं वो ये जो बात सोचते हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ जब हम अपने संबंधों को और अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को जब हम एक तरह से अलाइन कर रहे हैं तो यूरोप के बाकी देश उसमें छूटे नहीं, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब यूरोप के तमाम जितने भी देश हैं उन सभी की हमें अपने आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और आर्थिक

0: और व्यापारिक सहयोग में उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई मुझे लगता है कि समय से आगे की सोच है। उत्तरी मैसेडोनिया के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता है और साथ ही साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने के लिए भी इसकी बहुत जरूरत है।
1: इस वार्ता के दौरान हमने ये भी सुना कि कृषि हो या फिर खाद्य प्रसंस्करण हो या कपड़ा उद्योग और नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेखांकित किया। कृषि तकनीक और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में यह तकनीकी साझेदारी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को कितना संबल प्रदान कर सकती है?
0: जी, आपने दो बातें कही। पहली तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है या नई जो तकनीक के क्षेत्र है, इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच में मोटे तौर पर यह समझौता हो गया है कि उत्तरी मैसेडोनिया भारत का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसकी सदस्यता लेगा और जो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस CDRI है उसमें भी उत्तरी मैसेडोनिया एक सदस्य बनेगा। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें भारत ने न सिर्फ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक पहल की है जिसमें दुनिया के तमाम देश शामिल हो रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण का। भारत एक कृषि प्रधान देश अभी भी है और क्योंकि भारत की अधिकांश जनता अभी भी कृषि क्षेत्र में है तो हमारे लिए कृषि क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ सहयोग करना और उसमें नई तकनीक को साझा करना, नई तकनीक दूसरे देशों से सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। फूड प्रोसेसिंग का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत के छोटे और मझोले किसान जो फूड प्रोसेसिंग या एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग में है उनके लिए फूड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और इनका तमाम जो निर्यात है उसके क्षेत्र में शायद मुझे लगता है नॉर्थ मैसेडोनिया से भारतीय किसान कुछ सीख सकते हैं।
1: भारत सरकार ने नॉर्थ मैसेडोनिया के नागरिकों के लिए आईटेक यानी कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण स्लॉट्स की संख्या को दोगुना कर दिया। क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर केंद्रित यह फैसला आपके हिसाब से प्रोफेसर मिश्रा दोनों देशों के बीच सॉफ्ट पावर और पीपल टू पीपल टाइज को कितना बढ़ावा दे पाएगा?
0: देखिए श्रेया जी, आईटेक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत भारत दुनिया के तमाम जो विकासशील देश हैं उनके लिए खासतौर पर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, उनका क्षमता निर्माण करता है और उनको ये जो अत्याधुनिक जो तकनीकें हैं प्रशासन में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज को डील करने में और जो मोटे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी कैसे अपने हमारे मित्र देशों के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वहां के ऑफिसर्स हैं वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और कटिंग एज इंफॉर्मेशन पा सकें। तो इस क्षेत्र में उत्तरी मैसेडोनिया के पास हमारे हर आईटेक प्रोग्राम में 2 सीटें हुआ करती थी जिसे बढ़ाकर अब 4 किया जाएगा और इसमें खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्लॉट भी उत्तरी मैसेडोनिया को दिए जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे दोनों देशों के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वहां के जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी एक दूसरे को जान सकेंगे। उन उत्तरी मैसेडोनिया के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनके लिए भी भारत को समझना मुझे लगता है ज्यादा आसान होगा। एक दोनों देशों के बीच में ब्यूरोक्रेसी के बीच में जो परस्पर जो दिलचस्पी बढ़ेगी मुझे लगता है कि उससे भी पीपल टू पीपल कनेक्ट आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए मुझे लगता है ये एक इनेबलर का काम करता है और उत्तरी मैसेडोनिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये एक इनेबलर का काम करेगा।
1: जी, तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये होगा कि जो राष्ट्रपति की यात्रा मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 स्तरीय राजकीय यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पूर्वी यूरोप के इन प्रमुख राष्ट्रों के साथ भारत का जो यह सक्रिय जुड़ाव है तो ये भारतीय यूरोपीय संघ के समग्र संबंधों को किस प्रकार से एक सकारात्मक और नई दिशा दे रहा है?
0: देखिए, उत्तरी मैसेडोनिया ये चाहता है कि वो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ले और राष्ट्रपति की जो ये 3 देशों की यात्रा है, बाल्कन देशों की और जिसे हम बड़े तौर पर आज उत्तरी यूरोप भी कहते हैं, उत्तरी यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंधों को एक नया आयाम, एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए मुझे लगता है राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जैसा कि हम जानते हैं आर्थिक तौर पर, सामाजिक, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, कूटनीतिक, रक्षा, तमाम क्षेत्रों में संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं लेकिन भारत की ये सोच है कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन के या यूरोपियन संघ के देशों के साथ ही भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंध भारत और यूरोप के संबंधों का एक सिर्फ हिस्सा है। अगर हम यूरोप के तमाम देशों को जो यूरोपियन संघ के सदस्य नहीं है उनको भी अगर हम अपनी यूरोपियन जो हमारी नीति है उसमें जोड़ेंगे तो न सिर्फ भारत के लिए व्यापार के तौर पर व्यापार को बढ़ाने के लिए

0: या राजनीतिक संबंधों के लिए या कूटनीतिक संबंधों के लिए, बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होगी। तो मुझे लगता है भारत की जो यूरोप के संदर्भ में जो नीति है वो यही है कि हम यूरोपियन यूनियन पर अपनी यूरोप नीति को समाप्त नहीं करेंगे, हम पूर्वी यूरोप के देशों में भी जाएंगे, हम दक्षिणी यूरोप के तमाम देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम स्कैंडिनेविया के देशों के साथ भी, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार जब यात्रा की थी 5 देशों की, तो हमने ये देखा था कि वहां भी ये स्पष्ट था कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे संबंध सिर्फ हमारी यूरोप नीति का सिर्फ एक हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन भारत की यूरोप नीति को परिभाषित नहीं करता है। तो साफ तौर पर पूर्वी यूरोप की ये यात्रा यूरोप को एक इंक्लूसिव चेहरा देती है और एक हमारी जो इंक्लूसिव नीति है कि हम बड़े और छोटे देश के बीच में उसकी आर्थिक शक्ति को देखकर कोई उनके बीच में कोई भेद नहीं करते हैं, हम सभी देशों को, बड़े हों या छोटे हों, उनको उनको एक समान नजरिए से देखते हैं और सभी मित्र देशों को हम अपने साथ रखना चाहते हैं।
1: जी प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आज के सुर्खियों में कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े और हमें भारत और उत्तर मैसिडोनिया के बीच जो ये व्यापार, प्रौद्योगिकी और कूटनीतिक संबंधों के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत और उत्तर मैसिडोनिया के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और कूटनीतिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विधानसभा समीक्षा आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
3: विधानसभा समीक्षा, आलेख वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर का है और वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।
4: प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा, आलेख रमेश ठाकुर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन खूब हंगामा हुआ। राज्य विधानसभा में आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अनुपस्थिति में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह विधेयक वर्ष 2019 से प्रदेश में लागू है, लेकिन अब इसे केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85, 151, 296 में समझौते का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धारा 151 और 296 के अपराधों में आरोपी और फरियादी दोनों पक्ष न्यायालय के समक्ष आपस में समझौता कर सकेंगे। इसी तरह धारा 85 में भी पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रकरणों में महिला को समझौते का अवसर मिलेगा, लेकिन इन प्रकरणों में प्रकरण दर्ज होने की स्थिति से 6 माह बीतने और न्यायालय के समाधान होने पर ही समझौता हो सकेगा। ये प्रावधान इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी स्त्री के पति या उसके रिश्तेदारों के दबाव में ये समझौता नहीं किया जाए। महिला यदि स्वेच्छा से समझौते के लिए सहमति देती है तब न्यायालय उस पर विचार करेगा और उसके बाद ही समझौते को मंजूरी मिल सकेगी। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा प्रस्तुत मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने भारी आपत्ति व्यक्त की। उनका कहना था कि विधेयक में संशोधन के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों को मनमानी करने का अवसर दिया जा रहा है। कांग्रेस के महेश परमार, झूमा सोलंकी, हीरालाल अलावा, प्रताप ग्रेवाल और कैलाश कुशवाहा का आरोप था कि विधेयक में आवश्यक भूमि की अनिवार्यता में छूट दिए जाने से छोटे छोटे स्थानों पर दो दो कमरों में निजी विश्वविद्यालय संचालित होने लगेंगे। भाजपा के डॉ. चिंतामणि मालवीय, उमाकांत शर्मा और माधव सिंह ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए निजी विश्वविद्यालयों को आगे आने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास संसाधनों की कमी के चलते निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी विपक्षी सदस्यों को आश्वस्त किया कि निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दिए जाने से प्रदेश में छात्रों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। विपक्षी सदस्यों की आपत्ति के बीच विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। कोरम के अभाव में आज सदन की कार्यवाही 5 मिनट विलंब से प्रारंभ हुई। सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के विधायक दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज सदन में बांह पर काली पट्टी बांधकर आए। सदन में उन्होंने इस मुद्दे पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी ये मांग कहते हुए नामंजूर कर दी कि समय सीमा में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाने से उस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। विपक्षी सदस्यों के भारी शोर शराबे

0: बीच सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं प्रश्नकाल में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह अनुपस्थित रहे, उनकी जगह मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब दिया। कांग्रेस के सुनील उइके ने पूछा कि क्या शिक्षक ई अटेंडेंस व्यवस्था से नाराज हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से अधिकांश शिक्षक अब समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस के डॉ हीरालाल अलावा ने अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अंतरण का सवाल उठाया, जिस पर सदन में देर तक सवाल जवाब चलता रहा। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के जवाबों पर सदन में कई बार ठहाके भी लगे। राजस्व मंत्री ने डॉ हीरालाल अलावा और मंदसौर के कांग्रेस विधायक विपिन जैन को आश्वासन दिया कि उठाए गए मामलों की जांच करवाई जाएगी। सदन में आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और कांग्रेस के बाला बच्चन के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर संबंधित विभाग के मंत्रियों ने आवश्यक कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने उन गांवों को प्राथमिकता दी है जहां पंचायत भवन और सामुदायिक भवन नहीं है। सरकार पहले ऐसे स्थानों पर आवश्यक भवनों का निर्माण कराएगी ताकि ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसी दौरान विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य पंचायत व्यवस्था को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाना है। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज से। नीरज की शब्द रचना, एस डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम शर्मिली।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में योगेश की शब्द रचना, सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम मंजिल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आइए आपको एक सूचना दे दें, इस गुरुवार दिनांक 23 जुलाई यानी कल सवेरे 10:32 से 11 बजे तक होने वाले सजी फोरिन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बारिश के दिनों में होने वाली बीमारियां और बचाव। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर विक्रम बलवानी से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ोन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें, गुरुवार दिनांक 23 जुलाई समय सवेरे 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए नंबर से 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। तो फ़ोन करना ना भूलें। कल दिनांक 23 जुलाई को 10:32 से 11:02 तक विविध भारती 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 8:45 होने को ही समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और ठीक 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ @9। प्रतीक्षा करें।

0: मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय

0: सुरक्षा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरूद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से और जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री

0: मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले छह महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के एनएचपीसी की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और एनएचपीसी ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के

0: मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावासकेस से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएससी मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Ulsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue. In Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents decline sharply with improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. The US blames Iran for the naval blockade against Saudi Arabia in the Red Sea by Yemen's Houthi group. And in China Open badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries, as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youths. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector.

तालियों के उस शोर में एक गुमसुम खामोशी भी थी, एक ऐसी खामोशी जो घटाओं के बरसने से पहले सुनाई देती है। आरती की छलकी हुई आंखों में

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं चुपके चुपके फिल्म का गीत, SD बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी की शब्द रचना, आवाज लता मंगेशकर की।

0: कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किनारा फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की, गुलजार की शब्द रचना, आर डी बर्मन का संगीत।
1: तालियों के शोर में एक गुमसुम खामोशी भी थी, एक ऐसी खामोशी जो घटाओं के बरसने से पहले सुनाई देती है। आरती की छलकी हुई आंखों में वो खामोशी यूं ठहर गई थी जैसे कह रही हो, अब के न सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के न सावन बरसे।

अब अकेला सावन बरसे। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक छोटा सा गाँव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहाँ कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियाँ। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
3: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो बेसिकली गांवों पर आधारित है या Tier 2 सिटीज पर आधारित है, Tier 3 सिटीज पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाए, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा आप नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे इस तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड, लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ हैं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। ये बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब 1/4 तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे तो इस समय देश भर में, और लोग लोकली, वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर, उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि गांवों, कस्बों और Tier 2, Tier 3 सिटीज में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
2: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा? क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
0: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अब भी करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासना जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा, जो बड़े ब्रांड, बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव से थोड़ा आगे हम जाए जो छोटे कस्बे छोटे शहर, वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल उसकी जब बात करते हैं, जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेगा या बैंक्स को अप्रोच करेगा, उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ लाख रुपए से

0: काम शुरू करना चाहते हैं वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए, जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करे। अब इस तरह की जो स्कीम जो बिना कोलेट्रल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है, जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पे जो लोग एक तरीके से अपनी उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरीके की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरीके की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है, उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटे एंटरप्रेन्योर है उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेंड करने तक मार्केटिंग के तक वो इस स्कीम की खास जो खूबी है और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन इसमें हुए हैं तो ये अपने आप में या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों के थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है तो वो इकोसिस्टम जो है इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर है वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं और बड़े हुए हैं लोग इस तरीके के उदाहरण, जैसे 2 उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया जिस तरह से छोटी जगहों पर इस तरीके की तमाम सारी जो कहानियां सामने आती हैं और उसी रास्ते चल के देश में कई बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लॉइट करने का और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनके जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा एक तरीके से एक ये स्कीम बनी और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में, जिस तरह से लोगों की इकोनॉमी कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ ना जाकर के जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें हमारी जो GDP का करीब 7% ये सेक्टर बन गया है और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
1: हरवीर जी जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे हम अपने श्रोताओं को बता दें कि PMFME योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमुना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है।

0: जमनालाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
1: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2-3% के लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में। जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है। और हम जो है, मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा हरविंद सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। और इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह हैं, जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाए, लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप शुरू करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई टेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस वो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फल और उसके जो प्रोसेस्ड है पदार्थ वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूमकर आइए, आपको भारत के हजारों छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, लोग अमेजोन पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है। उनको जरूरत किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं वो, आप जैसे यूपी है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है, स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, ये मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड हुए जीएसटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहां मिलेट्स होते हैं, तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है, लेकिन इसका आकार बढ़ाने की जरूरत है।
0: हरवीर जी, 2 छोटे-छोटे सवाल है। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा है जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा

0: सोच के काम करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निफ्टम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है, उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाएं। क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट्स उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं और आप कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वही कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेके मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसेस जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले। तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है और इसको, क्योंकि बात ही इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना है हमें, और उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हो, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये अभी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं, अगर आप जाएंगे मार्केट्स में, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके, चना में, मक्का में और बहुत सारी, या जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे एक कार्यक्रम में, वहां उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले, क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए, जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद हैं वो लोगों के बीच में पहचान बनाए और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनकी विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं, साथ ही साथ 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही हैं। आपको क्या लगता है, जब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
2: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती, हमारी नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनती, फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, वो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं और फलों और सब्जियों में तो 2-3% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े, अपनाएं, तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा चमत्कार कर सकती है। 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सेंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं, तो ये मानकर चलिए कि महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं, उनके उस ज्ञान को जैसे ही क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है तो वो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसती हैं आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं बन, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी में उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये अडॉप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा होता है बेकार फेंका जाता है क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पर फेंक देते हैं, प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था अपने को सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मेरा जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगे, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही है, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पर अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, कोई उसमें उनको एक इंजीनियर मिल गया उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इसमें आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFEMA के साथ में ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ फूड प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है नो डाउट, मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे। तो यकीन मानिए हमारा हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 के लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप 4 गुना ले जा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क और जो ये बड़ी होती PM किसान संपदा योजना के तहत बन रहा है, कोल्ड चेन बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग का क्लस्टर बन रहा है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस है, उनको गांव में जाना चाहिए आसपास के, और जहां वो प्रोड्यूस है लोकल प्रोड्यूस है उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सके उसको जब आप इस PM FME से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना चाहिए।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा?
0: बिल्कुल, देखिए तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात ये है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट ज्यादातर ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़े इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर फ्यूचर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। ऐसे में इस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर्ड कोल्ड रूम बनाए, बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने जो, जैसे उपासनी जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं बड़े पैमाने पर, उन्होंने उसमें रखना शुरू किया और उनको एक

0: सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं। जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं, तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है रूपक, शीश कटे रुख बचे तो भी सस्ता जान। आलेख है बसंत निर्गुणे का और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।
4: वन और पर्यावरण के प्रति समर्पण पर केंद्रित रूपक, शीश कटे रुख बचे तो भी सस्तो जान। आलेख बसंत निर्गुणे का और प्रस्तुत करता है राकेश ढोंडियाल।

हे मनुष्यों, प्रकृति का स्वागत करो, नए पेड़ लगाने का उत्सव मनाओ, नए फूल आने का आनंद मनाओ। ये प्रकृति जीवन का अमृत है, इसे न तो विषैला बनाओ और न बनाने दो। इसमें शक्ति भरी औषधियां हैं, इसमें उपयोगी वनस्पतियां हैं, इसमें जीवनदाता पर्जन्य है, इसलिए पुत्रवत इसको पालो, इसलिए मित्रवत इससे मिलो।

0: हजारों वर्ष पूर्व इसी भारत भूमि पर एक ऐसा प्रज्ञ समाज निवास करता था जो वृक्षों, वनों और संपूर्ण पर्यावरण के प्रति अत्यंत सजग था। कालांतर में मनुष्य कृत्रिम आवश्यकताओं के जाल में फंसता चला गया और उसके लालच ने सुरसा का रूप धारण कर लिया। मनुष्य के लालच के कारण विकास और पर्यावरण का नाजुक रिश्ता बदतर होता चला गया और इसके परिणाम विकृतियों के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगे। गांधीवादी चिंतक कैलाश चंद्र पंत।
1: गांधी जी ने इस संबंध में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि प्रकृति के पास आपकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के प्रचुर सामग्री है, लेकिन मनुष्य के लालच की पूर्ति करना उसके बस की बात नहीं है।
0: उपभोक्तावादी संस्कृति पनपने पर इसकी सबसे अधिक कीमत चुकाई मूक वृक्षों और जंगलों ने। विकास के नाम पर हम पेड़ काटते चले गए और हरित संपदा के सिकुड़ते ही पूरा पारिस्थितिकी तंत्र चरमरा गया। आंकड़ों के लिहाज से वन क्षेत्र के मामले में भले ही भारत की गिनती दुनिया के 10 अग्रणी देशों में होती हो, लेकिन ये भी सच है कि हमारी कई नदियां या तो सूख चुकी हैं या सूखने की कगार पर खड़ी हैं। जलवायु परिवर्तन की मार ने इस संकट को और विकराल कर दिया है। पर्यावरणविद और मध्य प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ से संबद्ध लोकेंद्र ठक्कर।
2: भारत जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से बहुत

0: संवेदनशील राष्ट्र है साउथ एशिया में, और उसमें भी जो कोस्टल रीजन्स या हिमालयन रीजन्स की बात नहीं है, मध्य में जो भूभाग है हमारे देश का, जिसमें मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस प्रकार के जो राज्य हैं वो ज़्यादा संवेदनशील बताए गए हैं, विशेष रूप से पानी की संकट को लेकर के। अब हम जंगलों को लकड़ी और उससे जो मिलने वाले माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जो हमारे लघु वनोपज है, तो वो तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन अब हम समझने लगे हैं कि अगर हमें पानी चाहिए, हमारी नदियों में अगर पानी बहना है, विशेष रूप से इन इलाकों की जो कि भारत के मध्य में हैं, इन इलाकों में चूँकि जो नदियाँ हैं वो ग्लेशियर से पिघल के नहीं आ रही हैं, यहाँ पर पानी का एक बड़ा स्रोत जंगल है। यदि हमको कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन करना है, यदि हमको अपनी नदियों में पानी चाहिए, तो हमें जंगल को बचाना है। एक नया विचार अचानक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, है बिल्कुल हमारे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन है।
1: विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यावरण संबंधी सारी समस्याओं की जड़ में हमारी बदली जीवन शैली है। आज पूरी दुनिया में वापसी की बात हो रही है, कुदरत की ओर वापसी, लेकिन क्या ये संभव है? इस बारे में भारतीय जीवन दृष्टि क्या कहती है? चिंतक और लोक संस्कृति मर्मज्ञ कपिल तिवारी।
2: कभी हम कहते हैं पहाड़ बचना चाहिए, कभी हम कहते हैं नदियां बचना चाहिए, कभी हम कहते वन बचना चाहिए, कभी हम कहते भू संपदा बचनी चाहिए। मुझे जरा ये बताइए, जीवन तो संवेद है ना, वो नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, झरने हैं, उर्वरा भूमि है, इन सब के होने से संभव होता है। दरअसल किसी एक चीज का सवाल नहीं है, ये जीवन विरोधी दृष्टि जो विकसित हुई है विकास के नाम पे, इसने हमें ऐसा बनाया है। वनों को बचाने का मामला जो है यहां से शुरू होता है कि प्रत्येक जीवन मेरे जीवन की भांति ही मूल्यवान है। वृक्ष जो है एक जीवंत सत्ता है, एक प्राणमय सत्ता है, और भारत सदा से इसको जानता रहा है। पिछली एक डेढ़ सदी के भीतर एक अजीब तरह की शिक्षा ने हमें एक ऐसे मनुष्य के रूप में गढ़ा कि प्रकृति का दोहन किए बिना मनुष्य के रहने के परिवेश का विकास हो ही नहीं सकता। उसने सारी तबाही लाई है, प्रकृति तो इसकी बहुत दयनीय शिकार हुई है।
1: कैलाश चंद्र पंत।
3: भारतीय जीवन दर्शन में सबसे मुख्य बात है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए चलते हैं, यहां तक कि हम अपने शरीर की व्याख्या भी जो करते हैं आयुर्वेद में, वह प्रकृति के अनुरूप करते हैं। वैसा सामंजस्य दुनिया में कहीं दिखाई नहीं पड़ता, प्रकृति के साथ तालमेल।
1: यदि हम अपने लोक और जनजातीय समाजों की ओर देखें तो हम पाएंगे कि भारत में प्रकृति की ओर लौटना अभी भी संभव है। भारत में देशज ज्ञान विज्ञान की बहुत समृद्ध परंपरा है। हमारा आधुनिक समाज जिन बातों को कठिनाई से समझ पाता है, उसे हमारा लोक समाज अपने दैनिक जीवन में सहज रूप से आजमाता रहता है। दरअसल लोक समाजों में ये वैज्ञानिक बातें संस्कार के रूप में प्रचलित हैं। लोकेंद्र ठक्कर।
4: जहां तक प्रकृति के साथ तालमेल की बात है, भारतीय लोक जीवन में इसका बहुत ही समृद्ध उदाहरण हमको मिलते हैं। एक उदाहरण जो बिश्नोई समाज का हम सब जानते हैं, वो कहते हैं कि सीस कटे और रुख बचे तो भी सस्तो जान। यदि आप अपना सिर कटाकर एक पेड़ भी बचा सकें तो भी यह सौदा बहुत सस्ता है। वहीं हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में रामनामी संप्रदाय, जो अपने पूरे शरीर पर राम नाम गुदा लेते हैं, टैटूज जिसको आजकल हम कहते हैं। मुझे लगता है कि तालाब को बचाने और बनाने का विज्ञान उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और ये सारे लोक जीवन के उदाहरण आज भी बहुत प्रासंगिक है।

जनजातीय और लोक समाजों के पारंपरिक मिथकों, रीति रिवाजों, पर्व त्योहारों और परंपराओं में वनों को बचाए रखने के सार्थक उपाय मौजूद हैं।

0: जनजाति जीवन जो है, लोक और जनजाति जीवन, उनकी पूरी जीवन पद्धति ही पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित है।
1: मानव शास्त्री अशोक कुमार तिवारी।
0: जितने भी जनजातीय समाजों के गोत्र हैं, लगभग 40% जो गोत्र हैं वो किसी न किसी प्राणी को समर्पित हैं, और लगभग 40% जो गोत्र हैं वो किसी न किसी वनस्पति पेड़ पौधों को समर्पित हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति का या किसी गोत्र का गोत्र चिन्ह कोई पर्टिकुलर वृक्ष है, कोई पर्टिकुलर पौधा है, तो उसका वो सेवन नहीं करेगा। तो अपने आप में एक ऐसा तादात्म्य स्थापित हो जाता है कि भाई इसको सहजने के लिए एक इतने हजार या इतने लाख लोगों का जनसमूह है जो उसे कोई हार्म नहीं कर सकता।
1: जनजातीय और लोक समाज अनेक मिथकों के सहारे जीते हैं। इनमें मानव उत्पत्ति की अनेक कथाएं मिलती हैं। ये मिथक हमें बताते हैं कि उनकी आदिम चेतना में ही वनों की रक्षा के सूत्र विद्यमान हैं। ऐसा ही एक मिथक है सहरिया जनजाति का। इसमें बताया गया है कि देवता ने जब धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षी सब बना लिए, तब उन्होंने सोचा कि कोई तो ऐसा हो जो इस धरती का आनंद ले सके, इसके सौंदर्य और इसकी व्यापकता को महसूस कर सके।
2: तो उसने अपना हमशक्ल मनुष्य को गढ़ा। तो पहला स्त्री पुरुष की जो जोड़ी उसने बनाई, उसको उन्होंने धरती के बीचों बीच स्थापित किया।
1: लोक कला मर्मज्ञ शंपा शाह।
2: और कहा कि तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, तुम यहाँ रहो। लेकिन उसके बाद वो गढ़ते गए, उन्होंने बहुत मनुष्य कर दिया। तो बाकी जो मनुष्य आते गए, उन्होंने ये जो पहला युगल था उसको धकेलते धकेलते और वो किनारे होता चला गया। अब जब देवता ने सोचा कि अब सबको, इनको सबको अपने काम देने चाहिए, तो उन्होंने सबको बुलाया कि आओ और अपने अपने लायक औजार लो, जिससे तुम जो करना, कोई किताब लेना चाहता है, कोई हल लेना चाहता है, जो भी, तो सबने लिए। अब वो पहले युगल का कहीं पता नहीं। तो फिर देवता ने देखा तो वो बैठे हैं, उनको आना ही नहीं मिल रहा है। तो फिर उन्हें बोला कि तुमको तो मैंने सबसे बीच में बिठाया था, तुम इतने किनारे कैसे पहुंच गए? उन्होंने बताया कि भाई जो आते गए वो हमें धकेलते गए। देवता ने कहा अब तो कुछ भी नहीं बचा है, अब सारे लोग सारे ले जा चुके, देखो अब क्या बचा है। तो वहां गए तो एक सब्बल, खंता कहते हैं वो लोग उसको, वो भर बचा था। उन्होंने कहा हमें तो बिल्कुल यही चाहिए था, और कुछ चाहिए नहीं। जंगल जाते हैं, कुछ कंदमूल निकालने में बड़ी मदद हो जाएगी इससे। तो उन्होंने कुछ कंदमूल ला के देवता को दिए और कहा कि आप भी खाइए। देवता बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने उनको तमाम तरह की वनस्पतियों की जानकारी देनी चाहिए। तो उस पर उन लोगों ने कोई, उनका कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया सी नहीं आई। भगवान को बुरा लगा कि क्या ही अजीब है। तो उन्होंने उनके जो कंद लाए थे उनको कड़वा कर दिया। तो उससे भी वो कुछ भी विचलित नहीं हुए, वो दूसरा कोई कंद ढूंढने चले गए और दूसरा कोई मीठा कंद लेकर आ गए। तो देवता को समझ में आया कि ये जो मेरी पहली संतान है ये संतोषी है, और ये ही दरअसल बचाएगी। ये जो मैंने जो सब कुछ बनाया है, सच पूछो तो ये ही बचाएंगे। उनके यहाँ जंगल के लिए शब्द है सहर, इसीलिए उनको नाम दिया कि सहरिया, ये सहरिया कहलाएंगे। ये संतोष वाले भाव की जो मैं बात कह रही थी, जो संभवतः आधुनिक समाज को अब सीखनी होगी, वरना फिर और कोई चारा ही नहीं होगा शायद।
1: जनजातीय जीवन पूर्णतः जंगल पर निर्भर है, किंतु उसने प्रकृति से उतना ही लिया है जितना उसके लिए आवश्यक है। वे जंगल को देवता मानते हैं और उसकी अनुमति लेकर ही अपने काम की चीजें लेते हैं।
2: जहां जहां जंगल बचा है, समझिए कि वहां जनजातियां बची हैं, और जहां जनजातियां बची हैं, ये जानिए कि वहीं जंगल बचा है। पूरी दुनिया में जो जनजातियां हैं, उन्होंने जाने कैसे, एक तो वो प्रकृति के बीच में रहते हैं, उसे संरक्षित करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें फिर भी पता था कि कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे जंगल का एक हिस्सा या ऐसा होता हो जिसे जहां छुआ ही ना जाए, जिसको वर्जिन फॉरेस्ट कहते हैं। तो वर्जिन फॉरेस्ट तो इस दुनिया में है ही बहुत कम, पर छोटे छोटे पैचेस में केवल वहां हैं जहां जनजातियां हैं। तो वर्जिन फॉरेस्ट का मतलब होता है इनको पुनीत वन या सेक्रेट ग्रोव्स कहते हैं।
1: लोक संस्कृति मर्मज्ञ कपिल तिवारी।
3: जनजातीय समाज में वनों के एक हिस्से को देव वन या पुनीत

0: वन के नाम से छोड़ा जाता है, उसका अर्थ ही ये है कि हमें देवताओं के रहने की जगह या उनका लोक भी बनाना है तो वन में ही बनाना है, और उस जगह को अपावन नहीं किया जा सकता, वहां आखेट नहीं किया जाता, और किसी भी तरह से संध्या काल के बाद उसकी शांति को भंग नहीं किया जाता। ये कुछ अघोषित नियम है जो प्रत्येक जनजाति के लोग पालन करते रहे हैं।
1: अशोक कुमार तिवारी।
2: ऐसे पुनीत वनों की संख्या उत्तर में हिमालय गढ़वाल कुमाऊं से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में फैली हुई है, कई हजारों की तादाद में है। तो उतनी बड़ी जो इकाइयां हैं वेजिटेशन की, उनकी तो रक्षा हो ही रही है। उसमें यदि कोई पोखर है, पोखर में मछलियां हैं, तो उन मछलियों का भी शिकार नहीं किया जाएगा।
3: मणिपुर चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई एक घाटी है, जहां पर की घाटी में मैतेई लोग निवास करते हैं।
1: मानव शास्त्री सूर्य कुमार पांडे।
3: और ये मैतेई लोग जब अपने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की बात करते हैं, तो उनके पास जो पर्यावरण है उसमें एक समतल घाटी है जहां पर की वो चावल की उपज लेते हैं, और वन और वन की लकड़ी के उपभोग के लिए उन्हें ज्यादातर पहाड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि पहले से ऑक्यूपाइड है उस इलाके में रहने वाली दूसरी नागा एवं अन्य जनजातियों के द्वारा। तो जब क्षेत्र से संबंधित अधिकार की बात आती है, तो मैतेई लोगों को कहीं ना कहीं वनों के उन छोटे छोटे से हिस्सों पर निर्भर रहना पड़ता है जो कि उस घाटी में ही विकसित हो रहे हैं, और इस दौरान ये मैतेई लोग उस पुनीत वन की अवधारणा का विकास कर लेते हैं, जिसके साथ मैतेई संस्कृति का, मणिपुर की महत्वपूर्ण संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान लाई हाराओबा जुड़ा रहता है। लाई हाराओबा एक अनुष्ठान है जहां पर वो वन के उस हिस्से को जिसको कि उन्होंने संरक्षित किया हुआ है, वहां उनके पुजारी और पुजारिन जाकर के अनुष्ठान संपादित करते हैं। और ये जो एक सार्वजनिक अनुष्ठान होता है, इस दौरान जब समाज के अधिकांश सदस्य एकत्रित होते हैं, तो उन सब में इस बात का संचार होता है कि ये जो चीज है ये हमारी संस्कृति के लिए संरक्षित है। इसका अत्यंत महत्व है कि ये उस विशेष इलाके में जैव विविधता को बढ़ावा दे रहा है और कहीं ना कहीं उस संस्कृति को जीवन शक्ति प्रदान कर रहा है।

मिनिका नाम का एक छोटा सा टापू है, उसकी कुल लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है और चौड़ाई कहीं पर भी 1 किलोमीटर नहीं है। इसमें लगभग 10,000 से अधिक लोगों की आबादी रहती है। वहां खेती के नाम पर कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता और वनस्पति के नाम से आइलैंड के एक छोटे से हिस्से में जो लगभग 4 या 5 किलोमीटर है नारियल के पेड़ हैं, नारियल और कटहल इसके पेड़ हुए हैं। गांव जो है, ये पूरी जो आबादी है वो 10 गांवों में विभाजित है। छोटी सी दुनिया लेकिन उसके 10 गांव हैं। उन गांव के मुखिया होते हैं, उन गांव के अपने पंचायत घर होते हैं जिसको अथरी या विलेज हाउस कहा जाता है। सारी की सारी पूरी व्यवस्था है। और वैसे ही वो जो वनस्पतियों का क्षेत्र है, तथाकथित जंगल जिसको वहां की भाषा में पंडारम कहा जाता है, वो 10 हिस्सों में बटा हुआ है। लेकिन उस पंडारम में कोई भी आदमी कभी अकेला नहीं जा सकेगा। जो विलेज पंचायत है या जो अथरी है, विलेज हाउस है, वो दिन तय करता है। उस दिन उस गांव के हर घर से लोग जाते हैं और जो गिरे हुए नारियल के फल हैं, जो गिरे हुए सूखी पत्तियां हैं, गिरी हुई जो टूटी हुई टहनियां हैं, उनको ही इकट्ठा करके लाया जाता है। तो सीधा सीधा एक अनुशासन सा है कि भाई, वरना ठीक है, यदि 10,000 की आबादी है, हर आदमी महीने में 1-2 पेड़ों को यदि काटता चले तो 6 महीने नहीं चलेगा, लेकिन वो सैकड़ों हजारों साल से पंडारम है, वहां पे जीवित है।

0: वृक्षों और वनों में देवों का वास मानने वाले इन समुदायों में कई ऐसी सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिनको आज के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। ऐसी ही एक रवायत है कर्मा नृत्य परंपरा।
1: छोटा नागपुर

से लगा के रायगढ़ जसपुर और मंडला से लगा के बस्तर तक की 700-750 किलोमीटर के भूभाग में 8 जनजातियों और लोक समाजों के, छत्तीसगढ़ का जो लोक समाज है वो भी कर्मा नृत्य करता है। तो एक नृत्य प्रकार इतनी जनजातियों में मौजूद नहीं है जितना जितना प्रचलन कर्मा का है। कर्मा नृत्य जो है एक अनुष्ठान से आरंभ होता है वृक्ष के, और कर्म देवता का वास जो है वो सरई के पेड़ में वन में माना जाता है, जहां वर्ष में एक बार जाके जनजाति समुदाय के जो लोग हैं वो सफेद वस्त्र का झंडा अर्पित करते हैं और कर्म देवता की स्तुति के गीत गाते हैं। ये मूलतः प्रेम गीतों की एक परंपरा है और वे हजारों की संख्या में रचे गए हैं। आज जिसको हम झारखंड कहते हैं वहां की हो, मुंडा, उरांव और संथाल जनजातियों में, मध्य प्रदेश की बैगा, गोंड जनजाति में, छत्तीसगढ़ के लोक समाज में और बस्तर की कुछ जनजातियों में कर्मा नृत्य की

करीब 21 या 22 शैलियों में कर्मा नृत्य 9 या 10 जनजातियां और लोक समाज के लोग यहाँ करते हैं। और सबसे आखिरी में रायगढ़ में कभी सदियों पहले उड़ीसा से माइग्रेट होकर बसने वाला एक छोटा सा शिल्पी समुदाय है जिसको झारा कहा जाता है। वे कर्म वृक्ष बनाते हैं, शिल्प में धातु से बनता है वो बेल मेटल में, और जिसमें जीवन की व्यापक गतिविधि का एक सार जैसा अंकित किया जाता है। वो एक जीवंत वृक्ष से कर्मा की यात्रा शुरू होती है और एक शिल्प के वृक्ष तक आके सारी कला माध्यमों को छूती हुई निकलती है, वो माध्यम शब्द के हों, नृत्य के हों या शिल्प रचना के हों।

0: गुदना जनजातीय लोगों का श्रृंगार है, किंतु श्रृंगार भी वृक्षों के बिना अधूरा है। गुदने के रूप में इन समाजों में सबसे लोकप्रिय चिन्ह वनस्पतियों और वृक्षों के ही हैं।
1: गोंडों में एक बहुत सुंदर गुदना होता है जिसको बिरछा कहते हैं। बिरछा वृक्ष, बिरछा जहरा कहते हैं, वृक्ष का श्रृंगार। उसको हम कभी ना भूलें, जिन्हें हम नहीं भूलना चाहते हैं उन्हीं को तो हम गांठ लगाना जैसे कहते हैं ना, उसी को तो हम धारण करते हैं। तो ये गोंडों में बिरछा मिलेगा आपको, बहुत तरह के फूल, लवंग फूल, गेंदा फूल, ले फूल, ये सारे तो मिलते ही हैं। भीलों में नारियल के वृक्ष, जो बैगा स्त्रियाँ हैं वो तो पूरा जंगल खड़ी रेखाएँ माथे पर बनाती हैं, जिसका कि अर्थ होता है कि वन। मैं सोचती हूँ कि कितने उपाय से और कितना लगातार खुद को याद दिलाना है। आखिर जिस जंगल से हमें तमाम लकड़ी मिली, तमाम तरह के ईंधन मिले, कोयला मिला, लेकिन हम तो भूल ही गए हैं। हर तरह से जीवन में गूंथ लिया गया है, चाहे वो गुदने हों, चाहे वो गीत हों, लोकगीत हों, चाहे कथाएं हों, उन सब में उसे गूंथा गया है कि वो बार बार याद आता हो।
0: महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से सटे तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में भारत की एक प्राचीन जनजाति निवास करती है, जो अपनी चित्रकला के लिए विश्वविख्यात है। इसका नाम है वारली। वारली चित्रकला में अधिकतर चित्र विवाह उत्सव के होते हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक चित्रांकन मिलता है वृक्षों का।
1: जिसको हम आज वारली चित्रकला कह के जानते हैं, वो दरअसल मूल रूप से ये विवाह में बनाए जाने वाले चौक का ही चित्र हुआ करता था, जो पारंपरिक रूप से बनाया जाता है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। तो वो जो चौक होता है, उसकी जो मुख्य आराध्य देवी है, जो विवाह में उपस्थित मानी जाती हैं, जिनका साक्ष्य माना जाता है, वो कहलाती हैं पालघट देवी। पाल यानि वृक्ष, हरियाली, पत्ते, और घट यानि जो कि हरियाली से लबलबान हो, जिससे हरियाली फूटती हो। तो वो चित्र उसमें बनता है, और फिर उस चित्र के ऊपर बहुत बड़ा आच्छादन बनाते हैं, जिसको कैनोपी कहेंगे हम। उसमें तमाम तरह के वृक्ष बनाते हैं वो लोग। तो मैंने और कोई ऐसी चित्र शैली नहीं देखी है जिसमें इतनी तरह के पेड़ का रिप्रेजेंटेशन वो बकायदा कलाकार बता पाते हैं कि ये फलाना पेड़, ये फलाना पेड़, ऐसा करके। और उनके जो गाने हैं, खास तौर पे जो विवाह के गीत हैं, उनमें सब में बहुत तरह के पेड़ों का जिक्र आता है।
0: मनुष्य और वनों के आत्मीय संबंधों का ऐसा ताना बाना आज अन्यत्र बहुत कम दिखाई देता है। संभवतः यही कारण है कि वनों की अंधाधुंध कटाई के बाद भी हमारे देश में कई जंगल अब भी बचे हैं। भारतीय वन प्रबंध संस्थान में प्राध्यापक रेखा सिंघल को ऐसे ही एक शोध के दौरान कुछ आश्चर्यजनक तथ्य नजर आए।
2: जब हम लोग इस तरह का अध्ययन कर रहे थे, स्पेशली जनजातियों के साथ और वनों के संबंध में, तो जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो देखते हैं जनजातियां कहाँ कहाँ हैं। जैसे आप देखेंगे ओडिशा में बहुत है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, जहाँ जहाँ जनजातियाँ ज़्यादा हैं। एक हम लोगों ने वो नक्शा GIS का निकाला, और फिर उसी के ऊपर फॉरेस्ट का नक्शा एक के ऊपर एक लेयर GIS में लगाइए, तो आप पाएंगे जहाँ वन ज़्यादा है वहीं जनजातियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब यही है कि जनजातियों की हमेशा से व्यवहार में वनों का संरक्षण रचा बसा रहा है।
3: प्रकृति के साथ ये जो संबंध है, ये एक और ही संबंध है। इस संबंध को मैं कहूंगा प्रकृति के साथ अभेद या अद्वैत का एक मानव संबंध, जो हमारी आरण्यक जातियों में शताब्दियों से प्रचलित रहा है, आज भी अबाधित है। यद्यपि वन छोटे हो रहे हैं, बहुत संकट उनके जीवन पे इस कारण आया है, लेकिन वे परंपराएं अभी भी जीवंत हैं, जो वनों को लेकर शताब्दियों पहले उनके पुरखों ने आरंभ की थी। ये एक जीवन दृष्टि है वनों के साथ मनुष्य के जीवन की। इस जीवन दृष्टि को समझे बिना हम वन के साथ एक आरण्यक समुदाय के व्यक्ति के वास्तविक दृष्टि और जीवन को नहीं समझ सकते।
0: आज के संदर्भ में ये जीवन दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इस जीवन दृष्टि को समझे बिना वनों को बचाना लगभग असंभव है।
3: हमारे समय के अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदी कवि विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है, उसको पढ़ते हुए एक पंक्ति पर मेरा ध्यान अटका था। वो कविता पंक्ति थी, एक पेड़ में लाखों पत्तियां, एक भी अतिरिक्त नहीं, एक भी अतिरिक्त नहीं। जो वृक्ष को इस तरह देख सकता है, उनके पास जीवन भी बचता है, वृक्ष भी बचता है, अरण्य भी बचते हैं।
0: वस्तुतः धरा तभी बचेगी जब पर्यावरण बचा रहेगा, पर्यावरण तभी बचेगा जब वन बचे रहेंगे, और वन तभी बचेंगे जब हम ये समझ जाएंगे कि हर वृक्ष का एक एक पत्ता हमारे लिए प्रकृति का अनुपम उपहार है।

0: शीश कटे रुख बचे तो भी सस्तो जान। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में भारतीय लोक और जनजातीय चेतना में वन और पर्यावरण के प्रति समर्पण पर केंद्रित ये रूपक कभी आपने सुना। आलेख बसंत निर्गुणे का था, वाचन स्वर पदम भंडारी, प्रस्तुति सहयोग पवन सिंह कुशवाहा और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6:00 बजे।

मीडियम में 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित सतीश व्यास का संतूर पर बजाया राग यमन।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरूद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी